मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज न्यूज़ ऑन AIR और DTH पर हम आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से बोल रहे हैं। आज रविवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ माह की 14वीं तिथि, तदनुसार 5 जुलाई सन 2026, प्रातः के 5:58 और 40 सेकंड हुए हैं। हमारे आज के प्रसारण अब आरंभ होते हैं।

0: ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। प्रातः के 6 बजने को है। अब आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं। समाचारों के तुरंत बाद एफएम बैंड 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुनते रहेंगे विविध भारती के कार्यक्रम।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत डिजाइन इन इंडिया और मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहा है। गुजरात के सांणंद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में चिप पैकेजिंग के वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सांणंद संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होगी। उन्होंने कहा कि ये विकास भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है, जिसने देश को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया।
1: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज से 10 जुलाई तक कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान की सरकारी यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे इन देशों के विदेश मंत्रियों और नेताओं से मुलाकात करेंगे। इस यात्रा का उद्देश्य इन देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना और क्षेत्रीय घटनाक्रमों तथा पारस्परिक हित के मुद्दों पर विचार विमर्श करना है। डॉक्टर जयशंकर 13 जुलाई को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के वर्ष 2028-29 कार्यकाल के लिए भारत का अभियान शुरू करेंगे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि इथेनॉल कोई नई अवधारणा नहीं है और इसका उपयोग एक सदी से अधिक समय से हो रहा है। राजस्थान में एक सभा को संबोधित करते हुए श्री पुरी ने कहा कि सरकार अपने जैव ईंधन मिश्रण कार्यक्रम की रचनात्मक आलोचना का स्वागत करती है। उन्होंने आश्वस्त किया कि सरकार सुझावों के अनुसार आवश्यक सुधार करेगी। श्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि भारत में इथेनॉल मिश्रण का विचार सर्वप्रथम पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान शुरू हुआ था। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 20 जुलाई से संसद का मॉनसून सत्र बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री रिजिजू ने कहा कि सत्र में राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णय लेने पर ध्यान किया जाएगा। पूर्वी अमेरिका में भीषण लू चल रही है, इससे बिजली आपूर्ति पर भारी दबाव पड़ रहा है और फीफा विश्व कप मैचों की तैयारियों में बाधा आ रही है। अमेरिका के सबसे अधिक आबादी वाले शहर न्यूयॉर्क में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक होने की आशंका है, जबकि पूर्वोत्तर राज्यों और मध्य अटलांटिक तट पर भी लू की चेतावनी जारी कर दी गई है। अमेरिका के मौसम विभाग ने बताया है कि स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान रिकॉर्ड तोड़ तापमान का भी पूर्वानुमान होगा। पुरुष क्रिकेट में इंग्लैंड ने कल मैनचेस्टर में 5 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला के दूसरे मैच में भारत को 4 विकेट से हरा दिया। भारत ने बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 190 रन बनाए। वहीं जवाब में इंग्लैंड ने 19 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 191 रन बनाकर मैच जीत लिया। तीसरा मैच मंगलवार को नॉटिंगम में खेला जाएगा। इससे पहले वैभव सूर्यवंशी ने भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बनकर इतिहास रच दिया। वैभव ने 15 वर्ष और 99 दिन की उम्र में पदार्पण किया। आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज लंदन के लॉर्ड्स में इंग्लैंड का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। दोनों टीमें अपराजित रहते हुए फाइनल में पहुंची हैं। ऑस्ट्रेलिया ने सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज को हराया, जबकि एक अन्य सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। लंदन में विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में बेल्जियम की एलिस मर्टेंस ने कल महिला सिंगल्स के तीसरे दौर में कजाकिस्तान की एलेना रायबाकैना को हराकर अंतिम 16 में जगह पक्की कर ली है। एक अन्य मुकाबले में फिलीपींस की अलेक्जेंड्रा एला ने तीसरी वरीयता प्राप्त पोलैंड की ईगा स्वियाटेक को हराकर अंतिम 16 में प्रवेश किया। पुरुष सिंगल्स में दूसरी वरीयता प्राप्त जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने तीसरे दौर में अमरीका के मार्कोस गिरोन को हराकर अगले दौर में प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़ न्यूज़ ऑन AIR और DTH पर हम आकाशवाणी के रोहतक

केंद्र से बोल रहे हैं। चिंतन, जब तक जीना तब तक सीखना, अनुभव ही जगत में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। स्वामी विवेकानंद। आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। आप सभी श्रोता अब सुनेंगे भक्ति संगीत का एक कार्यक्रम, वंदनाम।

स्वाभाविक है। कोई बालक जन्म लेता है तो सबसे पहले रोता है, नहीं रोता है तो उसको रुलाया जाता है, और जैसे वो रोने लगता है सब खुशी मनाने लगते हैं, सब प्रसन्न हो जाते हैं और वो रोता रहता है। भक्त कबीर ने बड़ी गहराई से सोचा इस बात को और एक महान संदेश दे दिया।

ये चादर इसका निर्माण कैसे हुआ? अष्ट कमल का चरखा बनाया, पांच तक

0: तबले पर प्रदीप आचार्य संगत कर रहे हैं। अब इनके तबले का विशेष कमाल देखिए, मैं जो सरगम गाऊंगा वही लय वही अंदाज ये आपको तबले पर बजा के सुनाएंगे।
1: ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने गोरे, ध्रुव प्रहलाद सुदामा मम गग मम धद मम।

सुनने वाला, देखने वाला और सहने वाला जब खामोश हो जाए तो समझ लेना कि उसका फैसला ईश्वर की अदालत में हो रहा है।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वंदना, ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। आइए अब सुनते हैं श्री रामचरितमानस गान।

तीर्थराज प्रयाग में भरद्वाज मुनि के आश्रम पहुंचकर भरत पुलकित हैं। हृदय में श्री राम, सीता और लक्ष्मण के लिए उमड़ते स्नेह से आंखों में आंसू उमड़।

आए हैं। निर्दोष भाव से वे भरद्वाज जी के सम्मुख अपने उद्गार प्रकट करते हैं। उन्हें अपनी माता कैकेयी की करनी का कोई विषाद नहीं है और न ही पिता के निधन का शोक है, क्योंकि दिवंगत महाराज का पुण्य और यश समस्त जगत में विदित है। जिन्होंने श्री राम और लक्ष्मण जैसे पुत्र पाए और पुत्र विरह में नाशवान शरीर त्याग दिया, ऐसी पुण्यात्मा के लिए शोक करना तो उसकी मर्यादा के प्रति अपमान होगा। भरत को सोच इस बात का है कि राम लक्ष्मण तथा सीता मुनियों का वेश धारण कर वन वन फिर रहे हैं, वलकल वस्त्र पहनते हैं, कंदमूल का भोजन करते, पृथ्वी पर कुश और पत्ते बिछाकर सोते हैं और वृक्षों की छाया में सर्दी गर्मी वर्षा और हवा के झोंके सहते। इसी दुख से भरत की छाती फटती है, न भूख लगती है न नींद आती है। इस दुख का निदान उन्हें कहीं भी दिखाई नहीं देता। निदान मात्र एक है, श्री राम को अयोध्या लौटा लाना।

0: अभी आप सुन रहे थे ए हरिहरन के गायन स्वर में सतीश भाटिया द्वारा संगीतबद्ध श्री रामचरितमानस गान। आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। लीजिए अब सुनिए कृषि की बातें।
1: किसान बहनों भाइयों राम राम। भाइयो कृषि की बात हम आज जिक्र करेंगे चारा वाली फसलों की देखभाल इस बारे में। और फिलहाल देखा जाए कि भाई अपना मौसम की अगर बात करी जाए तो मौसम बिल्कुल खुशनुमा है और कहीं कहीं पे भाई बूंदाबांदी और तेज़ आंधी के साथ साथ कहीं ना कहीं भाई अपना जो हरियाणा प्रदेश है उसमें भाई 6 से लेकर 8 तई जो मौसम विज्ञान विभाग है भाई अपना जो मौसम है लगभग मानसून की बरसात का आगमन हो गया है। और जहाँ जहाँ भी बात करें हैं हम चाहे भाई दिनचर्या की खेती बाड़ी की बात है या फिर हम देख के चल रहे हैं कि भाई जो भी अपने हरे चारे हैं हरा चारा की तो यो है कि भाई अपनी जो ज्वार है खास तौर पर बात कर लें भाई थोड़ी ही अगेती भी हो जाए इसमें पछेती भी हो जाए इसमें और इसके साथ साथ फिर अपना बहुत से भाई अपना मिश्रित जो हरा चारा है ज्वार के साथ

0: अच्छा तो भाई बाजर है वो भी हम ले ले हैं, मकचरी है वो भी ले ले हैं, फिर अलग से जो मक्का की अगर बात करी जाए तो उसमें भी ये देखण में आओ कि बहुत से भाई अपने लगभग बारहमासी फसल भी आजकल ऐसी आ रही हैं। क्योंकि हरा चारा वाला हम बात करा हाँ कि अपना जो हरा चारा है आजकल एक अपना जो दिनचर्या का जो बारहमासी लगभग चली जा है, वराइटियाँ ऐसी भी अपनी ईजाद हो रही हैं, और इन काम ख़ास करें कि भाई अपनी जो नई नई टेक्नोलॉजी है, नई नई अपनी जो किस्में ईजाद हों दी जा रही हैं, तो उनके बारे में किसान भैया ने अगर बेरा हो है तो भाई अपना बारहमासी हरा चारा है वो भी किसान भाई जैसे कि नेपियर घास जिस नाम बोल रहे हैं, तो नेपियर घास एक ऐसी वैरायटी है कि जो अपनी ईख की तरह तय है उसका फुटाव भी हुई जा है, लगभग किसान भाई ने 4-5 साल तक वो पेडी के हिसाब से भी कटाई दिनदार हुए है, और नीचे तम कटाई करा हाँ तो फिर ईख की तरह उसकी फूट आई जा है, पेडी तैयार हो गया है। और जो चारा वाली फसलें हैं भाई बचाल की, खास तौर पर थोड़ी ज्वार की अगर बात करी जा है तो ज्वार आगे के लिए, क्योंकि बरसात के ऊपर भी कई इलाके ऐसे निर्भर हों कि जड़े बरानी इलाके में भाई कहीं ना कहीं बाजरे के साथ अपनी जो हरे चारे के लिए भाई बाजरे भी लगाऊंगे, बाजर उड़े लगाऊंगे भाई जड़े अपना बरसात हो जाए है, टिब्बा सार धरती है, और फिर आगे चाल की पशुधन के लिए भाई बाजर कटाई भी ठीक तरह से दे दे है, हरा चारा भी बढ़िया रूप से मिल जाए किसान भाई ने। ज्वार की बात करी जाए तो ज्वार भी अपनी बहुत ही बढ़िया इसम किस्में हैं भाई, SSG 69 है, 3 है, SC 136, 171 है, 308 है, HJ 541 है और HJ 513, ये बहुत ही बढ़िया किस्में हैं। आगे चाल के जड़े बरसात वाले इलाके हैं भाई लगा सके हैं इसमें अपने भाई, थोड़ा अपनी जो देसी खाद है आजकल तो वह तो आंदी नहीं है, लेकिन जो अपनी भाई जैसे कि DAP होगी, सिंगल सुपर होगी, इन खादा का हम इस्तेमाल कर सके हैं, और खेत की बढ़िया हम बा समार की सुथरा अपनी 3-4 गहरी जुताई करके फिर हमने बिजाई करनी है। पानी निकासी का प्रबंध हम जरूर रखें, क्योंकि जो चारे वाली फसलें हैं उनमें थोड़ा पानी अगर लंबे टाइम ती भर जाए तो भाई वो गड़ावट आ जाए, फिर वो बात नहीं रह पाती। इसी तरह करें मक्का की बात करी जाए तो मक्का की भी बहुत बढ़िया बढ़िया इसमें किस्में हैं, HHM 1 के नाम तय है और HHM 2 के नाम तय है, HHM 4 के नाम तय है, HHM 5 के नाम तय है, ये ऐसी किस्में हैं कि भाई अपनी लगभग पूरा हरियाणा प्रदेश में बरसात के बाद में कह ले हैं या फिर अपनी भाई जून में जुलाई में हम बिजाई इसकी कर सके हैं, लंबा टाइम ती पैदावार इसकी हम ले सका हैं। हरा चारा की भी अपना चौमासा का टाइम आ जाएगा तो थोड़ा ध्यान यू रख के चलना कि जड़े भी अब अपनी ज्वार है, क्योंकि जो ज्वार है वह अपने लगभग बहुत सी अगेती बाई बिजाई करनी शुरू कर दे हैं, जब गेहूं हम कटाई करें हैं बहुत से भाइयों के खेत खाली हुए हैं तो गेहूं के साथ साथ भी हम जो ज्वार है मक्का है उसकी बिजाई कई बाई कर ले हैं, और ईब जो बरसात का टाइम चल रहा है भाई उसमें थोड़ा आजकल देखे हैं कि जो लाल वाला कीड़ा है, लाल कीड़ा है जिस नाम देसी भाषा में गिजाई कह दे हैं, तो वह आजकल थोड़ी ही हरे चारे के साथ में आने की आशंका रहे, जो अपने पशुधन ती फिर आगे चाल की पेट का आफारा उस तो बन सके है, तो बिल्कुल साफ सफाई करके हम जो है हरे चारे की कटाई करके लेके आवें और अपने।
1: ये थी कृषि की बातें, आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। प्रातः के 6:55 होने को हैं। अब आप सुनेंगे समाचार, पहले संस्कृत में, उसके बाद हिंदी में, और 7:05 पर अंग्रेजी में रिले कर रहे हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
2: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्, प्रवाचकः जतिन शर्मा। अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना ह्यः गुजरातस्य सानन्दक्षेत्रे सीजी सेमी संस्थायाः अत्याधुनिकस्य ओसेट सेमीकण्डक्टर संयन्त्रस्य उद्घाटनं कृतम्। अत्रावसरे जनसभां सम्बोधयन् प्रधानमन्त्रिणा प्रतिपादितं यत् अयं विकासः भारतस्य प्रगाढ़ इलेक्ट्रॉनिक्स क्रान्तेः आगामी चरणमस्ति, येन देशः पूर्वमेव विश्वस्य द्वितीयः बृहत्तमः दूरभाष निर्मातृत्वेन समेधितः। सः दृढविश्वासं प्रकटितवान् यत् सानन्दक्षेत्रं वैश्विक सेमीकण्डक्टर केन्द्रत्वेन समेधिष्यते।
3: आज का ये कार्यक्रम इस बात का प्रमाण है कि भारत जो ठान

0: देता है वो करके दिखाता है। 5 साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाएंगे। हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमीकंडक्टर पावर प्लांट में भी चिप पैकेजिंग का कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है।
1: तेन गदितं यत् सानन्दं प्रतिवर्षं 20 कोटि चिप्स निर्माणार्थं सज्जमस्ति। तेन 500 कोटि परिमितस्य लक्ष्य निर्धारणार्थं शुभाशयाः अपि प्रकटिताः। अत्रावसरे केन्द्रीय मन्त्रिणा अश्विनी वैष्णवेन घोषितं यत् 26,000-2,000 यावत् भारते 5 सेमीकंडक्टर संयंत्राणि पूर्णतः क्रियाशीलानि भविष्यन्ति। प्रधानमन्त्रिणा जोधपुर विमानपत्तने नूतनस्य टर्मिनल भवनस्यापि उद्घाटनं कृतम्। तदनन्तरं सः बालोत्तरा मण्डलस्य पचपदरा क्षेत्रे देशस्य अत्याधुनिकं ग्रीनफील्ड रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स इत्येतत् राष्ट्राय समर्पितवान्। अत्रान्तरे तेन जयपुर मेट्रो द्वितीय चरणस्य शिलान्यासोऽपि कृतः। अवसरेऽस्मिन् प्रधानमन्त्रिणा प्रोक्तं यत् पश्चिम एशिया क्षेत्रस्य संघर्षेण 21तमायाः शताब्द्याः महत्तमः ऊर्जा संकटः समुत्पन्नः, किन्तु भारतेन समयोचित निर्णयैः कूटनीत्या च एषः कालः सम्मुखीकृतः।
0: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
1: श्री मोदी राजस्थान सर्वकारस्य विभिन्न विभागेषु नवनियुक्तेभ्यः 45,000 युवभ्यः नियुक्ति पत्राणि अपि प्रायच्छत्। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहः सानन्द क्षेत्रे नूतन सीजी सेमी ओसेट इत्यस्य उद्घाटनं प्राविधिक आत्मनिर्भरतायां भारतस्य अभिनव पदक्षेपः इत्युदीरितवान्। अस्य अत्याधुनिक संयंत्रस्य उद्घाटनं प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना कृतम्। गृहमन्त्रिणा सामाजिक संजालीय तन्त्रे स्वलेखे प्रकटितं यत् भारतस्य प्रौद्योगिकी महाशक्तित्वेन विकास यात्रायामेषः कश्चन नूतनः कीर्तिस्तम्भः अस्ति। विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः अद्य प्रभृति अस्य मासस्य 10 दिनांकं यावत् कतार, बहरीन, कुवैत, ओमान देशानां आधिकारिक यात्रायां भविष्यति। स्वप्रवासकाले विदेशमन्त्री तत्तद्देशीयानां समकक्षनेतृभिः सह शीर्षनेतृत्वेन च सह मेलिष्यति। विदेशमन्त्रालयेन प्रोक्तं यत् अयं प्रवासः एतैः देशैः सह भारतस्य द्विपक्षीयसम्बन्धानां दृढीकरणे विशेषेण केन्द्रितः भविष्यति। संसदः वर्षाकालीन सत्रमस्य मासस्य 20 दिनांकात् अगस्त मासस्य 23-10 दिनांकं यावत् प्रचलिष्यति। संसदीय कार्यमन्त्री किरण रिजिजू सूचितवान् यत् राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः जुलै मासस्य 20 दिनांकात् संसदः वर्षाकालीन सत्रस्य आह्वानाय सर्वकारस्य प्रस्तावं स्वीकृतवती। आईसीसी महिला 20-प्रति-20 विश्वचषके लंडन नगरस्य लॉर्ड्स क्रीडांगणे इंग्लैंड दलम् अद्य अंत्यद्वंद्वे ऑस्ट्रेलिया दलम् सम्मुखी करिष्यति। इयं प्रतिस्पर्धा तावत् भारतीय समयानुसारं रात्रौ 8 वादने समारप्स्यते। इति वार्ताः।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल राजस्थान के पचपदरा में 1,05,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने जोधपुर हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन भी किया। श्री मोदी ने कहा कि जोधपुर हवाई अड्डे का नया टर्मिनल भवन मारवाड़ क्षेत्र में पर्यटन, व्यापार और रोजगार को बढ़ावा देगा। उन्होंने कहा कि जोधपुर से संशोधित उड़ान योजना शुरू होने से छोटे शहरों और दूरदराज के क्षेत्रों तक हवाई संपर्क बेहतर होगा। श्री मोदी ने कहा कि वर्तमान सरकार राष्ट्र प्रथम के दृष्टिकोण से काम कर रही है और हर क्षेत्र तथा हर नागरिक के विकास पर ध्यान केंद्रित कर रही है। इससे पहले श्री मोदी ने पचपदरा में देश की सबसे आधुनिक ग्रीनफील्ड रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल संयंत्र का लोकार्पण किया। उन्होंने जयपुर मेट्रो के दूसरे

0: चरण की आधारशिला भी रखी। बाद में गुजरात के सांणंद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर संयंत्र की में चिप पैकेजिंग के वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होंगी। उन्होंने कहा कि ये विकास भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है, जिसने देश को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया।
1: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज से 10 जुलाई तक कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान की सरकारी यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे इन देशों के विदेश मंत्रियों और नेताओं से मुलाकात करेंगे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि एथेनॉल कोई नई अवधारणा नहीं है और इसका उपयोग एक सदी से अधिक समय से हो रहा है। राजस्थान में एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री पुरी ने कहा कि सरकार अपने जैव ईंधन मिश्रण कार्यक्रम की रचनात्मक आलोचना का स्वागत करती है। श्री पुरी ने कहा कि भारत में एथेनॉल मिश्रण का विचार सर्वप्रथम पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान शुरू हुआ था। कांग्रेस सरकार के दौरान 10 राज्यों में 5% एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, लेकिन केवल 1.4% मिश्रण ही हासिल किया जा सका। सरकार ने मूल्य स्थिरीकरण बफर के लिए प्याज के खरीद मूल्य में 13% की वृद्धि की है। प्याज की कीमत अब 1,875 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़कर 2,125 रुपए प्रति क्विंटल हो गई है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि संशोधित मूल्य से किसानों को लाभ मिलेगा और बफर खरीद प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 20 जुलाई से संसद का मॉनसून सत्र बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। पूर्वी अमेरिका में भीषण लू चल रही है, इससे बिजली आपूर्ति पर भारी दबाव पड़ रहा है और फीफा विश्व कप मैचों की तैयारियों में बाधा आ रही है। अमेरिका के सबसे अधिक आबादी वाले शहर न्यूयॉर्क में तापमान 46 डिग्री सेल्सियस से अधिक होने की आशंका है, जबकि पूर्वोत्तर राज्यों और मध्य अटलांटिक तट पर भी लू की चेतावनी जारी की गई है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में फ्रांस ने अंतिम 16 के मैच में पैराग्वे को 1-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। अब क्वार्टर फाइनल में फ्रांस का सामना मोरक्को से होगा। इससे पहले ह्यूस्टन में मोरक्को ने कनाडा पर 3-0 से शानदार जीत हासिल कर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। इंग्लैंड ने कल मैनचेस्टर में 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला के दूसरे मैच में भारत को 4 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

बहनों का अपना कार्यक्रम घर आंगन आप सुनेंगे दिन में 12:30 पर। छोटे बच्चों का अपना कार्यक्रम बाल कुंज प्रसारण समय 8:30।

युवा साथियों का अपना कार्यक्रम युवा संसार। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 5:30 पर, और इस कार्यक्रम में आज का विशेषांक रहेगा युवा पसंद।

प्रातः 7:35 पर कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह सवेरे। ग्रामीण संसार कार्यक्रम का प्रसारण समय रहेगा शाम 7 बजे। कृषि जगत कार्यक्रम में शाम 6:20 पर आज हम आपको सुनवाएंगे डॉक्टर अशोक भाटी से कृषि जल प्रबंधन इस विषय पर पूर्व प्रसारित बातचीत, और दिन में 2:30 पर खेत खलिहान कार्यक्रम में आज चर्चा का विषय रहेगा रेह कलर भूमि सुधार।

अब से थोड़ी ही देर में प्रातः 7:15 पर सुगम संगीत कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे कलाकार बीबी देवीनाथ को। आपके अनुरोध पर फिल्म संगीत का ये फरमाइशी फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम, प्रसारण समय दिन में 1:10 और ये कार्यक्रम आज रहेगा फोन इन पर आधारित। फिल्म संगीत का एक और कार्यक्रम एक कलाकार हम आपके लिए लेकर आएंगे आज सुबह 9:00। श्रोताओं, कार्यक्रम रूपरेखा में अभी आप सुन रहे थे हमारे आज के प्रसारण की जानकारी। ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। इस कार्यक्रम में आज हम सुनेंगे कलाकार बीबी देवीनाथ द्वारा प्रस्तुत चंद भजन।

श्रोताओं, इस समय आपने रेडियो सेट पर ट्यून किया है आकाशवाणी का रोहतक केंद्र और कार्यक्रम इस समय जारी है सुगम संगीत, और हमारे आज के कलाकार हैं बेबी देवीनाथ।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुगम संगीत। आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सुबह सवेरे।

हमारे सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम सुबह सवेरे में। आप सभी को आपकी रेडियो साथी शेफाली राणा का नमस्कार।

श्रोताओं, वन महोत्सव। जी हाँ, वन महोत्सव का अर्थ होता है वनों का उत्सव। हमारे देश का एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पर्यावरण उत्सव है, जो हर साल जुलाई के प्रथम सप्ताह यानी 1 जुलाई से 7 जुलाई तक मनाया जाता है। जी हाँ श्रोताओं, वन महोत्सव जारी है। वर्ष 2026 में भी, जो वर्तमान जो ये वर्ष है, इसमें भी ये हरित अभियान पूरे देश में पेड़ लगाओ धरती बचाओ के इस संकल्प के साथ बड़े ही उत्साहपूर्वक मनाया जा रहा है। ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के इस दौर में वन महोत्सव केवल एक रस्म नहीं, बल्कि धरती के अस्तित्व को बचाने का एक सशक्त माध्यम बन चुका है। इस दिन के जो ये उत्सव मन रहा है, जो ये वन उत्सव है, इस वन महोत्सव के इतिहास की बात करें श्रोताओं, तो आपको बता दें कि इस ऐतिहासिक अभियान की शुरुआत वर्ष 1950 में तत्कालीन केंद्रीय खाद्य और कृषि मंत्री K.M. मुंशी द्वारा की गई थी। उन्होंने देश के नागरिकों में वृक्षारोपण के प्रति जागरूकता बढ़ाने और पर्यावरण के प्रति उनके लगाव को मजबूत करने के लिए इस उत्सव की नींव रखी थी। तब से हर साल मानसून की शुरुआत में ये सप्ताह भर चलने वाला उत्सव मनाया जाता है। और श्रोताओं, पेड़ों की जब बात करते हैं, पेड़ों से मिलने वाले लाभ की बात करते हैं, तो पेड़ हमारे पर्यावरण की रीढ़ है, ये हम सभी जानते हैं, और इसे हमें याद रखे रहना है। ये हमें जीवनदायिनी ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, हानिकारक कार्बन डाइऑक्साइड को सोखते हैं और मिट्टी के कटाव को रोकते हैं। वन हमारी जैव विविधता और वन्य जीवों को आश्रय देते हैं। हमारा कर्तव्य केवल वन महोत्सव के दौरान पेड़ लगाना ही नहीं है, बल्कि इसके अलावा उसके बड़े होने तक उसकी पूरी देखभाल करना भी है। जी हाँ श्रोताओं, वन महोत्सव सप्ताह 2026 हमें हमारी जड़ों की ओर लौटने और प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने का एक संदेश देता है। पेड़ लगाना ईश्वर की पूजा करने के समान है, क्योंकि ये आने वाली पीढ़ियों को एक स्वस्थ और स्वस्थ के साथ साथ स्वच्छ जीवन भी उपहार में देता है। तो आइए इस वर्ष हम सब मिलकर ये प्रतिज्ञा लें कि हम न केवल अधिक से अधिक पेड़ लगाएंगे, बल्कि वनों की रक्षा का संकल्प भी पूरी निष्ठा से निभाएंगे। याद रखें कि जब तक धरती पर हरियाली रहेगी, तब तक मानव जीवन की खुशहाली रहेगी।

श्रोताओं, मन के हारे हार हैं और मन के जीते जीत हिंदी साहित्य की एक बेहद ही प्रसिद्ध और प्रेरणादायक सूक्ति है। इसका सीधा और सरल अर्थ यही है कि मनुष्य की जय और पराजय उसकी शारीरिक क्षमता से नहीं बल्कि उसकी मानसिक शक्ति और इच्छा शक्ति से तय होती है, जिसे हम कहते हैं विल पावर। जी हाँ श्रोताओं, यदि कोई व्यक्ति मन से हार मान लेता है तो तमाम सुख सुविधाओं और अनुकूल परिस्थितियों के बावजूद उसकी हार निश्चित है। इसके विपरीत, इसके उलट, यदि कोई व्यक्ति मन में जीतने का पक्का संकल्प कर लेता है तो विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में भी सफलता का मार्ग खोज लेता है। श्रोताओं, हमारा मन हमारे पूरे शरीर का नियंत्रक होता है। हम जो भी कार्य करते हैं उसकी शुरुआत हमारे विचारों और मन से होती है। मन में असीमित ऊर्जा और शक्तियाँ छिपी होती हैं। जब हम किसी काम को शुरू करने से पहले ही मन में संशय, डर या नकारात्मकता पाल लेते हैं तो हमारा आत्मविश्वास डगमगा जाता है। ऐसे में हार का डर हमें पूरी क्षमता से काम नहीं करने देता। और वहीं जब हमारा मन सकारात्मक, दृढ़ और ऊर्जावान होता है तो शरीर के अंग भी दोगुनी ऊर्जा के साथ काम करने लगते हैं। मन की दृढ़ता ही मनुष्य को कठिन परिस्थिति

परिस्थितियों से लड़ना सिखाती है। जीवन सुख दुख, उतार चढ़ाव और संघर्षों का नाम है। यहाँ परिस्थितियाँ हमेशा हमारे अनुकूल नहीं होंगी। सच्ची बुद्धिमानी और वीरता इसी में है कि हम बाहरी परिस्थितियों के आगे घुटने ना टेकें। हमें अपने मन को हमेशा सकारात्मक विचारों, कड़े अभ्यास और अटूट आत्मविश्वास से निरंतर, जी हाँ श्रोताओं, निरंतर सींचना होगा। जब हम मन के भीतर बैठे डर और निराशा को हटा देंगे तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें जीतने से, हमें हमारी मंजिल तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। याद रखें कि मैदान में हारा हुआ इंसान फिर भी जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता।

श्रोताओं, इसी के साथ हमारा आज का सुबह सवेरे कार्यक्रम का ये अंक अब यहीं पर समाप्त होता है। दीजिए अपनी रेडियो साथी शेफाली राणा को अनुमति। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुबह सवेरे, आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। प्रातः के 8 बजने को हैं। अब आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, उसके बाद 8:15 पर अंग्रेजी में। रिले कर रहे हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरी और तीसरी श्रेणी के शहरों में हवाई यात्रा को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना विकसित उड़ान का अगला चरण शुरू किया। सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और कीमतों पर नियंत्रण के लिए प्याज का खरीद मूल्य 13% बढ़ाकर ₹2,125 प्रति क्विंटल किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने प्रमुख आर्थिक साझेदार के रूप में भारत की सराहना की। देश के अधिकांश हिस्सों में अगले कुछ दिन तक वर्षा जारी रहने का अनुमान और फ्रांस और मोरक्को फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरे और तीसरे श्रेणी के शहरों तथा दूरदराज के क्षेत्रों में हवाई यात्रा को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना विकसित उड़ान का अगला चरण शुरू किया है। श्री मोदी ने कल राजस्थान के जोधपुर हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन करते हुए कहा कि भारत के नागर विमानन ढांचे और क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ावा मिला है।
2: उड़ान योजना के नए चरण की भी शुरुआत हुई है। इसके तहत छोटे छोटे शहरों और दूर दराज के क्षेत्रों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा।

0: साथ ही अब जयपुर में मेट्रो का विस्तार भी होने जा रहा है।
1: इस अवसर पर नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा कि विकसित उड़ान योजना के शुरू होने से भारत के क्षेत्रीय संपर्क का अगला अध्याय शुरू होगा। श्री नायडू ने कहा कि 28,840 करोड़ रुपए से अधिक के बजट के साथ शुरू की गई ये योजना दूसरे और तीसरे श्रेणी के शहरों में हवाई संपर्क मजबूत करेगी। जोधपुर हवाई अड्डे पर श्री नायडू ने कहा कि इस विश्व स्तरीय सुविधा से मारवाड़ क्षेत्र में हवाई संपर्क मजबूत होगा और साथ ही राजस्थान में पर्यटन, व्यापार और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।
2: और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सोच है, जहाँ पे भी सिविल एविएशन का विस्तार होगा उसका प्रभाव सिर्फ यात्रियों पे नहीं पर उसके पूरे शहर के इकोनॉमी पे, के वहाँ पे बिजनेस पे, विद्यार्थियों पे, हर क्षेत्र के वर्ग को, हर नागरिक को उसका इम्पैक्ट रहता है। उसका ही प्रभाव आज देश भर में हमें देखने को मिल रहा है।
1: बाद में प्रधानमंत्री ने गुजरात के साणंद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर संयंत्र में चिप पैकेजिंग के वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए कहा कि संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होंगी। उन्होंने कहा कि ये विकास भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है, जिसने दुनिया को देश का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया है।
0: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
1: श्री मोदी ने कहा कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाने का सपना अब साकार हो रहा है।
3: 5 साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाएंगे। हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में भी चिप पैकेजिंग का कॉमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है।
1: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि एथेनॉल कोई नई अवधारणा नहीं है और इसका उपयोग एक सदी से अधिक समय से हो रहा है। राजस्थान में कल श्री पुरी ने कहा कि सरकार अपने जैव ईंधन मिश्रण कार्यक्रम की रचनात्मक आलोचना का स्वागत करती है। उन्होंने कहा कि सरकार सुझावों के अनुसार आवश्यक सुधार करेगी। श्री पुरी ने कहा कि भारत में एथेनॉल मिश्रण का विचार सबसे पहले पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान शुरू हुआ था।
4: एथेनॉल का काम ना हमने इन्वेंट किया, 100 साल से इस पे काम हो रहा है। भारत में अगर आ जाए तो इस पे पहली योजना बनाई थी कांग्रेस की सरकार ने, मैं बात कर रहा हूँ 2006 से लेकर 2008, और हमारा एक टारगेट था कि 5% हमें बायोफ्यूल ब्लेंडिंग करनी है 10 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी में, कर नहीं पाए, वो दूसरी बात है, 1.4% पे हमारी गाड़ी रुक गई।
1: ऑटोमोबाइल उद्योग के विशेषज्ञों ने कहा है कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को एक सुनियोजित, चरणबद्ध और वैज्ञानिक रूप से संचालित प्रक्रिया के जरिए लागू किया गया है। नई दिल्ली में इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की प्रबंध निदेशक वर्तिका शुक्ला ने कहा कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम 2018 में संरचित चर्चा और हितधारकों के परामर्श के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में रखा गया था। टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स के कार्यकारी उपाध्यक्ष विक्रम गुलाटी ने कहा कि एथेनॉल एक स्वच्छ ईंधन है, ये अच्छी परिचालन क्षमता और तेज गति प्रदान करता है। सरकार ने कीमतों पर नियंत्रण के लिए बफर प्याज के खरीद मूल्य में 13% की वृद्धि की है। प्याज की कीमत अब 1,875 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़कर 2,125 रुपए प्रति क्विंटल हो गई है। हमारे संवाददाता ने उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के हवाले से कहा है कि संशोधित मूल्य से किसानों को लाभ मिलेगा और बफर खरीद प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा।
5: सरकार के मूल्य स्थिरीकरण बफर के लिए भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड के माध्यम से प्याज की खरीद जारी है। कृषि और किसान कल्याण विभाग के वर्ष 2025-26 के दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार प्याज का उत्पादन 307 लाख मीट्रिक टन से अधिक होने का अनुमान है। मंत्रालय ने कहा कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में वर्तमान स्टॉक पर्याप्त है और फिलहाल प्याज के भंडार में कोई कमी नहीं है। अखिल भारतीय औसत खुदरा मूल्य 31 रुपए प्रति किलोग्राम है। प्याज का निर्यात भी सामान्य है। इस वर्ष जून में

0: लगभग 1,50,000 मीट्रिक टन प्याज का निर्यात हुआ है। दीपेंद्र कुमार के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मानसून सत्र बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। श्री रिजिजू ने कहा कि सत्र में राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक चर्चा और निर्णय लेने पर ध्यान दिया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगामी ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले भारत को एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार बताया है। श्री अल्बनीज ने कहा कि हमारे संबंध व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर आधारित हैं तथा गहरे आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों से समर्थित हैं। उन्होंने कहा कि व्यापार, रक्षा, सुरक्षा और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग दोनों देशों के लिए लाभकारी साबित हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के संबंध पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हैं और ये साझेदारी हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देती है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान की सरकारी यात्रा पर आज रवाना होंगे। इस दौरान वे इन देशों के विदेश मंत्रियों और शीर्ष नेताओं से मुलाकात करेंगे। यात्रा का उद्देश्य इन देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना और क्षेत्रीय घटनाक्रमों तथा आपसी हित के मुद्दों पर विचार विमर्श करना है। डॉक्टर जयशंकर 13 जुलाई को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के वर्ष 2028-29 कार्यकाल के लिए भारत का अभियान शुरू करेंगे। हमारी विशेष श्रृंखला प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत आज हम वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में काम कर रहे देवेंद्र सूरा के साथ परिचर्चा प्रस्तुत करेंगे।
2: मातृशक्ति ने वहाँ के जो भी सम्मानित या जितने प्रिंसिपल सभी ने भागीदारी दिखाई। अब भी बेटी के नाम के आगे ऊपर लिखना है माता का नाम। आज पूरी सड़क है जो बेटियों ने वृक्षारोपण किया था, आज पूरे बड़े वृक्ष है, ठंडी सड़क है, बड़ा गर्व महसूस करता हूँ। साथ में रखो थैला, क्यों करे हम राष्ट्र को मेला। ये कार्य तो अभी शुरू हुआ है और अंतिम सांस तक इस अभियान को मतलब एक बड़ी खुशी से और समर्पित भाव से चलता रहेगा।
3: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
1: ये परिचर्चा आकाशवाणी FM गोल्ड और 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आज सवेरे 10:30 से प्रसारित की जाएगी। जम्मू कश्मीर के तीर्थयात्री एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत गुजरात की 6 दिन की सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा सफलतापूर्वक पूरी कर जम्मू तवी वापस पहुंच गए हैं। जम्मू कश्मीर प्रशासन के कला, संस्कृति और भाषा अकादमी के सहयोग से आयोजित इस यात्रा के दौरान तीर्थयात्रियों ने श्री सोमनाथ महादेव मंदिर और गुजरात के कई अन्य धार्मिक, ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक स्थलों का दौरा किया। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिन तक देश के अधिकांश हिस्सों में तेज वर्षा जारी रहने की संभावना व्यक्त की है। आज गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया गया है। छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, कर्नाटक, तेलंगाना और विदर्भ में भी मूसलाधार वर्षा हो सकती है। महाराष्ट्र के तटीय जिलों में मूसलाधार वर्षा जारी है। लगातार बारिश के साथ साथ ज्वार भाटे की स्थिति के कारण मुंबई और ठाणे क्षेत्र में अधिकारियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। ब्रहन मुंबई महानगर पालिका ने कहा है कि नागरिक जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए लगभग 10,000 कर्मचारी तैनात किए गए हैं। वेनेजुएला की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जॉर्ज रॉड्रिक्स ने कहा है कि लगातार 2 भूकंप से मृतकों की संख्या 2,954 हो गई है और 16,000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। उन्होंने कहा कि लगभग 16,000 लोग बेघर हो गए हैं। फ्रांस और मोरक्को फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। फ्रांस ने अंतिम 16 के मैच में पैराग्वे को 1-0 से हराकर अंतिम 8 में जगह बनाई। अब क्वार्टर फाइनल में फ्रांस का सामना मोरक्को से होगा। इससे पहले ह्यूस्टन में मोरक्को ने कनाडा को हराकर अंतिम 8 में प्रवेश किया। कैंसस सिटी में

0: धन्यवाद मुकेश। राजस्थान और गुजरात में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान के अनुसार मोदी बोले, पश्चिम एशिया की जंग के दौरान आम लोगों पर कम से कम बोझ डाला गया, सही नीतियों से संकट टला, भारत चौथी बड़ी तेल शोधन क्षमता वाला देश बना, 40 देशों से भारत ने तेल का आयात किया। वहीं दैनिक भास्कर ने ग्राउंड रिपोर्ट में दिया है, ईरान ने हॉर्मुज से दुनिया का क्रूड ऑयल रोका लेकिन अब खाने के तेल को तरस रहा, ईरान अमरीका से जंग तो जीता लेकिन घरेलू मोर्चे पर चुनौतियों ने। जनसत्ता की सुर्खी है, राम मंदिर न्यास की बैठक सोमवार को, विशेष जांच दल की रिपोर्ट के साथ इस्तीफों पर चर्चा होने की संभावना। देशबंधु की सुर्खी है, 20 से शुरू होगा मॉनसून सत्र, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सत्र बुलाने की दी मंजूरी, जनहित से जुड़े मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगेगा विपक्ष। अमर उजाला ने पाकिस्तान बेनकाब शीर्षक से दिया है, 23 घोषित आतंकियों में हाफिज का करीबी, राम मंदिर था निशाने पर, भारत में आतंकी हमलों, तस्करी और घुसपैठ में शामिल है दहशतगर्द, टूटे आतंक का वित्तीय नेटवर्क, हर आतंकी मॉड्यूल को करेंगे नेस्तनाबूद। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है, उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत याचिकाएं खारिज। पंजाब केसरी ने ई रिक्शा पर साइबर अटैक शीर्षक से संपादकीय में लिखा है कि ऐप में बैटरी का वोल्टेज, करंट, तापमान, चार्जिंग स्टेटस और बैटरी हेल्थ जैसी जानकारी देखी जा सकती है। साथ ही कुछ कंपेटेबल बैटरियों में इसमें कंट्रोल फीचर भी मौजूद है, यानी बैटरी को ऑन या ऑफ करने की सुविधा। आरोप यही है कि कुछ लोग इसी कंट्रोल फीचर का गलत फायदा उठा रहे थे, ऐप पर अब प्रतिबंध लगाया जा चुका है।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरी और तीसरी श्रेणी के शहरों में हवाई यात्रा को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना का अगला चरण विकसित उड़ान शुरू किया। सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और कीमतों पर नियंत्रण के लिए प्याज का खरीद मूल्य 13% बढ़ाकर 2125 रुपए प्रति क्विंटल किया। प्रधानमंत्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने प्रमुख आर्थिक साझेदार के रूप में भारत की सराहना की। देश के अधिकांश हिस्सों में अगले कुछ दिन तक बारिश जारी रहने का अनुमान, और फ्रांस और मोरक्को फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Akashvani presents Morning News. Good morning, I am Saira Mujtaba. The headlines. Prime Minister Narendra Modi launches next phase of regional air connectivity scheme Viksit Uran to give fillip to air travel in Tier 2 and Tier 3 cities. Government hikes onion procurement price for price stabilization buffer by 13% to 2,125 rupees per quintal to boost farmer income. IMD says monsoon rains will continue to lash large parts of the country over the next few days. Australian Prime Minister Anthony Albanese hails India as key economic partner ahead of Prime Minister Modi's visit. And in football, France and Morocco enter quarterfinals of FIFA World Cup. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi launched the next phase of regional air connectivity scheme Viksit Uran in Jodhpur, Rajasthan yesterday to give fillip to air travel in Tier 2 and Tier 3 cities and remote regions. Addressing a massive gathering, the Prime Minister said that under the new phase of Uran scheme, smaller cities and remote regions will be connected through air connectivity.
3: उड़ान योजना के नए चरण की भी शुरुआत हुई है। इसके तहत छोटे छोटे शहरों और दूर दराज के क्षेत्रों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। साथ ही अब जयपुर में मेट्रो का विस्तार भी होने जा रहा है।
2: Prime Minister Modi also inaugurated the new terminal building at Jodhpur Airport, marking a major push to India's civil aviation infrastructure and regional connectivity. Mr. Modi highlighted that the architecture and interior of the new terminal are trending on social media.
3: Jodhpur mein naye airport terminal ka udghatan kiya gaya hai. और मैं सोशल मीडिया में देख रहा था कि नए टर्मिनल का आर्किटेक्चर, इंटीरियर ये सोशल मीडिया में छाया हुआ है। चारों तरफ राजस्थानी राजस्थान दिख रहा है। साथियों, ये मारवाड़ में पर्यटन, व्यापार और रोजगार को नई गति देगा।

मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्स, न्यूज़ ऑन AIR और DTH पर हम आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम बाल कुंज।

0: सभी साथी मिलकर बोलेंगे
1: जय हिंद।
0: जय हिंद साथियों, आज मैं सृष्टि
2: और मैं युवराज
0: आप सभी का इस बालकुंज कार्यक्रम में स्वागत करते हैं।
2: साथियों, कार्यक्रम में सबसे पहले कर लेते हैं विश्व जूनोसिस दिवस के बारे में बातचीत। विश्व जूनोसिस दिवस प्रत्येक वर्ष 6 जुलाई को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य लोगों को उन बीमारियों के बारे में जागरूक करना है जो जानवरों से मनुष्यों में या मनुष्यों से जानवरों में फैल सकती हैं। ऐसी बीमारियों को जूनोसिस कहा जाता है। रेबीज, बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू और ब्रुसेलोसिस इसके प्रमुख उदाहरण हैं। इस दिवस का विशेष महत्व इसलिए भी है क्योंकि 6 जुलाई 1885 को महान वैज्ञानिक लुईस पाश्चर ने रेबीज के टीके का सफलतापूर्वक पहला प्रयोग किया था। इसी ऐतिहासिक उपलब्धि की स्मृति में हर वर्ष यह दिवस मनाया जाता है।
0: साथियों, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं वन महोत्सव सप्ताह की। वन महोत्सव सप्ताह हमारे देश भारत में 1 जुलाई से 7 जुलाई तक मनाया जाता है। इसका उद्देश्य अधिक से अधिक वृक्षारोपण

पण पर्यावरण संरक्षण तथा लोगों में पेड़ों के महत्व के प्रति जागरूकता फैलाना है। हम सबको यही चाहिए कि हम अधिक से अधिक पौधे लगाएं और उनकी देखभाल करें, क्योंकि पेड़ हमें ऑक्सीजन, फल, छाया और औषधियाँ प्रदान करते हैं, जो जीवन जीने के लिए बहुत ज़रूरी है। वन जलवायु संतुलन बनाए रखते हैं और वन्य जीवों का संरक्षण करते हैं। यह सप्ताह हमें प्रकृति की रक्षा और हरियाली बढ़ाने का संदेश देता है। अब सुन लेते हैं एक गीत।

0: साथियों गीत कैसा लगा?
1: बहुत अच्छा युवराज।
0: साथियों अब सुन लेते हैं CIET द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम जिसका शीर्षक है गौरा देवी एक महान पर्यावरण नेत्री।
2: भारत के सबसे रमणीक राज्यों में से एक है उत्तराखंड। इसी उत्तराखंड के चमोली जिले में एक गांव है लाटा। ये गांव विशेषकर बड़े बड़े पेड़ों के कारण जाना जाता है।
3: लाटा गांव के ग्रामीण खेती बाड़ी और पशुपालन द्वारा अपनी जीविका चलाते थे। दिन भर खेतों और जंगलों में काम करने के बाद जब ग्रामीण शाम को घर आते तो उनके नृत्य और लोक संगीत से सारी घाटी गूंज जाती।
2: इसी गांव में सन 1925 में एक प्यारी सी बालिका ने जन्म लिया। नाम रखा गया गौरा। गौरा का बचपन से ही पेड़ पौधों के प्रति बहुत लगाव था। यदि गांव के बच्चे किसी भी प्रकार से फूल पत्तियों और पौधों को कष्ट पहुंचाते तो वो उन्हें मना करती और उन्हें समझाती भी।
4: मारो, मारो, मारो, ठीक से निशाना लगाओ।
5: अरे इस बार भी नहीं लगी।
6: अरे
4: नहीं लगा ना, लाओ लाओ, रुको रुको रुको, रुको। मैं
6: तुम लोग इस पेड़ पर पत्थर फेंक रहे हो।
4: हा?
6: अभी तो फल भी नहीं लगे। गोविंद तुम तो सबसे बड़े हो, इनको क्यों नहीं समझाते?
4: अरे पत्थर फेंका है तो क्या हो गया, पेड़ ही तो है ना। देखो
6: मैंने मना किया है ना कि पेड़ पौधों को पत्थर मत मारो, उन्हें चोट लगती है।
7: तुम हमें इस तरह रोका टोका मत करो।
6: मैं तो टोकूंगी और बार बार रोकूंगी।
4: बड़ी आई रोकने वाली। हाँ, वही करेंगे।
2: तो साथियों ये था गौरा का पेड़ पौधों के प्रति लगाव और स्नेह। स्थानीय लोग बताते हैं कि गौरा ने अपने गांव में कई पौधे लगाए थे जो आज भी जिंदा हैं।
3: समय बदला। उस समय की रीति के अनुसार गौरा की शादी मात्र 12 वर्ष की उम्र में पास के गांव रैणी के मेहरबान सिंह के साथ हो गई।
2: सब कुछ ठीक चल रहा था कि तभी शादी के मात्र 10 वर्षों के बाद पति मेहरबान सिंह की मृत्यु हो गई। गोद में 2.5 वर्ष का बच्चा था। पति के निधन के बाद 22 वर्ष की गौरा देवी पर अपने बच्चे और बूढ़े सास ससुर के भरण पोषण का पूरा बोझ आ गया। उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए जितना भी समय गौरा के पास बचता था वो उसे गांव के कामों में लगा देती थी। गौरा अपने गांव के महिला मंगल दल की अध्यक्ष भी बनी।
3: महिला मंगल दल का विशेष काम था गांव की महिलाओं के रोजगार और उनकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर ध्यान देना। स्त्रियों पर होने वाली घरेलू हिंसा की स्थिति में महिलाओं के समूह द्वारा हस्तक्षेप करना और ये भी सुनिश्चित करना कि ग्रामीण बालिकाओं की पढ़ाई नियमित रूप से चल रही है या नहीं।
8: बहनों अब हमें ये देखना है कि हमारे गांव में शराबखोरी तो कम हो गई है और इसके चलते चलते

0: आगे बच्चियों की पढ़ाई भी शुरू करनी पड़ेगी हमें।
1: हाँ, बहुत जरूरी है। मेरी बेटी तो पढ़ने जाने लगी है अब।
0: अरे वाह, कितनी अच्छी बात बताई इसने।
2: लेकिन मेरा आदमी तो अभी काम ही पे नहीं जाता।
0: आप तो काम करती है ना?
2: हाँ मैं करती हूँ, लेकिन उसे होता क्या है?
0: मैं तो ये मानती हूँ कि नारी सशक्तिकरण एक बहुत जरूरी अंग है हमारे समाज का। नारी सशक्त बनेगी तभी तो परिवार सशक्त बनेगा।
3: समय बीतता गया। सन 1962 की बात है, चमोली के ग्रामीण अंचल में विकास के लिए तत्कालीन प्रशासन द्वारा सड़क बनाने का निर्णय लिया गया, जिसके कारण गौरा के गांव रैणी और आसपास के गांवों के लोगों की पुश्तैनी जमीन छिन गई।
4: गढ़वाल क्षेत्र के जंगलों में अंगू का पेड़ प्रचुरता में पाया जाता है। खेती करने के लिए पारंपरिक कृषि के औजार अंगू पेड़ों की लकड़ी से बनाए जाते हैं। स्थानीय ग्रामीणों ने वन विभाग के अधिकारियों से निवेदन किया कि उन्हें खेती करने के औजार बनाने के लिए अंगू के पेड़ों को काटने की अनुमति दी जाए।
3: लेकिन वन विभाग भला कहां सुनने वाला था। एक ओर वन विभाग ने ग्रामीणों को साफ इनकार कर दिया, तो दूसरी ओर जंगल की जमीन का कुछ हिस्सा खेल सामग्री बनाने वाले एक निर्माता को व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए आवंटित कर दिया। अंगू पेड़ों की लकड़ी से उम्दा स्तर की खेल सामग्री भी बनाई जाती थी। दिन था 24 मार्च 1976। इस दिन रैणी और आसपास के गांवों के कुल 2400 पेड़ों को काटने का आदेश दे दिया गया। इन जंगलों को बचाने के लिए लंबे समय से आंदोलन चल रहा था। गांवों के स्त्री पुरुषों ने बड़ी मुस्तैदी से मोर्चा संभाल रखा था और हर परिस्थिति का सामना करने के लिए वे तैयार थे।
5: नहीं करने देंगे।
6: बिल्कुल नहीं करने देंगे।
4: लेकिन संयोग कहिए कि उसी दिन गांव के लोगों को उनके उन खेतों का मुआवजा दिए जाने का आदेश हुआ जो सन 1962 के अधिग्रहण के कारण उनसे छिन गए थे। रैणी, मलारी और लाता गांव के लगभग सभी पुरुष मुआवजा लेने जिला मुख्यालय चमोली चले गए।
3: इधर पुरुषों की अनुपस्थिति में 100 से भी अधिक मजदूर रैणी और उसके आसपास के गांवों के जंगलों की ओर बढ़ने लगे। गौरा देवी उस समय गांव में ही महिला मंगल दल की स्त्रियों के साथ बातचीत कर रही थी। उन्हें नहीं पता था कि ठेकेदारों की अगुवाई में मजदूरों का दल जंगल की ओर आ रहा है।
4: और तभी गांव की एक लड़की दौड़ती हुई आई। वो बहुत डरी हुई थी।
7: गौरमा, गौरमा,
0: क्या बात है चंपा, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? कहां से आ रही हो?
7: गौरमा, वो लोग आ रहे हैं।
0: कौन लोग आ रहे हैं? अरे कहां आ रहे हैं, कुछ तो कहो।
7: गौरमा,
0: हाँ?
7: पहाड़ की ओर से ठेकेदार के बहुत से मजदूर जंगल की ओर आ रहे हैं।
0: क्या?
7: हाँ गौरमा, उनके हाथों में कुल्हाड़ियां, रस्सियां और पेड़ काटने वाली आरी है। मैं बकरी चराने गई थी तो देखा कि 3-4 ट्रक आकर रुके। उनसे मजदूर उतरे और जंगल की ओर बढ़ने लगे।
0: अच्छा, तो ये बात है। बहनों,
8: हाँ गौरमा, हाँ गौरमा,
0: चलो हम सब तैयार हो जाएं।
2: बिल्कुल,
0: समय आ गया है अब इस गांव के जंगल को बचाने का।
8: हाँ, हाँ,
7: हम सब तैयार हैं।
8: किसी
7: भी हाल में जंगल कटने
2: नहीं कटने देंगे।
7: बिल्कुल नहीं कटने देंगे।
3: और चल पड़ी गौरा जंगल की ओर। उसके साथ गांव की 27 स्त्रियां थीं। उनकी चाल में दृढ़ता थी, आंखों में संकल्प झलक रहा था और उनके नारों में ओज था।
9: ये है जंगल के उपकार,
10: मिट्टी पानी और बयान,
9: मिट्टी पानी और बयान।
4: और अब वो स्त्रियां वहां पहुंच गईं, जहां मजदूर पेड़ों को काटने के लिए तैयार खड़े थे।

0: बात होती तुम्हारी?
1: मत करो।
0: ये क्या है?
2: अरे
0: क्या कर रहे हो?
2: मेरा मुंह के ताक रहे हो? अजय शुरू
0: करो। अरे भाई कौन है? रुको इसे, हम चल जाएंगे पेड़ से।
3: अरे ओ हरिया, तू तो इसी गांव का है ना रे? जिस जंगल ने तुझे पाला पोसा बड़ा किया, तेरी सारी जरूरतों को पूरा किया, उसे नष्ट करने के लिए कुछ पैसों के लालच में आकर तूने कुल्हाड़ी उठा ली। शर्म आनी चाहिए तुझे।
2: आगे बढ़ो।
0: अरे कहां से
2: दो मिनट की बातों में बताओ। मैंने तुम्हें पेश की थी, पेश की इस काम के लिए।
0: चिपक जाएंगे, चिपक जाएंगे, ऐसा नहीं होने देंगे।
3: आगे बढ़कर तो दिखाओ तुम। एक भी पेड़ को हम हाथ नहीं लगाने देंगे आज।
1: नहीं लगाने देंगे।
3: बहनों आगे बढ़कर चिपक जाओ पेड़ों से।
4: हाँ, चिपक जाएंगे।
2: तो वहाँ चलो, उन पेड़ों को काटो, चलो।
5: मजदूरों के सामने एक विचित्र स्थिति उत्पन्न हो गई थी। वे जिस पेड़ की ओर बढ़ते, गांव की स्त्रियां भागकर उसी पेड़ से चिपक जाती। इस संघर्ष में लगभग 4 घंटे बीत गए थे। इस दौरान किसी ने भागकर ये सूचना गांव के पुरुषों तक पहुंचा दी।
6: ये खबर वैसे भी जंगल की आग की तरह फैल चुकी थी। आसपास के गांवों से सैकड़ों की संख्या में लोग जंगल की तरफ आने लगे। स्थिति बिगड़ती देख ठेकेदार और जंगल काटने वाले मजदूर वहां से भाग खड़े हुए।
2: ठीक है, तो वहां चलो, उन पेड़ों को काटो, चलो।
5: बता दें कि इन पेड़ों की कटाई को रोकने के प्रयास में ये आंदोलन 3 साल पहले 1973 में शुरू हुआ था। इसकी नींव सुंदरलाल बहुगुणा, कॉमरेड गोविंद सिंह रावत और चंडी प्रसाद भट्ट के नेतृत्व में रखी गई थी।
6: इस घटना ने गौरा देवी को चिपको आंदोलन की महान नेत्री बना दिया और इसकी गूंज पूरे विश्व में सुनाई पड़ी। गौरा देवी विश्व मीडिया में चिपको वुमन के नाम से मशहूर हुई। इस घटना का बहुत बड़ा प्रभाव ये पड़ा कि सरकार ने हिमालयी क्षेत्र में आगामी 15 वर्षों के लिए वनों की कटाई पर प्रतिबंध लगा दिया और राष्ट्रीय स्तर पर पहली बार पर्यावरण मंत्रालय गठित करने पर विमर्श संभव हुआ।
5: जुलाई सन 1991 में 66 साल की उम्र में इस महान पर्यावरण नेत्री का निधन हो गया।
7: कार्यक्रम कैसा लगा साथियों?
8: बहुत अच्छा सृष्टि।
7: युवराज अब कर लेते अपने साथियों से बातचीत। तो पहला साथी अपना नाम बताएं।
9: सुहानी।
7: आज आप हमें क्या सुनाएंगे?
9: कविता।
7: सुनाइए।
9: एक अंकुर फूटा जंगल में, बड़ी आस लिए जीने की, धरती से जब बाहर आया, सबसे अलग अपने को पाया। मीठी खुशबू आस जीने की, बड़ी पत्तियां तना मजबूत, समय आएगा तब फल देगा, इस गुण से ही वो जी पाया। कौन कहाँ कब जन्म लेगा, ये हमें है कहाँ मालूम, कब पनपेगा कब फल देगा, इससे भी अनजान है हम। इस बीज ने ये कर दिखाया, बिन माली बिन सेवा पानी, इस जंगल में स्थान है पाया, झाड़ियों बीच तरोवर उगाया। जंगल में अब नई आस है, पेड़ और घास ही घास है, छमछम जब पानी बरसेगा, बड़ा पेड़ छाँव घनी देगा, सभी जीव तुझसे पाएंगे, छाँव घनी में कर आराम, पक्षी भी नाचेंगे गाएंगे, आज जंगल को मिला इनाम, धन्यवाद।
7: सुहानी

0: आपने बहुत अच्छी कविता सुनाई और आपने सही कहा कि ये छोटा पौधा एक आस है जो बड़ा पेड़ बनके हमें कई चीजें में सहायता करेगा, जैसे फल, छाया, धूप आदि। अगला साथी अपना नाम बताए।
1: मेरा नाम दिशा है।
0: आज आप हमें क्या सुनाएंगे?
1: आज मैं आपको एक कविता सुनाऊंगी।
0: सुनाइए।
1: दिन में सूरज हो अगर तो रात को भी चांद तारे हैं, पर जीत तो वह लोग भी सकते हैं जो कभी हारे हैं। कभी धूप कभी बारिश, ये तो कुदरत के नज़ारे हैं, पर प्यासे तो वह लोग भी हैं जो समुद्र के किनारे हैं। कुछ ना कर सके तो कहते हैं हम तो किस्मत के मारे हैं, पर जान न सके तुम खुद को कि कितने रूप तुम्हारे हैं। हिम्मत और हौसला हो अगर तो रास्ते कई सारे हैं, पर जीत वे तो वे लोग भी सकते हैं जो कभी हारे हैं। धन्यवाद।
2: दिशा, आपने तो बिल्कुल सही कहा कि जो लोग हारे हैं वह भी जीत सकते हैं। और आगे चलते हुए आयुष, आज आप हमारे लिए क्या लाए हैं?
3: एक कहानी
2: सुनाइए।
3: दो पेड़ अगल बगल में थे और उनमें गहरी मित्रता थी। जिस जंगल में वह दोनों पेड़ थे उसी जंगल में कुछ खूंखार शेर भी थे। वे प्रायः जानवरों का शिकार करते और बचा कुचा मांस और हड्डियां वहीं छोड़ देते, जिससे वहां का वातावरण दूषित हो गया था। एक पेड़ इस दूषित वातावरण से बहुत परेशान था। एक दिन उसने अपने मित्र से कहा, इन जंगली जानवरों ने तो सारा वातावरण ही दूषित कर रखा है, इन्हें इस जंगल से निकालना ही पड़ेगा। दूसरे पेड़ ने कहा, मित्र यह गलती मत करना, इन्हीं जानवरों की वजह से ही हम सुरक्षित हैं। पेड़ नहीं माना और उसने जंगल के सभी जानवरों को वहां से भगाने की ठान ली। एक रात उस वृक्ष ने जोर जोर से हिलकर भयंकर आवाजें निकाली। यह सब देखकर जंगल के सभी जानवर डर गए। उन्हें लगा कि प्रलय आ गया है। सभी अपनी जान बचाकर वहां से भाग गए। पेड़ बहुत खुश हुआ और अपने मित्र से बोला, सारे जानवर भाग गए, अब हम चैन से रह सकेंगे, ना गंदगी ना ही कोई बदबू। उसके मित्र पेड़ ने कहा, देखो कब तक चैन से रहते हैं। कुछ दिनों बाद एक व्यक्ति अपनी गाय का पीछा करते करते उस जंगल में आ पहुंचा। जंगल में छाई वीरानी को देखकर उसने महसूस किया कि शायद जंगल में कोई भी जानवर नहीं है। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई, उसे केवल पेड़ ही पेड़ नजर आ रहे थे। गांव लौटकर उसने गांव वालों से उस जंगल के बारे में चर्चा की। अगले दिन गांव के कुछ बड़े बुजुर्ग उस व्यक्ति के साथ जंगल में पहुंचे। उन्हें हैरानी हुई कि जंगल जानवरों से मुक्त है। उनमें से एक बोला, अब हमें लकड़ियों की कोई कमी नहीं होगी, यहाँ से जितने चाहे वृक्ष काटे जा सकते हैं। यह बात सुनकर पेड़ ने अपने मित्र से कहा, देखा इसलिए मैं कह रहा था कि यहाँ से जानवरों को मत भुगाओ, अब भुगतो नतीजा। तुम चिंता मत करो, जैसे मैंने जानवरों को भगाया था वैसे ही मैं मनुष्यों को भी भगा दूंगा, दूसरे पेड़ ने गर्व से कहा। उसने फिर से जोर जोर से भयंकर आवाज निकाली, पर मनुष्य नहीं डरे। एक बुजुर्ग ने सबको समझाते हुए कहा, तेज हवा जो पत्तों से टकराती है तो ऐसी ही आवाजें आती हैं, तुम लोग चिंता न करो और कल से ही पेड़ों को काटने का काम शुरू कर दो। यह सुनकर वह पेड़ रो पड़ा। उसे रोते देख उसके मित्र ने कहा, अब रोने का क्या फायदा, जो होना है वो तो होकर ही रहेगा, तुम्हारी मूर्खता का नतीजा जंगल के सभी पेड़ों को भुगतना पड़ेगा। तो साथियों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मूर्ख व घमंडी से मित्रता करने पर कभी लाभ नहीं होता। वे अपनी हरकतों से स्वयं तो मुसीबत में पड़ ही जाते हैं, अपने संगी साथियों को भी मुसीबत में ले डूबते हैं। धन्यवाद।
2: हमारा अगला साथी अपना नाम बताएं।
4: मेरा नाम लवण्या है।
2: लवण्या, आज आप हमारे लिए क्या लाई हैं?
4: एक कहानी जिसका नाम है सबसे बड़ा मूर्ख कौन। एक दिन बादशाह अकबर के दरबार में एक अमीर व्यापारी अपनी शिकायत लेकर आया। व्यापारी ने कहा, जापना, मैंने एक व्यक्ति को अपनी घोड़ी खरीदने के लिए 1000 अग्रिम दिए थे, लेकिन अब वह व्यक्ति अपनी घोड़ी देने से इनकार कर रहा था और पैसे भी नहीं लौटा रहा था। अकबर ने बिरबल को मामले की जांच करने के लिए कहा। बिरबल ने उस व्यक्ति को दरबार में बुलाया। जब बिरबल ने उसे पूछताछ की तो उसने बहुत अजीबोगरीब और झूठी कहानियां बनानी शुरू कर दी। बिरबल समझ गया कि यह व्यक्ति बहुत चालाक है। बिरबल ने उससे कहा, तुम्हारी बातें सुनकर मुझे लगता है कि तुम इस दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख हो। वह व्यक्ति बोला, मैं मूर्ख

0: से हूँ। बिरबल ने अपनी जेब से एक डायरी निकाली और बोले, मुझे लगता था कि दुनिया में तुमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है, इसलिए मैंने तुम्हारा नाम इस डायरी में सबसे ऊपर लिख दिया है। लेकिन आज जब मैंने तुम्हारी चालाकी देखी तो मुझे लगता है कि मैं गलत था, तुम मुझसे भी बड़े मूर्ख हो। साथियों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि दूसरों को मूर्ख समझने वाले अक्सर खुद ही सबसे बड़े मूर्ख साबित होते हैं। चालाकी और झूठ का अंत हमेशा बुरा होता है। धन्यवाद।
1: अगला साथी अपना नाम बताए।
2: सलोनी,
1: आज आप हमें क्या सुनाएंगे?
2: एक कहानी
1: सुनाइए।
2: एक आदमी हाथियों के पास से गुजर रहा था। उसने रुक कर देखा और हैरान रह गया कि ये विशालकाय जीव केवल एक छोटी सी रस्सी से बंधे हुए हैं, जो उनके अगले पैर से बंधी थी। न कोई जंजीर, न कोई पिंजरा। ये स्पष्ट था कि हाथी किसी भी समय भाग सकता था, लेकिन किसी कारणवश वह ऐसा नहीं कर रहा था। उसने पास ही खड़े एक प्रशिक्षक को देखा और पूछा कि ये जानवर बस वहीं क्यों खड़े हैं और भागने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं। इस पर प्रशिक्षक ने कहा कि जब वे बहुत छोटे होते हैं तो हम उन्हें इसी आकार की रस्सी से बांधते हैं और उस उम्र में यह उन्हें रोकने के लिए पर्याप्त होता है। जैसे जैसे ये बड़े होने लगते हैं तो वे ये मानने लगते हैं कि वे इस रस्सी को नहीं तोड़ पाएंगे। वे मानते हैं कि ये रस्सी अभी भी उन्हें रोक सकती है और इसलिए वे कभी भी मुक्त होने की कोशिश ही नहीं करते। आदमी चकित रह गया। ये जानवर अपने आप को मुक्त कर सकते थे, परंतु क्योंकि वे मानते थे कि वे ऐसा नहीं कर सकते हैं, वे अटके रहे। हाथियों की तरह हम में से कितने लोग भी जीवन भर इस विश्वास को पकड़े रहते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ इसीलिए क्योंकि हम कभी उसमें असफल हो चुके हैं। असफलता सीखने का हिस्सा है। हमें जीवन में संघर्ष कभी नहीं छोड़ना चाहिए। धन्यवाद।
1: अरे वाह सलोनी, आपने तो हमें बहुत अच्छी कहानी सुनाई। युवराज, अब मैं बताने वाली हूँ विश्व जनसंख्या दिवस के बारे में। विश्व जनसंख्या दिवस हर साल 11 जुलाई को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 11 जुलाई 1987 को दुनिया की आबादी लगभग 5 अरब तक पहुँच गई थी। इस ऐतिहासिक 5 बिलियन डे पर लोगों का ध्यान तेजी से बढ़ती आबादी और उससे जुड़ी समस्याओं की ओर खींचने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा इस दिन की शुरुआत की गई थी।
3: साथियों, इसी के साथ हमारा आज का यह कार्यक्रम यही समाप्त होता है। फिर मिलेंगे अब अगले सप्ताह। तब तक के लिए सभी साथी मिलकर बोलेंगे
4: जय हिंद।

0: जब व्यापार के प्रचार की हो बात तो अपनाएं आकाशवाणी का साथ। हर दिल, हर घर और हर जन, हर वर्ग को जोड़ने का है साधन। विश्वसनीय, असरदार और हम सब का हम सफर आकाशवाणी रोहतक है सदा तत्पर। हमारी आवाज आपका प्रचार, हो जाए समृद्ध होने को तैयार। अपने ब्रांड को विज्ञापन के जरिए जन जन पहुंचाने के लिए आज ही संपर्क करें आकाशवाणी रोहतक। जब व्यापार के प्रचार की हो बात तो अपनाएं आकाशवाणी का साथ। हर दिल, हर घर और हर जन, हर वर्ग को जोड़ने का है साधन। विश्वसनीय, असरदार और हम सब का हम सफर आकाशवाणी रोहतक है सदा तत्पर। हमारी आवाज आपका प्रचार, हो जाए समृद्ध होने को तैयार। अपने ब्रांड को विज्ञापन के जरिए जन जन पहुंचाने के लिए आज ही संपर्क करें आकाशवाणी रोहतक।
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ

0: कैशलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: जब व्यापार के प्रचार की हो बात तो अपनाएं आकाशवाणी का साथ। हर दिल, हर घर और हर जन, हर वर्ग को जोड़ने का है साधन। विश्वसनीय, असरदार और हम सब का हम सफर आकाशवाणी रोहतक है सदा तत्पर। हमारी आवाज आपका प्रचार, हो जाएं समृद्ध होने को तैयार। अपने ब्रांड को विज्ञापन के जरिए जन जन पहुंचाने के लिए आज ही संपर्क करें आकाशवाणी रोहतक।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बाल कुंज। मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज, न्यूज ऑन AIR और DTH पर ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। श्रोताओं, प्रस्तुत है अब ये कार्यक्रम एक कलाकार। फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है और आज की हमारी कलाकार रहेंगी सायरा बानो। जी हाँ, फिल्म अभिनेत्री सायरा बानो की फिल्मों के चुनिंदा गीत आज इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो सुनते हैं कार्यक्रम का ये पहला गीत शागिर्द फिल्म से। लता मंगेशकर की आवाज़ में गीतकार है मजरूह सुल्तानपुरी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

0: जब व्यापार के प्रचार की हो बात तो अपनाएं आकाशवाणी का साथ। हर दिल, हर घर और हर जन, हर वर्ग को जोड़ने का है साधन। विश्वसनीय, असरदार और हम सब का हम सफर आकाशवाणी रोहतक है सदा तत्पर। हमारी आवाज आपका प्रचार, हो जाए समृद्ध होने को तैयार। अपने ब्रांड को विज्ञापन के जरिए जन जन पहुंचाने के लिए आज ही संपर्क करें आकाशवाणी रोहतक।
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है।

थी खूबसूरत अभिनेत्री हैं। वर्ष 1960 और 1970 के दशक में उन्होंने अपनी दिलकश अदाओं, बेहतरीन अभिनय और शानदार नृत्य से दर्शकों के दिलों पर राज किया। अभिनय के साथ साथ वे महान अभिनेता दिलीप कुमार की जीवन संगिनी के रूप में भी जानी जाती हैं।

जंगली फिल्म का गीत श्रोताओं अभी आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में। हसरत जयपुरी के बोल थे शंकर जयकिशन का था संगीत निर्देशन। और अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रारंभिक जीवन और उनकी शिक्षा के बारे में। सायरा बानो का जन्म 23 अगस्त वर्ष 1944 को मसूरी उत्तराखंड में हुआ था। उनकी माता का नाम नसीम बानो था जो अपने समय की एक प्रसिद्ध अभिनेत्री और हिंदी सिनेमा की पहली फीमेल सुपरस्टार मानी जाती हैं। उनके पिता मियां एहसान उल हक एक फिल्म निर्माता थे। सायरा बानो का बचपन लंदन में बीता और वहीं से उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की। बचपन से ही उन्हें अभिनय और नृत्य का माहौल घर में मिला और जिसने उन्हें फिल्मों की ओर आकर्षित किया।

श्रोताओं, इस समय आपने रेडियो सेट पर ट्यून किया है आकाशवाणी का रोहतक केंद्र और कार्यक्रम जारी है। एक कलाकार फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम, और इसमें अभी आपने जो गीत सुना वो था अप्रैल फूल फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज़ में। गीतकार थे हसरत जयपुरी, संगीतकार शंकर जयकिशन। और कार्यक्रम में अब अगला गीत हम आपको अब सुनवाने जा रहे हैं अमन फिल्म से, लता मंगेशकर की आवाज़ में ये गीत। गीत के बोल हैं हसरत जयपुरी के और संगीत है शंकर जयकिशन का।

0: जब व्यापार के प्रचार की हो बात तो अपनाएं आकाशवाणी का साथ। हर दिल, हर घर और हर जन, हर वर्ग को जोड़ने का है साधन। विश्वसनीय, असरदार और हम सब का हम सफर आकाशवाणी रोहतक है सदा तत्पर। हमारी आवाज आपका प्रचार, हो जाए समृद्ध होने को तैयार। अपने ब्रांड को विज्ञापन के जरिए जन जन पहुंचाने के लिए आज ही संपर्क करें आकाशवाणी रोहतक।
1: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से। वाह,
2: अनजान ऐप से बचें।
3: RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक कलाकार। फिल्म संगीत का कार्यक्रम जारी है आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से, और गीतों की इस कड़ी में जिसमें आज हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म अभिनेत्री सायरा बानो की फिल्मों से लिए गए चुनिंदा गीत। और इन्हीं गीतों की कड़ी में अगला गीत आप सभी के लिए है आई मिलन की बेला। इस फिल्म से ये है शीर्षक गीत। मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले और साथियों की आवाज़ों में गीतकार हैं शैलेंद्र, संगीतकार शंकर जयकिशन।

पड़ोसन फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे श्रोताओं, लता मंगेशकर की आवाज़ में राजेंद्र कृष्ण के बोल थे, आर डी बर्मन का था संगीत निर्देशन। बात हम कर रहे हैं सायरा बानो, जी हाँ, फिल्म अभिनेत्री सायरा बानो की। लंदन से भारत अपने देश लौटने के बाद सायरा बानो ने मात्र 16-17 वर्ष की उम्र में अपने अभिनय करियर की शुरुआत की। डेब्यू फिल्म की बात करें तो वर्ष 1961 में आई फिल्म जंगली से उन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा और इस फिल्म में उनके नायक थे शम्मी कपूर। और जंगली फिल्म बॉक्स ऑफिस पर जो थी वो सुपरहिट साबित हुई थी और इसी पहली उनकी जो ये फिल्म थी इस पहली ही फिल्म के लिए सायरा बानो को फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के पुरस्कार के लिए नामांकित भी किया गया था। और इस फिल्म का गीत हमने आपको जो है वो सुनवाया भी था कार्यक्रम की शुरुआत में। और अब आपको सुनवाते हैं पड़ोसन, माफ़ कीजिए, अब आपको हम सुनवाते हैं झुक गया आसमान। इस फिल्म से ये गीत जो है मोहम्मद रफ़ी द्वारा गाया हुआ, गीतकार हैं शैलेंद्र, संगीतकार शंकर जयकिशन।

श्रोताओं, सायरा बानो केवल अपनी सुंदरता के लिए ही नहीं, बल्कि अपने बेहतरीन अभिनय, शालीनता और समर्पण के लिए भी जानी जाती हैं। भारतीय सिनेमा के स्वर्णिम युग में उनका योगदान अतुलनीय है। आज भी वे नए कलाकारों के लिए प्रेरणा का एक सबसे बड़ा स्रोत है और हिंदी सिनेमा के इतिहास में उनका नाम हमेशा ही आदर के साथ लिया जाएगा।

गोपी फिल्म से लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर साथियों की आवाज़ों में, राजेंद्र कृष्ण के लिखे और कल्याण जी आनंद जी के संगीतबद्ध केसी गीत के साथ श्रोताओं, आज का फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम एक कलाकार अब यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्स, न्यूज़ ऑन AIR और DTH पर प्रातः के 10 बजने को है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, उसके बाद 10:05 पर समाचार होंगे अंग्रेजी में, जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं। कृपया रिले की प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरे और तीसरे श्रेणी के शहरों तथा दूरदराज के क्षेत्रों में हवाई यात्रा को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना विकसित उड़ान का अगला चरण शुरू किया है। श्री मोदी ने कल राजस्थान के जोधपुर हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करते हुए ये कहा कि भारत के नागर विमानन ढांचे और क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ावा मिला है।
1: उड़ान योजना के नए चरण की भी शुरुआत हुई है। इसके तहत छोटे छोटे शहरों और दूर दराज के क्षेत्रों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। साथ ही अब जयपुर में मेट्रो का विस्तार भी होने जा रहा है।
0: इस अवसर पर नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा है कि विकसित उड़ान योजना के शुरू होने से भारत के क्षेत्रीय संपर्क का अगला अध्याय शुरू होगा। श्री नायडू ने कहा कि 28,840 करोड़ रुपए से ज्यादा के बजट के साथ शुरू की गई ये योजना दूसरे और तीसरे श्रेणी के शहरों में हवाई संपर्क को मजबूती करेगी। सरकार ने कीमतों पर नियंत्रण के लिए बफर प्याज के खरीद मूल्य में 13% की वृद्धि की है। प्याज की कीमत अब 1,875 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़कर 2,125 रुपए प्रति क्विंटल हो गई है। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने कहा कि संशोधित मूल्य से किसानों को लाभ होगा और बफर खरीद प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रोबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगामी ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले भारत को एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार बताया है। श्री अल्बनीज ने कहा कि हमारे संबंध व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर आधारित हैं तथा गहरे आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों से समर्थित हैं। उन्होंने कहा कि व्यापार, रक्षा, सुरक्षा और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग दोनों देशों के लिए लाभकारी साबित हो रहा है। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मॉनसून सत्र बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। श्री रिजिजू ने कहा कि सत्र में राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक चर्चा और निर्णय लेने पर ध्यान दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ की मशहूर पंडवानी गायिका और पद्म विभूषण से सम्मानित तीजन बाई का निधन हो गया है। वे लंबे समय से बीमार चल रही थीं। उनका एम्स रायपुर में लंबे समय से इलाज चल रहा था। उन्होंने आज सुबह करीब 3:15 पर अंतिम सांस ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीजन बाई के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने अपनी शानदार प्रस्तुतियों के जरिए छत्तीसगढ़ की इस लोक कला शैली को दुनिया भर में पहचान दिलाई। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनका निधन कला और संस्कृति की दुनिया के लिए एक अपूर्णीय

0: प्रगति है। फ्रांस और मोरक्को फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। फ्रांस ने अंतिम 16 के मैच में पैराग्वे को 1-0 से हराकर अंतिम 8 में जगह बनाई। अब क्वार्टर फाइनल में फ्रांस का सामना मोरक्को से होगा। इससे पहले ह्यूस्टन में मोरक्को ने कनाडा को हराकर अंतिम 8 में प्रवेश किया। मैनचेस्टर में कल इंग्लैंड ने दूसरे टी20 क्रिकेट मैच में भारत को 4 विकेट से हरा दिया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 190 रन बनाए। जवाब में इंग्लैंड ने 19 ओवर में ही 6 विकेट के नुकसान पर 191 रन बनाकर मैच जीत लिया। वार्षिक श्री अमरनाथ जी यात्रा की इस वर्ष काफी जोश और उत्साह के साथ शुरू हुई है। यात्रा के पहले 2 दिनों में 32,313 श्रद्धालुओं ने पवित्र गुफा मंदिर में दर्शन किए। इस बीच वार्षिक यात्रा के श्रद्धालुओं का चौथा जत्था आज सुबह जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच रवाना हुआ। इस जत्थे में 291 वाहनों में 6,731 श्रद्धालु शामिल हैं। इनमें से 4,131 श्रद्धालु 139 वाहनों में पारंपरिक पहलगाम मार्ग से जा रहे हैं, जबकि 2,590 श्रद्धालु 152 वाहनों में बालतल मार्ग की तरफ से जा रहे हैं। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक देश के अधिकांश हिस्सों में तेज बारिश जारी रहने की संभावना व्यक्त की है। आज गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और उड़ीसा में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, कर्नाटक, तेलंगाना और विदर्भ में भी मूसलाधार वर्षा हो सकती है। महाराष्ट्र के तटीय जिलों में भारी बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani. The news read by V.C. Pramod. Prime Minister Narendra Modi launched the next phase of regional air connectivity scheme Vikasit Udan in Jodhpur, Rajasthan yesterday to give fillip to air travel in Tier 2 and Tier 3 cities and remote regions. Addressing a massive gathering, the Prime Minister said that under the new phase of Udan scheme, smaller cities and remote regions will be connected through air connectivity.
2: उड़ान योजना के नए चरण की भी शुरुआत हुई है। इसके तहत छोटे छोटे शहरों और दूर दराज के क्षेत्रों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। साथ ही अब जयपुर में मेट्रो का विस्तार भी होने जा रहा है।
1: Prime Minister also inaugurated the new terminal building at Jodhpur Airport, marking a major push to India's civil aviation infrastructure and regional connectivity. Government has increased the procurement price of onions for the price stabilization buffer by 13% from 1,875 rupees per quintal to 2,125 rupees per quintal. Consumer Affairs, Food and Public Distribution Ministry said that the revised procurement price will ensure better returns for onion farmers while supporting buffer procurement efforts. The monsoon session of Parliament will commence on the 20th of this month. It will continue till 13th of August. Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju informed that President Draupadi Murmu has approved the proposal of the government to convene the monsoon session of Parliament from 20th July. Renowned Pandavani singer of Chhattisgarh and Padma Vibhushan awardee Tijan Bai has passed away. She had been suffering from a prolonged illness and was undergoing treatment at AIIMS Raipur. She breathed her last at around 3:15 a.m. today. With her powerful voice, compelling stage presence and distinctive style of narration, Tijan Bai gave Pandavani a new identity not only across India but also internationally. Her remarkable ability to bring the stories of the Mahabharata to life on stage made her one of the most celebrated exponents of Indian folk culture. In recognition of her outstanding contribution to Indian folk art, she was honoured with Padma Shri, Padma Bhushan and Padma Vibhushan, the country's second highest civilian award. Prime Minister Modi has expressed grief at the passing away of the renowned Pandavani singer Tijan Bai. In a social media post, Mr. Modi said that she earned global recognition for this folk art form from Chhattisgarh through her magnificent performances. The Prime Minister said that her demise is an irreparable loss to the world of art and culture. The annual Amarnath Yatra has witnessed an encouraging start this year with 32,313 devotees offering prayers at the cave shrine during the first 2 days of the pilgrimage. 20,145 pilgrims performed darshan at the cave

मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में दिन के 12:30 और 11 सेकंड हुए हैं। अब हमारी आज की दूसरी प्रसारण सभा आरंभ होती है। आइए सुने बहनों का साप्ताहिक कार्यक्रम घर आंगन।

0: कार्यक्रम घर आंगन सुनने वाली हमारी सभी श्रोता बहनों को रीना का प्यार भरा नमस्कार। रेणु जी आपको भी नमस्कार।
1: नमस्कार रीना। बहनों आपको भी मेरा नमस्कार। और बहनों हमारे साथ आज की हमारी मेहमान भी हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे, डॉक्टर सुमन गोयत, असिस्टेंट प्रोफेसर डाइट मदीना में आप कार्यरत हैं। आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद रेणु जी, और सभी बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार।
1: और बहनों हम अब आगे बढ़ते हैं अपने कार्यक्रम में, और अपने जो हमारा बातचीत का सिलसिला होता है, कितने सारे मुद्दे होते हैं जिन पे हमें बातचीत करनी होती है, तो हम शुरुआत करते हैं। देखिए, हम सुबह सुबह जब उठते हैं तो हमें पक्षियों की चहचहाट अपने आसपास सुनाई देती है, यदि हम अपने कमरे से घर से बाहर निकलते हैं तो, और आसपास हरे भरे पेड़, यदि हम किसी इतने ज़्यादा मतलब फॉर्चुनेट हैं अगर हम कि हमारे पास कोई पेड़ है, हमने कोई पेड़ लगा रखा है, तो जब हम उसकी हरियाली को देखते हैं, उस पर चहचहाते पक्षियों को देखते हैं, तो हमें कितना अच्छा लगता है और एक नए ही दिन की शुरुआत बहुत ही खुशनुमा होती है वो। तो ये कब हो पाएगा? जब हमारे आसपास पेड़ होंगे, क्योंकि पेड़, देखिए बहनों, हमें कितनी ऑक्सीजन देते हैं पेड़, जिससे कि हम जिंदा रहते हैं। दूसरा, पेड़ वन बारिश लाने में सहायक होते हैं। अब इस साल हम कम बारिश देख रहे हैं, बारिश कम हो रही है, क्योंकि इसका एक सबसे बड़ा कारण है हमारे आसपास पेड़ कम होते जा रहे हैं और पर्यावरण का जो असंतुलन हो गया है उसके कारण से ये एक बहुत बड़ा संकट हमारे पर आ गया है। और फिर पेड़ बारिश लाने में तो सहायक होते ही होते हैं, जब बारिश होती है तो वो मिट्टी के कटाव को भी रोकते हैं, और इस तरह से अनगिनत फायदे हमारे लिए हैं पेड़ों के, यदि हम पेड़ लगाएं तो। और हम बात कर रहे हैं वन महोत्सव की।
0: जी बिल्कुल, यही कारण है कि आज हम ये विषय लेके आए हैं अपनी बहनों के साथ बांटने, क्योंकि हर वर्ष जुलाई के प्रथम सप्ताह में मनाया जाने वाला वन महोत्सव, जो कि 1 जुलाई से 7 जुलाई तक के बीच में मनाया जाता है, और देखा जाए तो वृक्ष हमारे सच्चे मित्र हैं, जो बिना किसी स्वार्थ के हमें फल, फूल, औषधियाँ, वर्षा, स्वच्छ वातावरण और जीवन प्रदान करते हैं।
1: और इसकी शुरुआत जो है, ये वन महोत्सव मनाए जाने की शुरुआत 1950 से हुई थी। भारत के तत्कालीन कृषि मंत्री डॉक्टर K.M. मुंशी ने इसकी शुरुआत की थी, और जैसा कि रीना जी आपने बताया कि इसका उद्देश्य होता है लोगों में पेड़ लगाने और पर्यावरण बचाने के प्रति जागरूकता फैलाना। तो हम चाहते हैं हमारी बहनें जागरूक हों और अपने बच्चों को भी इसके बारे में जागरूक करें, और बहनों ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, और एक पेड़ माँ के नाम जैसा जिस तरह के अभियान चल रहे हैं वो इसीलिए हैं कि हम पेड़ों को लगाने में अपनी इंटरेस्ट दिखाएं और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, ताकि हमारी धरती हरी भरी हो और हमें स्वच्छ वायु हर समय मिलती रहे और हमारा पर्यावरण स्वच्छ रहे, सुरक्षित रहे।
0: और जैसा कि पर्यावरण स्वच्छ रहेगा, वातावरण स्वच्छ रहेगा, तो कहीं ना कहीं ये हमारे जो वन्य जीव जंतुओं पर बहुत प्रभावित करता है, वन्य जीव जंतुओं को। और क्या आपने कभी सोचा है कि कभी हमारे आसपास रहने वाले पशु पक्षी केवल हमारे साथी ही नहीं, बल्कि स्वास्थ्य से भी गहराई से हमसे जुड़े हुए हैं, और मनुष्य, पशु और पर्यावरण, ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यदि इनमें से किसी एक का स्वास्थ्य प्रभावित होता है तो उसका असर बाकी दोनों पर भी पड़ सकता है। और इसी महत्वपूर्ण संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए हर वर्ष 6 जुलाई को विश्व जूनोसिस दिवस भी मनाया जाता है।
1: और जूनोसिस क्या है? जूनोसिस है वो बीमारियां जो जानवरों से इंसानों में फैलती हैं, और जैसे रेबीज, बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू, और जैसे कोविड के पीछे भी एक कारण यहाँ कहीं ना कहीं ऐसा था, एंथ्रेक्स इत्यादि, अनगिनत ऐसे रोग हैं जो हमें जानवरों से मनुष्यों में फैलते हैं। तो बहनों 1885 में लुई पाश्चर ने दुनिया का पहला रेबीज़ का इंजेक्शन बनाया था, उसी को याद करने के लिए यह दिन मनाया जाता है। और रेबीज़ तो आप जानते ही हैं कितना भयंकर एक रोग है, रोग मैं कहूँगी, यानी कि जो कि डॉग से या बंदरों से या

बिल्ली से या चूहे का किसी भी जानवर के काटने से वो हमें हो सकता है, और उसमें उसका कोई इलाज नहीं है एक बार रेबीज हो जाए तो इसी तरह के जो भी रोग हैं जो हमें जानवरों से फैलते हैं उनका हमें ध्यान रखना चाहिए। नो डाउट हमें जानवरों को पालतू जो है हमने पाल रखे हैं उनको हमें प्यार करना चाहिए, बड़ी देखभाल करनी चाहिए, परंतु उसके साथ साथ हमें अपनी भी देखभाल करनी चाहिए। और बहनों यदि आपके पास अपना पेट है या आसपास के जानवरों को आप डॉग्स को आप खाना देते हैं तो या सहलाते हैं प्यार करते हैं तो आप ध्यान रखें कि आप उनसे जब भी संपर्क में आएं तो आप अपने हाथों को अच्छे से धोएं और बच्चों को भी यही बात सिखाएं, क्योंकि सुरक्षित हमें अपने आप को रखना है तो हमें इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये कुछ बातें थी जो हमने जोनोसिस के बारे में की, और हम अपने बहनों को और जो भी हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं हमारे श्रोता वो इस बात का ध्यान रखेंगे और अपनी जागरूकता को बढ़ाएंगे।

0: बहनों, ये हमने खूबसूरत गीत सुना और ये हमें वन महोत्सव से भी जोड़ता है, वर्ल्ड जोनोसिस डे से भी जोड़ता है और हमें हर तरह का संदेश देता है और यही दे रहा है कि कौन ऐसा मनुष्य है जिसको पंछियों से, पेड़ों से, इनसे प्यार नहीं होगा। तो हमें इससे यही संदेश से यही सीखना है कि यदि हमें इनसे प्यार है तो हम इनकी बढ़ोतरी की तरफ, इनके रखरखाव की तरफ हम ध्यान देंगे। और बहनों, अब इस बार कितनी आंधियाँ आई हैं ना, हर रोज
1: बिल्कुल
0: धूल साफ कर करके भाई थक चुके हैं और मेरी बहनें सभी मुझसे सहमत होंगी इस बारे में। तो आंधी, धूल और मिट्टी से बचाव हेतु भी अंतर्राष्ट्रीय दिवस है।
1: बिल्कुल जी, जब आप जब तक प्रकृति का संतुलन बना रहे ना तो जीवन सुरक्षित और स्वच्छ रहता है।
0: और 12 जुलाई को हम ये मनाते हैं दिवस,
1: और ये दिवस हम 12 जुलाई को मनाते हैं जिसका विषय है आंधी, धूल और मिट्टी से बचाव हेतु अंतर्राष्ट्रीय।
0: देखो बहनें कान लगाए हुए हैं ये सुनने के लिए कि बचाव हेतु करें क्या।
1: जी बिल्कुल, कुछ छोटी छोटी चुनौतियां हैं, उनका सामना हमें डट के करना है।
0: हाँ,
1: और इसके लिए सबको मिलके प्रयास करना है और यही उद्देश्य है इस दिवस को मनाने का कि आम जनता को जागरूक करना कि आप किस प्रकार इससे सतर्क रहें और अपने आप का, अपना स्वयं का बचाव कर सकें। हमें यह दिवस हमें याद दिलाता है कि स्वच्छ वातावरण सतर्कता और सामूहिक प्रयासों से धूल आंधी के दुष्प्रभावों को कम कर सकते हैं।
0: और दुष्प्रभाव कितने सारे हैं ना, देखिए सांस की बीमारी होती है, अस्थमा, आँखों के जलन, एलर्जी बढ़ जाती है, पर्यावरण में भी नुकसान होता है, मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है, फसलें खराब हो जाती हैं, जैसे गेहूं यदि खड़ी हुई है आंधी आ गई पूरी बिछ जाएगी, और इसी तरह से कोई भी फसल है वो खराब हो जाती है और उड़ानें रद्द हो जाती हैं, सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, सोलर पैनल और मशीनें खराब हो जाती हैं। अभी जो 15 दिन पहले जो आंधी आई थी ज़बरदस्त, उसमें बहुत नुकसान हुआ,
1: बहुत ज़्यादा नुकसान।
0: हाँ, और ये आंधियाँ और ये सब भी क्यों आती हैं, पर्यावरण इम्बेलेंस के कारण आ रही हैं ज़्यादा, और पानी जो है नदियों तालाबों में गर्द जमा हो जाता है, पानी खराब हो जाता है। तो इस सब के बचाव के लिए भी एक दिवस 12 जुलाई को मनाया जाता है बहनों। तो इसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए कि हम पर्यावरण संतुलन बनाए रखें।
1: यही कहीं ना कहीं ये चीज़ें जुड़ती हैं कि अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने चाहिए।
0: हाँ, पेड़ लगाएं, बस यही है। तो आज के हमारे पूरे प्रोग्राम का जो सार है वो यही है कि पेड़ लगाएं ज़्यादा से ज़्यादा, तो हम सब तरह से ठीक रहेंगे, हर चीज़ दुरुस्त रहेगी। और दूसरा जो चीज़ दुरुस्त रहेगी वो आगे विश्व जनसंख्या दिवस भी तो है जो हम मनाते हैं 11 जुलाई को।
1: बिल्कुल,
0: और जनसंख्या तो हमारे मनुष्यों की जनसंख्या तो काउंट हो रही है ना यहाँ पे।
1: बिल्कुल हो रही है जी काउंट, और काउंट ऐसे हो रही है कि जैसा कि हम सभी जानते हैं पूरे विश्व भर की इस समय जनसंख्या 8.3 अरब है, लेकिन जिसमें से भारत की जनसंख्या 1.46 अरब है।
0: बिल्कुल, तो देखो अब हम कहाँ हैं, कितना बड़ा योगदान है हमारा इस संसार की जनसंख्या को बढ़ाने में, परंतु ये हमारे लिए बहुत ही शर्मनाक है कि हम इतनी तेज़ी से संख्या में बढ़ते जा रहे हैं जो कि हमारे सभी संसाधनों पर भी प्रभाव डाल रहा है। तो बहनों, विश्व जनसंख्या दिवस पर हमें ये संकल्प लेना चाहिए कि हम अपनी जनसंख्या को, कुछ भी हो जाए, जैसे चीन से सबक लेते हुए, चीन को अपने सामने रखते हुए, उसके एग्जाम्पल को देखते हुए, हमें अपनी जनसंख्या पर कंट्रोल करना है। यही हम सबको संकल्प करना, हम संकल्प कर ले तो सब कुछ हो सकता है। और हमारे साथ जो हमारी आज मेहमान हैं डॉक्टर सुमन गोयत जी, डॉक्टर गोयत, हमने आपसे भी इसी विषय पर बातचीत करनी है, बढ़ती जनसंख्या, घटते संसाधन।
2: जी,
0: तो हम अपनी बातचीत की शुरुआत करते हैं। और देखिए, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बढ़ती जनसंख्या किस तरह से हमें प्रभावित कर रही है, तो हम सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे, बढ़ती जनसंख्या, घटते संसाधन कथन से हम समझें क्या।
2: रेनू मैम, यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी कि हम इस चीज़ को इस तरीके से लें कि संसाधन जो हैं वो हमारे पास सीमित हैं। ये कोई अथाह भंडार नहीं है कि हम जितना निकालेंगे और आ जाएगा, ये तो उतना ही है। हमने उसको किस तरीके से अपने पीढ़ी को और आने वाली पीढ़ियों तक किस तरीके से लेकर के जाना है,

0: ये तो हो गई संसाधन की बात। और जनसंख्या जो कि अभी अभी रीना बहन ने बताया कि लगभग 1.5 अरब के आसपास भारत जाने वाला है, तो देखिए रिसोर्सेज को हम नहीं बढ़ा पाएंगे किसी भी सूरत में, उनको हम यूज़ करने का तरीका बदल सकते हैं, लेकिन जनसंख्या जब डे बाई डे बढ़ रही है तो वो अपने आप में दोनों कनेक्टेड हैं। जीने के लिए हमें संसाधनों की ज़रूरत है। आप वैसे भी देखिए ना, घर में जब हम खाना बनाते हैं, एक रोटी के अगर हम 4 हिस्से करेंगे तो पेट किसका कितना भरेगा, और एक रोटी जब हम पूरी खाएंगे तो किसको कितनी तृप्ति मिलेगी। तो ये वही बात है यहाँ पे कि संसाधन जो है वो हमारे सीमित हैं, यूज करने वाले जितने जितने बढ़ेंगे उतना उतना खतरे में ये पर्यावरण, क्या मैं कहूँगी कि ये पूरा समाज आता चला जाएगा। कहीं ना कहीं इसके पीछे जो है लड़ाइयाँ भी होंगी। आप देख रहे हो बेरोजगारी भी डे बाई डे जो है वो इंक्रीज होती जा रही है, तो उसके पीछे कारण क्या है, यही है।
1: और बेरोजगारी से संबंधित कितनी समस्याएं हैं।
0: बिल्कुल मैम, बिल्कुल। लूट खसोट, चोरी चकारी, इतनी सारी बुराइयां जो है वो बढ़ती जा रही हैं बेरोजगारी के कारण। तो समाज का जो ढांचा है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ाएगा अगर हमारी जनसंख्या बढ़ती जाएगी और रिसोर्सेज जो है वो लिमिट में ही हैं। ये हमें समझना होगा, इनको हम बढ़ा नहीं सकते किसी भी सूरत में,
1: तो हमें अपनी जनसंख्या को ही कम करना होगा।
0: बिल्कुल मैम, बिल्कुल
1: बिल्कुल ठीक कहा आपने। कितने अच्छे से आपने ये बात समझाई है, क्योंकि ये बात तो सबको ही समझ आ जाएगी कि जब एक रोटी है और अगर उसको एक जना खाएगा तो उसका पेट अच्छे से बढ़ेगा, भरेगा, और अगर उसको दो खाएंगे तो चलो आधी आधी खा लेंगे, पर यदि उसको 10 लोग खाएंगे तो कितना कितना हिस्से आएगा,
0: एक बाइट भी ढंग से नहीं आ पाएगी,
1: वो भी नहीं आएगा। तो हमें इस चीज को समझना चाहिए। और तो सुमन जी, अब हम भारत में हमारी जनसंख्या, जैसे हमने अभी पहले भी बात की है कि कितना कितनी है हमारी जनसंख्या,
0: 1.46,
1: और अभी हमारी जनगणना
0: चल रही है रिसेंटली,
1: और उसमें पता नहीं क्या आएगा।
0: हाँ,
1: क्या
0: जी, बिल्कुल शॉर्टली मैम बढ़ा मिलेगा।
1: तो भारत में जनसंख्या बढ़ने के मुख्य कारण क्या है?
0: देखिए सबसे पहले तो यही चीज है कि जन्म दर जो है वो बढ़ रही है। जन्म दर बढ़ने के कारण जो है, और मृत्यु दर जो है वो डे बाय डे कम हो रही है। हम अवेयर तो हो गए, बीमारियों का इलाज हमें मिल गया, दोनों का डिफरेंस जो है वो ज्यादा है। उसकी वजह से जो है वो जनसंख्या जो है वो डे बाय डे बढ़ रही है, और इसके साथ साथ अनअवेयर भी हैं हम लोग। हमारे समाज में एक और ढांचा चल रहा है, पुत्र की चाह, जिसको मैं कहूँगी कि इस एक छोटी सी चाह के पीछे हम पता नहीं, अभी कुछ दिन पहले पढ़ा था कि एक महिला है जिनको 11वें संतान के रूप में पुत्र की प्राप्ति हुई है और वो वहाँ जा कर के रुकी हैं, वो हस्बैंड वाइफ। तो देखिए ये अनअवेयरनेस ही है। आज लड़कियां कहीं कम नहीं हैं, हर काम जो है वो शायद लड़कों से बेटर ही करती आ रही हैं, और करेंगी भी,
1: कर रही हैं
0: और करेंगी भी, क्योंकि उन्हें एक्सपोजर अब मिला है, पहले एक्सपोजर नहीं था। तो ये जो सोच है हमें बदलना पड़ेगा, अवेयर होना पड़ेगा, हर चीज को समझ के चलना पड़ेगा कि हम हर चीज, हम अपनी जिम्मेवारी जब हम मानेंगे तो ही हम जो है इसमें बैलेंस कर पाएंगे।
1: बिल्कुल ठीक कह रही हैं। तो ये कुछ मुद्दे हैं जहाँ पर कि हम भारत में जनसंख्या बढ़ने के कारण हम मान सकते हैं।
0: बिल्कुल,
1: है ना। तो अब जब हमारी जनसंख्या बढ़ती जा रही है तो अब ये एक बहुत ही विचारणीय प्रश्न है कि ये हमारे पर्यावरण को भी प्रभावित कर रही है।
0: डेफिनेटली मैम।
1: तो क्या क्या मतलब किस तरह से पर्यावरण हमारा प्रभावित होता है?
0: देखिए सबसे पहले तो अगर हम बात करें तो जब भी हम पहले अपने बुजुर्गों के पास बैठते थे वो अपने गांव की बात करते थे कि गांव की हवा ऐसी थी, वहां पे हम खेत में घूमने जाते थे तो ये चीज हमें खाने को मिलती थी। आज बेशक से हम गांव में चले जाएं, वहां पे भी एसी का शोर आपको सुनने का मिलेगा, कोई हवा वहां की वो ऐसी नहीं है कि साएं साएं की आवाज आपको सुनने को मिले, पेड़ वहां भी काट दिए गए हैं। हर गांव में आप देखेंगे कि जो जमीन कृषि योग्य थी उसमें कॉलोनीज कट रही हैं, वहां पे फार्म हाउसेस बनाए जा रहे हैं, वहां पे मतलब जो गांव का एक नेचुरल जो सौंदर्य था, प्राकृतिक वातावरण था, वो वहां भी खत्म हो गया। शहरों की तो आप बात ही क्या करें, जहां मंजिलों की मंजिलें ऊपर चढ़ाते जा रहे हैं और थोड़ा सा कुछ होते ही मतलब जाने भी जा रही हैं। अभी एक दो दिन पहले देखा था कि एक माँ ने दीवार के ऊपर बच्चे को जस्ट एक सेकंड के लिए बिठाया और वो बच्चा गिर गया। जब 12-13 मंजिल से बच्चा गिर रहा है तो क्या बचेगा उसके अंदर? हम मंजिलों पे मंजिल बनाते जा रहे, रहने की जमीन ही नहीं है हमारे पास।
1: कृषि योग्य जमीन खत्म होती जा रही है, कृषि नहीं होगी
0: तो खाएंगे क्या? पानी नहीं है हमारे पास, पीने योग्य पानी जो है वो हम देख

0: कि शायद 4% से भी कम रह गया है, कितना हम इनको रिसाइकिल कर पाएंगे? रिसाइकलिंग में भी बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा, अवेयर होना पड़ेगा, तब जाके हम रिसाइकिल कर पाएंगे। तो क्यों ना हम इनका यूज़ ही जो है वो इतना
1: सोच
0: स्मार्टली
1: समझ के
0: करें,
1: करें।
0: संरक्षण के साथ करेंगे, तो शायद थोड़ी बहुत जो बात है वो बनने की कगार पे आ पाए।
1: बिल्कुल। अब ये कृषि योग्य भूमि का, जैसे कि आपने कहा कि कॉलोनीज कट रही हैं, मकान बनाए जा रहे हैं, जिस रास्ते पर हम जाते थे पेड़ों की कतारें मिलती थी, वहाँ सब कट चुका है और कहीं कोई ढाबा बन गया है, कहीं कुछ बन गया है। इसके पीछे जैसे आपने कहा कि जनसंख्या बढ़ती हुई, जनसंख्या क्योंकि हमारी जरूरतें बढ़ती जा रही हैं।
0: बिल्कुल।
1: अब हमें, अब जनसंख्या बढ़ेगी, ज्यादा लोग होंगे तो रहने के लिए ज्यादा
0: घर भी ज्यादा चाहिएंगे, काम करने के लिए जगह भी ज्यादा चाहिएगी।
1: इस चीज को किसान जो है वो भी समझ रहा है, वो सोचता है कि मुझे कृषि योग्य जो मैं कृषि करता हूँ उसमें मुझे इतना फायदा नहीं होता जितना
0: इंडस्ट्रियलाइज में होगा उसको। उसको जब वहां पे जब जाते हैं ना ये लोग उससे बात करने के लिए, उसे इतना अच्छा प्रपोजल दिखाते हैं कि आपको हम एक विला भी देंगे, आपके बच्चों के लिए ये फैसिलिटी भी रखी जाएगी, और अमाउंट जो है वो उस टाइम के लिए उसको लग रहा है कि हाँ बहुत बड़ा अमाउंट है, मेरी लाइफ सेटल्ड हो जाएगी। लेकिन आने वाली पीढ़ियों की सोच जो है उससे वो किसान अभी दूर है। और अगर मैं बात करूं संसाधन की, तो वो सोच तो आसपास है ही नहीं, वहां पे हम पर्सनल बेनिफिट तक सीमित रहते हैं, सोच का दायरा सीमित है। हम पर्यावरण को लेकर के या फिर ये सोच करके अपनी जमीन किसान ना बेचे कि कल को खाने की जिम्मेदारी जो है वो मुझे ही निभानी है, सच कहूँ तो कोई भी किसान शायद खेती करना ही नहीं चाहता। उनका सबका आज के दिन का सिनेरियो बड़ा भयानक है, उनको एक इनसिक्योरिटी जो है वो घेरे हुए है कि जो पड़ोसी था, जो और कोई उद्योगपति था, उसके बच्चे का स्टैंडर्ड ऐसा है, मेरे बच्चे आज वहां रह गए हैं। तो इसमें भी कहने में मुझे कोई मतलब हैरानी नहीं हो रही कि कोई भी किसान नहीं चाहता कि उसका बेटा किसान बने या उसके बच्चे जो हैं वो खेती करें, वो चाहते हैं कि वो निकले यहाँ
1: निकल
0: से।
1: हाँ, तो पढ़ाई ये जो, लिखाई करके हाँ कहीं नौकरी में
0: वो कहीं उनको हो सकता है कि हेल्प करने के लिए अपनी जमीनें बेच रहे हों कि मुझे इंडस्ट्रियलिस्ट बनना है या मुझे ये काम करना है, किसी ना किसी वजह से जो है खेती योग्य भूमि और खेती दोनों ही खत्म हो रहे हैं।
1: वो सुमन जी, इसके पीछे एक कारण शायद ये भी है कि जो कृषि कर रहा है, जो उपज कर रहा है, उसके उसे उचित मूल्य
0: बिल्कुल मैम बिल्कुल उचित मूल्य नहीं मिलता।
1: और गांव में और शहरों की बजाय संसाधनों की कमी, जो सुविधाओं की कमी,
0: संसाधन सीमित
1: तो है, सुविधाओं की कमी, जिस तरह के सुविधाएं शहर में हमारी सरकार हमें उपलब्ध करवा रही है, यदि उसी तरह की सुविधाएं गांव में भी उपलब्ध करवाए जाएं तो कोई कारण ही नहीं है कि कोई शहर
0: पलायन होगा, कोई आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, इसके पीछे सुविधाएं ही रही हैं हमेशा, चाहे वो शिक्षा व्यवस्था को लेकर के हो, चाहे वो लिविंग स्टैंडर्ड्स को लेकर के हो, या आदमी के दिमाग की हो कि मैं तो इस जगह रह रहा हूँ। हम कंपैरिजन भी तो करते हैं ना कि हमारा घर कहाँ है, आपका घर कहाँ है, वो इलाके का नाम सुनते ही एक माइंड में पिक्चर बना लेते हैं, जबकि हम इंसान को इंसान के रूप में या उसके विचारों से जानना नहीं चाहते। एक स्टैंडर्डाइजेशन जो चल रहा है उसका शिकार हम सब लोग हैं, और उसके कारण से भी ये जो चीजें हैं, पलायन होना, भूमि खत्म होना, पर्यावरण का इनबैलेंस होना, ये कहीं ना कहीं उसकी वजह
1: व्यावसायिकता हर चीज में आ गई।
0: बिल्कुल मैम बिल्कुल, हर चीज में प्रोफेशनलिज्म जो है वो हावी होता जा रहा है।
2: इन सभी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए जो आपने अभी बताई है कि भविष्य की जो पीढ़ी है, जो आने वाले जनरेशन है हमारी, उनके लिए संसाधनों को सुरक्षित रखने के लिए हमें आज क्या कदम उठाने चाहिए?
0: देखिए मैम, यहाँ पे मैं कहना चाहूँगी कि भविष्य की पीढ़ी नहीं, मैं तो कहूँगी वर्तमान की पीढ़ी कदम उठाए। यहाँ पे हमें संसाधनों का जो यूज करना है वो एक स्मार्टनेस के साथ करें, उनका जो संरक्षण है उसको अपनी आदत में डालें। अगर मैं कहीं देख रही हूँ कि रूम में कोई भी नहीं बैठा और पंखा चल रहा है, तो बंद करना जिम्मेवारी तो उसी की थी जो वहां से लास्ट में निकला, लेकिन उसने नहीं किया तो मैं तो करूं।
2: अपने मतलब जो पहले देख रहा है बिल्कुल, वो पहले करे।
0: बिल्कुल बिल्कुल, जैसे हम ऑफिस से निकलते हैं हम कहते हैं हमारे क्या घर का बिल आएगा, गवर्नमेंट भरेगी, वो गवर्नमेंट हमारे लिए काम कर रही है, हमने बनाई है, हमारे लिए ही सारी चीजें चल रही हैं। जब तक हम जिम्मेवारी नहीं मानेंगे गवर्नमेंट कहाँ से आएगी, कहाँ कहाँ आएगी? हर बंदा ये माने कि मैं ही सरकार हूँ, मेरी ही जिम्मेवारी है, मुझे चाहे बिजली का ध्यान रखना है, चाहे पानी का रखना है, या मैं अगर जमीन को भी पॉल्यूटेड कर रहा हूँ कोई भी पॉलिथीन फेंक करके, या वैसे गंदगी फैला रहा हूँ कहीं पे भी छिलका डाल करके, या डस्टबिन के अलावा कूड़ा कहीं भी डाल करके, तो ये सारी की सारी जो हैबिट्स हैं

0: ये हम लोगों को सुधारनी होगी। हमें एक आदर्श नागरिक के रूप में अपनी जिम्मेवारी लेते हुए, हो सकता है मुझे देख करके मेरे साथ वाला भी करने लग जाए और मेरे जो फैमिली मेंबर्स हैं उनके लिए तो हर माँ की कहूँगी कि मैं जिम्मेवारी बनती है, हर बहन को मैं ये कहूँगी कि वो इन चीज़ों को खुद अपनाए और अपनी फैमिली के अंदर ये जो गुण है ये इनकलकेट करे, ताकि भविष्य में आने वाली जनता जो है इनको संरक्षण के साथ यूज़ करके अपने माइंडसेट में रखे कि लिमिटेड साधन है, अगली पीढ़ी के लिए भी बचाना है।
1: जी,
0: एक एडवर्टाइजमेंट बनी थी कि बच्चा खुद कहता है पापा को कि आप बाइक ऑफ करो, मेरे लिए तो फ्यूल बचेगा ही नहीं।
1: जी,
0: तो जब जब हमारी नेक्स्ट जनरेशन इतनी स्मार्ट हो जाएगी,
2: अब हमारे बच्चे कहते हैं कि फ्यूल के साथ साथ पानी, मम्मी आप इतना पानी चला रहे हो हमारे लिए क्या छोड़ोगे,
0: आरो जो पानी वेस्ट कर रहा है उसको हम बकेट में इकट्ठा करें, पौधों में यूज करें,
2: बिल्कुल,
0: कपड़े धो रहे हैं तो उस पानी को सफाई में यूज करें, गाड़ी धोने में यूज करें। तो इस तरीके से जब स्मार्टली यूज होगा रिसोर्सेज का और संरक्षण के लिए हमें कोई कैंपेनिंग ना चलानी पड़े, हर बंदे के माइंड में ये रहे कि ये रिसोर्सेज जो है ये मुझे पहले वाली पीढ़ी से मिली है और मुझे इनको घटाना नहीं है, एज इट इज अपनी अगली पीढ़ी को दे करके जाना मेरी जिम्मेवारी है और अगली पीढ़ी को रिस्पॉन्सिबल बनाना ये भी मेरी जिम्मेवारी है, तो आई थिंक कि थोड़ा बहुत जो बैलेंसिंग है वो हो पाएगी और थोड़ा बहुत अवेयरनेस जो है वो हम दे पाएंगे।
2: बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छी बातें आपने हमें बताई हैं सुमन जी, और ये बातचीत तो आगे चलती जा इतनी लंबी हो सकती है, परंतु समय का अभी अभाव है तो हम अपनी बातचीत को यहीं विराम देंगे। और धन्यवाद, आपने इतनी अच्छी बातचीत हमारे साथ की और इतनी अच्छी जानकारी हमारी बहनों को दी है।
1: और जब रेणु जी, कार्यक्रम हमारी बहनों का है तो बहनों का सबसे ज़्यादा समय मुझे लगता है सभी बहनें जानती हैं कि रसोई घर में बीतता है, और जब तक बहनों के कार्यक्रम में रसोई घर की कोई बात ना हो तब तक कैसे कार्यक्रम में बात बनेगी। तो चलते चलते बहनों को एक छोटी सी रेसिपी दे के जा रही हूँ, जैसा कि बरसात का मौसम है, कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा है लेकिन हम चाहते हैं वो हेल्दी भी हो, तो बच्चों का मन बहलाने के लिए आप खीरा लीजिए, खीरे को छील करके उसको बीच में से दो हिस्से कर दीजिए और उसके बीच के जो बीज है ना उन्हें अलग निकाल के छोटा छोटा चॉप कर लीजिए, साथ में प्याज, टमाटर, उबला हुआ आलू, स्वीट कॉर्न उबले हुए, सारी सामग्री मिला करके और लेमन जूस, चाट मसाला डाल के उसको वापस उस खीरे में भर के और ऊपर थोड़ी सी मेयोनीज, जो कि बच्चों का टेस्ट है आजकल के, आप ना डालें तो बेहतर है लेकिन बच्चों के टेस्ट के अनुसार उसे ऊपर से डाल के थोड़ा सा सर्व अच्छे से सर्व करिए और फिर देखिए बच्चे कैसे मज़े से उसका आनंद लेंगे और हमें लगता है कि वो बच्चों की हेल्थ के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद रहेगा।
0: बिल्कुल,
1: और
2: बिल्कुल ठीक कह रही हो रीना, फ़ायदेमंद तो रहेगा ही खीरा खाना और उसमें में चना डाल लिया, तो इसी तरह से बहनें चना चाट भी बना सकती हैं। मान लो उसको बीच में से खीरे को काट के वो करने का समय नहीं भी है, तो वो उबले हुए चने के अंदर आप खीरा, प्याज और टमाटर वगैरह डालें और जो भी कुछ आप उसमें फ्रूट्स भी डाल सकती हैं तो उसके साथ खा सकते हैं, या आप ओट्स के अंदर भी आप फ्रूट्स काट सकते हैं। आजकल ओट्स प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है और प्रोटीन पर आजकल बहुत फोकस है हम सभी का, तो ये भी कर सकते हैं। तो ये छोटे छोटे टिप्स हैं जो बहनें इस्तेमाल करें, और बहनें हमारी बहुत स्मार्ट हैं, वो भी इनको ज़रूर करेंगी, हमें ये आशा है। और इसी के साथ ही हम कार्यक्रम का समय अब समाप्त हो रहा है, हम अपनी बहनों से लेते हैं इजाज़त। नमस्कार।
0: नमस्कार, नमस्कार।

0: बहनें अभी सुन रही थी अपना कार्यक्रम घर आंगन। आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है, मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्स पर। अब हिंदी समाचार होंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से, उसके बाद प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। सरकार ने तरल प्राकृतिक गैस एलएनजी की आपूर्ति से आपातकालीन पाबंदियों को हटा लिया है। ये निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष में युद्ध विराम के बाद होर्मुज जलडमरू मध्य से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर शुरू होने के बाद किया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना

कहा है कि प्राकृतिक गैस आपूर्ति नियमन आदेश 2026 में संशोधन किया गया है। इस संशोधन के अंतर्गत उन विशेष आपातकालीन प्रावधानों को हटा दिया गया है जिनके अंतर्गत सरकार को देश में उत्पादित प्राकृतिक गैस और आयातित एलएनजी के आवंटन में प्राथमिकता देने की अनुमति थी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर उन खबरों को भ्रामक और गलत बताया है जिनमें यह दावा किया गया है कि भूटान ने भारत से E20 पेट्रोल आयात करने का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। मंत्रालय ने कहा है कि भूटान को E20 पेट्रोल निर्यात करने का कोई प्रस्ताव नहीं दिया गया है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण 2025 के 1 जुलाई से सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। केंद्रीय मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की। उन्होंने कहा कि मनरेगा को लागू होने में 3 साल से ज्यादा का समय लगा था जबकि विकसित भारत जी राम जी को पूरे देश में सिर्फ 1 दिन में लागू कर दिया गया। भारत की अध्यक्षता में कल से केरलम के कोच्चि में 2 दिवसीय ब्रिक्स महिला कार्य समूह की बैठक शुरू होगी। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बताया कि ब्रिक्स देशों के अधिकारी महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास के क्षेत्रों सहित अन्य क्षेत्रों में भी महिला सशक्तिकरण से संबंधित मुख्य मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। ब्रिक्स महिला ट्रैक ने 4 मुख्य क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया है। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह कल से जिनेवा में एआई गवर्नेंस पर संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक संवाद में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये वैश्विक संवाद एआई के अंतर्राष्ट्रीय संचालन को आगे बढ़ाने का अनूठा अवसर है जो अंतर्राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और बहुहितधारक प्रयासों का पूरक है। 2 दिवसीय वैश्विक एआई संवाद में एआई पर स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक पैनल की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी जो एआई की क्षमताओं, उभरते अवसरों और जोखिमों का पहला स्वतंत्र वैज्ञानिक मूल्यांकन प्रदान करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्राबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध पंडवानी गायिका और पद्म विभूषण से सम्मानित तीजन बाई का निधन हो गया है। वे लंबे समय से बीमार थीं। रायपुर के एम्स में उनका इलाज चल रहा था। आज सवेरे लगभग 3:15 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। अपनी सशक्त आवाज, प्रभावशाली मंच उपस्थिति और विशिष्ट कथा शैली से तीजन बाई ने पंडवानी को न सिर्फ भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान दी। महाभारत की कहानियों को मंच पर जीवंत करने की उनकी अद्भुत क्षमता ने उन्हें भारतीय लोक संस्कृति की सबसे प्रशंसित प्रस्तुतकर्ताओं में से एक बना दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई के निधन पर दुख व्यक्त किया है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक देश के अधिकांश हिस्सों में तेज बारिश जारी रहने की संभावना व्यक्त की है। आज गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, कर्नाटक, तेलंगाना में भी मूसलाधार बारिश हो सकती है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप आशुतोष से प्रादेशिक समाचार सुनिए। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि एथेनॉल कोई नई अवधारणा नहीं है और इसका उपयोग एक सदी से अधिक समय से हो रहा है। कल राजस्थान में श्री पुरी ने कहा कि सरकार अपने जैव ईंधन मिश्रण कार्यक्रम की रचनात्मक आलोचना

0: घोषणा का स्वागत करती है। उन्होंने आश्वस्त किया कि सरकार सुझावों के अनुसार आवश्यक सुधार करेगी। श्री पुरी ने कहा कि भारत में इथेनॉल मिश्रण का विचार सबसे पहले पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान शुरू हुआ था।
1: एथेनॉल का काम ना हमने इन्वेंट किया, 100 साल से इस पे काम हो रहा है। भारत में अगर आ जाए तो इस पे पहली योजना बनाई थी कांग्रेस की सरकार ने, मैं बात कर रहा हूँ 2006 से लेकर 2008, और हमारा एक टारगेट था कि 5% हमें बायोफ्यूल ब्लेंडिंग करनी है 10 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी में, कर नहीं पाए, वो दूसरी बात है, 1.4% पे हमारी गाड़ी रुक गई।
0: ऑटोमोबाइल उद्योग के विशेषज्ञों ने कहा है कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को एक सुनियोजित, चरणबद्ध और वैज्ञानिक रूप से संचालित प्रक्रिया के जरिए लागू किया गया है। नई दिल्ली में इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पूर्व प्रबंध निदेशक वर्तिका शुक्ला ने कहा कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम 2018 में संरचित चर्चा और हितधारकों के परामर्श के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में रखा गया था। टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स के कार्यकारी उपाध्यक्ष विक्रम गुलाटी ने कहा कि एथेनॉल एक स्वच्छ ईंधन है, ये अच्छी परिचालन क्षमता और तेज गति प्रदान करता है। केंद्र सरकार ने कीमतों पर नियंत्रण के लिए बफर प्याज की खरीद के मूल्य में 13% की वृद्धि की है। प्याज की कीमत अब 1,875 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़कर 2,125 रुपये प्रति क्विंटल हो गई है। केंद्रीय उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि संशोधित मूल्य से किसानों को लाभ मिलेगा और बफर खरीद प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा। मंत्रालय ने कहा कि कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के वर्ष 2025-26 के दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार प्याज का उत्पादन 307 लाख मीट्रिक टन से अधिक होने का अनुमान है। मंत्रालय ने कहा कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में वर्तमान स्टॉक पर्याप्त है और फिलहाल प्याज के भंडार में कोई कमी नहीं है। अखिल भारतीय औसत खुदरा मूल्य 31 रुपये प्रति किलोग्राम है। प्याज का निर्यात भी सामान्य है। इस वर्ष जून में लगभग 1,50,000 मीट्रिक टन प्याज का निर्यात हुआ है। हरियाणा में बहादुरगढ़ पुलिस के विशेष कार्यबल तथा दिल्ली पुलिस के गुप्तचर रोधी विशेष प्रकोष्ठ की संयुक्त कार्रवाई में आज लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 2 इनामी बदमाश ढेर हो गए। दोनों हांसी के चर्चित जिम संचालक कपिल हत्याकांड में वांछित थे और उन पर 1-1 लाख रुपए का इनाम घोषित था। हरियाणा पुलिस के महानिदेशक अजय सिंघल ने बताया कि एक सूचना के आधार पर दोनों आरोपियों को बहादुरगढ़ क्षेत्र में उस समय घेरा गया जब वो किसी गंभीर आपराधिक वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। पुलिस को देखते ही आरोपियों ने पुलिस के दल पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। आत्मरक्षा के लिए जवाबी कार्रवाई की गई और मुठभेड़ में दोनों आरोपी तथा अंकित नाम का एक पुलिस कर्मचारी घायल हो गए। मुठभेड़ के दौरान 4 पुलिसकर्मियों की बुलेट प्रूफ जैकेट पर गोलियां लगी जिससे उनकी जान बच गई। उपचार के दौरान दोनों इनामी आरोपियों की मौत हो गई जबकि घायल पुलिस कर्मचारी की हालत स्थिर है। मारे गए आरोपियों की पहचान जिला हिसार में टिब्बा दानशीर निवासी, गांव जाखोड़ निवासी हिमांशु के तौर पर हुई है। पुलिस महानिदेशक ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति के अनुरूप हरियाणा पुलिस संगठित अपराध, गैंगस्टर नेटवर्क और कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाले प्रत्येक अपराधी के विरूद्व पूरी दृढ़ता एवं प्रतिबद्धता के साथ कार्रवाई कर रही है। हरियाणा के पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं वल्लभगढ़ के विधायक पंडित मूलचंद शर्मा ने आज सुबह पंडित प्लेस तिगांव रोड के निकट बड़ी सीवर लाइन बिछाने के कार्य का शुभारंभ किया। इस परियोजना पर लगभग 75 लाख रुपए की लागत आएगी। मौसम विभाग ने पंजाब और हरियाणा के अधिकांश हिस्सों के साथ साथ केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में कल से 8 जुलाई तक भारी बारिश, बिजली और गरज के साथ तूफान की संभावना व्यक्त की है। इसे देखते हुए चंडीगढ़ स्थित मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। मानसून के आगमन के बाद कई जगह हुई बारिश से लोगों को गर्मी में राहत मिली है लेकिन उमस में भी वृद्धि हुई है। मानसून की इस वर्षा से किसानों को भी फसल की बुआई में लाभ मिलेगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।
2: आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्ज पर प्रस्तुत है कार्यक्रम आपके अनुरोध पर।

0: श्रोताओ, आज महीने का पहला रविवार है और आज आपके अनुरोध पर कार्यक्रम होता है आपकी फ़ोन कॉल्स पर आधारित। हमें इंतज़ार है आपकी फ़ोन कॉल्स का और पहले साथी तो हम तक पहुंच भी चुके हैं, उनसे बात करेंगे और सभी साथियों के लिए एक बार नंबर दोहराते हैं 255-440, 255-447 और 255-448। 01262 STD कोड जरूर लगाएं रोहतक का और हम कोशिश करेंगे कि आपके पसंद का गीत आप तक पहुंच पाए। और पहले लिसनर हम तक आ चुके हैं, आइए जानते हैं। हेलो
1: हेलो,
0: हाँ जी, बहुत बहुत स्वागत है, राजकुमार हमारे साथ हैं, अपना परिचय दीजिए।
1: नमस्कार जी, मैं गांव मोड़ा जिला आंसी से राजकुमार
0: जी, बहुत स्वागत है आपका। और कैसे हैं आप, मौसम कैसा है आपके यहाँ?
1: बिल्कुल अच्छे हैं जी हम, और मौसम थोड़ी देर पहले तक तो बहुत ज्यादा गर्मी थी जी, अभी बादल आ गए हैं जी, कहाँ से आए हैं, बड़ा अच्छा मौसम हो रहा है, बाकी बारिश तो अभी दूर है,
0: शायद रोहतक की तरफ से ही गए हैं।
1: देख लो जी, आपकी साइड बारिश हो रही हो तो
0: जी, बादल इधर भी छाए हुए हैं। हम जब स्टूडियो के लिए आए तो काफी धूप थी तेज और अब बादलों वाला मौसम है बाहर। चलिए अच्छा है, थोड़ा सा उमस भरी गर्मी से राहत मिलेगी सभी को।
1: यहाँ से पता चला जी, हिसार किसी से बात हुई थी जी मेरी, वो बता रहे थे हिसार में तो बारिश हुई है थी।
0: हाँ, तो आपके यहाँ भी बस पहुँचने वाली है। कौन सा गाना सुनेंगे आज?
1: आज गीत सुनाओ जी आप, मोहब्बत फिल्म का
0: जी।
1: सांसों से नहीं, कदमों से नहीं, मोहब्बत से चलती है दुनिया।
0: बिल्कुल सही बात है। तो
1: हाँ जी,
0: और कुछ कहना चाहेंगे?
1: बस ये गीत सुनवा दो और साथी भी श्रोता लाइन में है।
0: चलिए धन्यवाद आपका, और सुनवा रहे हैं आपको और आपके सभी साथियों को ये गीत।
1: धन्यवाद,
0: शुक्रिया।

0: और देखते हैं अब हमारे साथ कौन से श्रोता जुड़े हैं। हेलो,
1: जय माता दी मैडम जी।
0: जय माता दी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
1: मेरा नाम पूरण वर्मा है और मैं डिस्ट्रिक्ट जयपुर राजस्थान गांव का नाम अंजमेल बुगला से बोल रहा हूं मैडम जी।
0: हाँ जी, कौन सा गीत सुनना चाहेंगे
1: जी? मैडम फिल्म का नाम रहेगा थोड़ी सी बेवफाई और उसमें गाने के बोल है मौसम मौसम लवली मौसम।
0: हाँ, मौसम कैसा है आपके यहाँ?
1: मौसम मैडम जी यहाँ बारिश हुई थी कल परसों थोड़ी बहुत, अभी तो उमस पड़ी है और धूप है काफी।
0: हाँ, अभी बारिश आपके यहाँ जरूर होगी और उमस भी खत्म होगी और आपको सुनवा देंगे गीत।
1: आपके उधर कैसा है मौसम?
0: हाँ, कुछ कुछ उमस भरी गर्मी से भरा हुआ है और बारिश होने वाली है शायद।
1: थैंक यू मैडम,
0: गीत सुनवा दें।
1: थैंक यू,
0: शुक्रिया कॉल करने के लिए।

0: भाई सभी को इंतज़ार है कि मौसम लवली लवली हो जाए, लेकिन उमस भरी गर्मी है। अभी बादल छाए हुए हैं और बारिश का इंतज़ार है। और अब देखते हैं, अपने श्रोता से बात करते हैं, वो कौन सा गीत सुनना चाहते हैं। हेलो,
1: नमस्कार,
0: नमस्कार जी, स्वागत है कार्यक्रम में
1: धन्यवाद।
0: जी। नाम बताइए।
1: मैं गांव डेर तहसील जिला पाटन गुजरात से आपका नियमित श्रोता धीरज गबारी बात कर रहा हूँ।
0: जी धीरज जी, कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: अखियों के जरूर को फिल्म का गाना सुना है, शीर्षक गाना है हेमलता के हवाले।
0: हाँ, खूबसूरत गीत है। हेमलता जी किस स्वर में?
1: जी
0: जी जरूर सुनवाएंगे। और कुछ कहना चाहेंगे?
1: जी जी जी अभी जो बारिश की ऋतु चल रही है तो हमें खास करके कहीं पानी जल भरा हो तो उसको दूर कर देना चाहिए, और ऐसी जगह पर हम पानी संग्रहित कर सके जहाँ हम जब पानी की दिक्कत हो तभी वो पानी काम में लगे, और बहता पानी में कूड़ा कचरा न डाले, यही हमारा कहना है।
0: बिल्कुल, तीनों बातें आपने बहुत ही महत्वपूर्ण कही, जो हमें ज़रूर फॉलो करनी चाहिए। उम्मीद है सुनने वाले आपकी बातों की तरफ ध्यान देंगे और ज़रूर करेंगे ऐसा। गीत सुनवाएं आपको।
1: जी जी जी
0: धन्यवाद आपका कॉल करने के लिए, और
1: धन्यवाद
0: आपकी पसंद का गीत आपको सुनवाते हैं।
1: धन्यवाद।
0: शुक्रिया।

0: और देखते हैं अब हमारे साथ कौन जुड़ चुके हैं। हेलो,
1: फूलों पे मंडराती होंगी, भंवरों को लुभाती होंगी, याद तो उषा जी हम आपको करते हैं, हिस्सिया भी आपको आती होंगी।
0: बिल्कुल, हमें तो आप सभी की हमेशा याद आती है और बिल्कुल याद रखते हैं अपने श्रोताओं को हमेशा। हम तो कहिए कैसी हैं और अपना परिचय दे दीजिए, हम तो पहचान गए आवाज़।
1: जी मैं हसीना भी मंसूरी बोल रही, पालदाना का इंदौर से।
0: हाँ, आपके साफ सुथरे शहर इंदौर का मौसम कैसा है?
1: अच्छा है मैडम, बारिश भी हो रही है यहाँ पर।
0: चलिए, बड़ी अच्छी बात है। तो बारिश के मौसम में कुछ ध्यान भी रखिए, आनंद भी लीजिए और गीत बता दीजिए।
1: का नाम है दरिया दिल और गाने के बोल है, पर तेरे सावन का बे मेरा मन भीग न जाए, बदन मेरा अपनी छतरी में मुझको छुपा ले रे, पास अपने तू मुझको बुला ले रे। क्या
0: वाह
1: सुना
0: जी
1: दीदी?
0: वाह जी वाह, आपने तो सुनाया भी बहुत अच्छा। और अब सुनवा देते हैं आपको आपकी पसंद का गीत।
1: शुक्रिया मैडम।
0: शुक्रिया कॉल करने के लिए।

0: जब व्यापार के प्रचार की हो बात तो अपनाएं आकाशवाणी का साथ। हर दिल, हर घर और हर जन, हर वर्ग को जोड़ने का है साधन। विश्वसनीय, असरदार और हम सब का हम सफर आकाशवाणी रोहतक है सदा तत्पर। हमारी आवाज आपका प्रचार, हो जाएं समृद्ध होने को तैयार। अपने ब्रांड को विज्ञापन के जरिए जन जन पहुंचाने के लिए आज ही संपर्क करें आकाशवाणी रोहतक।
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
2: आपके अनुरोध पर कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से, और आज कार्यक्रम है आपके फोन कॉल्स पर आधारित।

0: देखते हैं अब कौन से श्रोता हमारे साथ हैं। हेलो
1: हेलो, नमस्कार उषा मलिक जी।
0: नमस्कार जी, बहुत स्वागत है राजेंद्र सैनी जी आपका। कैसे
1: बहुत
0: हैं
1: बहुत
0: आप?
1: शुक्रिया, अच्छे हैं। और कार्यक्रम आप करते हो, कल परसों आपने कार्यक्रम गीत सुनाए थे, बहुत अच्छे गीत सुनाए थे, बहुत अच्छा लगा
0: जी, शुक्रवार की बात कर रहे होंगे आप,
1: हाँ जी हाँ
0: एक
1: जी,
0: रंग कार्यक्रम में।
1: एक रंग कार्यक्रम अच्छा लगा और आपने अच्छी प्रस्तुति की, अच्छे और गीत सुनाए।
0: जी, कोशिश तो यही
1: और
0: रहती है कि सुनने वालों को अच्छा लगे कार्यक्रम।
1: आपका तो हमेशा ही कार्यक्रम अच्छा रहता है, आप पुरानी उद्घोषिका हैं, अच्छा ही पेश करती हैं।
0: जी, आपकी पसंद शायद हमसे मिलती है, इसीलिए कार्यक्रम आपको अच्छा लगता है। जी, शुक्रिया आपका हौसला बढ़ाने के लिए। कौन सा गीत सुनेंगे आज?
1: दोस्ताना फिल्म का है जी, बने चाहे दुश्मन हमारा, ये गीत सुनाना है उषा मलिक जी। और नमस्कार जी।
0: नमस्कार जी, धन्यवाद आपका, कार्यक्रम में आपने भाग लिया।

0: और जल्दी से अगले कॉलर से जुड़ते हैं। हेलो
1: हेलो दीदी,
0: जी, नमस्कार, स्वागत, नाम बताइए अपना।
1: नमस्कार। मैं गंगाधर सावनकर कुंडलवाड़ी नांदेड़ महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ दीदी।
0: जी गंगाधर जी, कैसे हैं?
1: बहुत बढ़िया हूँ। बहुत दिन के बाद आपके रोहतक में मैं शामिल हुआ हूँ।
0: जी शामिल होते रहिए, सुनते रहिए और कोशिश करते रहिए।
1: दीदी हमारे आज भगवान सिंह जी याद किए, इसलिए हम यहाँ रोहतक पर तक पहुँच गए।
0: अच्छा जी,

0: बारिश कैसी है आपके यहाँ?
1: बारिश तो चालू दीदी, रोज छुटपुट छुटपुट चालू है।
0: हाँ,
1: गर्मी गर्मी से छुटकारा मिल जाए।
0: हाँ चलिए, अच्छी बात है, यही जरूरी है कि गर्मी से छुटकारा मिले। और कौन सा गीत सुनवा दें आज आपको?
1: मुझे लोफर फिल्म का मैं तेरे इश्क में मरना जाऊँ ना कहीं, लता मंगेशकर जी की आवाज है
0: जी,
1: गाना सुना है?
0: हाँ सुनवा दें।
1: और कुछ हमारे मित्रों का नाम लेना चाहता हूँ दीदी।
0: हाँ जी ले लीजिए जल्दी जल्दी।
1: हमारे गौतम जी रावड़े, तुकाराम जादव, सुनील झा, दिलीप पहुजा और राजेंद्र गंगवार जी, भगवान सिंह जी, हमारे आजकल एक नई गुड़िया मिली है तनुश्री सातारा से
0: जी,
1: उनको भी ये गाना सुना है दीदी
0: जी। धन्यवाद, सुनिए अपने साथियों के साथ मिलकर सुनिए, धन्यवाद।
1: हाँ जी, हाँ जी, धन्यवाद दीदी
0: जी।

0: हेलो हेलो।
1: गुड आफ्टरनून।
0: अरे वाह, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। आपकी आवाज़ तो बहुत प्यारी है। नाम क्या है आपका?
1: जी, मैं ग्राम गुनोरे, जिला सतारा, महाराष्ट्र से तनुश्री सर्वे बात कर रही हूँ।
0: बहुत खुश है, आपकी आवाज़ से खुशी झलक रही है।
1: जी, आपके कार्यक्रम में कॉल लगे तो मैं, जिधर भी कॉल लगे तो मैं खुशी होती हूँ मैम। जी
0: बिल्कुल, रेडियो जो है वो खुशी का एक कारण है हम सब के लिए, है ना?
1: जी जी वो कोई भी इंसान इस पर जुड़ सकता है, क्योंकि रेडियो कभी हमारी कमियां नहीं निकालता,
0: बिल्कुल, ये सबसे बड़ी और सबसे अच्छी मुद्दे की बात कही, बहुत
1: क्योंकि
0: अच्छी बात
1: दिखाई
0: कही।
1: नहीं देता तब भी हम रेडियो पर जुड़ सकते हैं। हमारा हाथ नहीं हम को होते तब भी हम रेडियो को जुड़ सकते हैं, क्योंकि हम रेडियो हमारा ऐसा माध्यम है कि हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट आ ही जाती है। जी
0: बिल्कुल बिल्कुल, और वो आपकी आवाज़ से हमें महसूस भी हो रही है। तो तनुश्री, कौन
1: जी
0: सा गीत सुनेंगे आप?
1: मैम, इससे पहले मैं कुछ दोस्तों का नाम लेना चाहती
0: हाँ,
1: हूँ।
0: फटाफट से लीजिए ना।
1: जी, पहले तो हमारे यहाँ भी गंगाधर सावंत जी का कॉल आया था, महाराष्ट्र से ही, नांदेड़ से, तो उनको डेडिकेट रहेगा। भगवान सिंह परमार जी, राकेश जी शिमला से, अविनाश जी है, रमेश प्रजापति जी है, प्रेम सिंह छिछोरिया है, अमोल भट्टाचार्य, इन सब के साथ सुनूंगी। और फिल्म का नाम है राजा बाबू, और गाने के बोले आ आ ई ओ ओ ओ, मेरा दिल ना तोड़ो, छोड़ के ना जाओ मेरी जान, पास मेरी आओ मेरी जान।
0: शुक्रिया शुक्रिया तनुश्री, सुनिएगा गीत। धन्यवाद आपका कॉल करने के लिए।

0: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: हेलो,

0: नमस्कार।
1: नमस्कार जी, बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका।
0: धन्यवाद दीदी। ग्राम हीरापुर, जिला सीहोर, मध्य प्रदेश से भगवान सिंह परमार बोल रहा हूँ दीदी।
1: जी भगवान सिंह जी, कैसे हैं?
0: अच्छे हैं दीदी, बढ़िया हैं। मौसम भी बढ़िया है अभी और बरसात भी अच्छी हो रही है हमारे इधर।
1: चलिए अच्छी बात है। कौन सा गीत सुनेंगे
0: दीदी? फिल्म का नाम है चिराग और गाने के बोले छाए बरखा बहार पड़े अंगना फुहार। सतारा से तनुश्री बिटिया सुन रही है और गंगाधर सावनकर जी, इन दोनों को डेलीकेट रहेगा, आपको भी दीदी।
1: जी बिल्कुल, और सुनवाते हैं आपको आपकी पसंद का गीत। और आपने मौसम के अनुरूप गीत चुना है तो निसंदेह अच्छा लगेगा सभी
0: जी,
1: को
0: जी,
1: सुनते
0: बिल्कुल,
1: हुए। जी
0: बारिश का मौसम है हमारे इधर
1: जी। और आपने कार्यक्रम में भाग लिया, कॉल की शुक्रिया आपका।
0: धन्यवाद दीदी।

0: और हमें लालच ये है कि एक और लिसनर से बात कर ली जाए और उनको भी उनकी पसंद का गीत सुनवा दिया जाए, इसलिए गीत थोड़ा थोड़ा आप बैकग्राउंड में सुनते रहिए, देखते हैं कौन साथी हमारे साथ। हेलो
1: हेलो,
0: हाँ जी जल्दी से नाम बताइए और गीत भी।
1: जी मैम जी, आपको हमारा सादर प्रणाम।
0: जी नमस्कार, प्रणाम।
1: जी हम संतोष खड़से बोल रहे हैं, यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से।
0: जी स्वागत है आपका, गाना बताइए।
1: जी 2013 में रिलीज हुई एक फिल्म है, फिल्म का नाम जैकपॉट है और अरिजीत सिंह जी की आवाज में गीत है, कभी जो बादल बरसे मैं देखूं तुझे आंखें तरसे। और ये गीत हमें इसलिए भी पसंद है मैडम जी कि अब हमारे महाराष्ट्र में मानसून का आगमन हो गया है और सुचारू रूप से बरसात भी, बारिश भी चल रही है।
0: चलिए तो बड़ी अच्छी बात है, गर्मी से राहत मिली है सभी को। और आज विशेष बात ये रही कि महाराष्ट्र से बहुत सारे हमारे श्रोताओं के फोन कॉल कार्यक्रम में मिले।
1: जी जी, क्योंकि आपका रोहतक केंद्र हम महाराष्ट्र वाले श्रोता बहुत चाव के साथ सुनते हैं और आपके कार्यक्रम भी बहुत दिलकश होते हैं, ज्ञानप्रद होते हैं।
0: जी शुक्रिया करते हैं आपका और सुनवाते हैं आपको आपकी पसंद का गीत।
1: जी अवश्य मैडम जी, धन्यवाद।
0: धन्यवाद आपका भी। और श्रोता बारिश वाले गीत पसंद कर रहे हैं, जहाँ बारिश नहीं हुई है वहाँ

0: आप सुन रहे थे आपके अनुरोध पर कार्यक्रम, जो आज था आपकी फोन कॉल्स पर आधारित। कार्यक्रम में आपके साथ थी आपकी साथी उषा मलिक। और अब दीजिए अनुमति इस कार्यक्रम को यहीं समेटने की। कार्यक्रम आपने सुना आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्ज पर। अब समाचार होंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: गुड आफ्टरनून, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम नरेश मागो विद द मिड डे न्यूज। The headlines: Government withdraws emergency curbs on natural gas supplies following resumption of LNG shipments through Strait of Hormuz. Union Minister of Rural Development Shivraj Singh Chauhan releases 25,000 crore rupees assistance to states under Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission Grameen Act. Center orders Meta to remove child abuse ads from Instagram, seeks reply in 7 days. Renowned Pandwani singer of Chhattisgarh Tijan Bai passes away. President, Vice President and Prime Minister express grief over her demise. IMD issues red alert for very heavy rainfall over Gujarat, Konkan, Goa, Central Maharashtra and Odisha today. And in ICC Women's T20 World Cup Finals, England to face Australia in London this evening. Government

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। होर्मुज जलडमरू मध्य से तरल प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर शुरू होने के बाद सरकार ने एलएनजी पर लगी आपातकालीन पाबंदियां हटाई। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम के तहत राज्यों को 25,000 करोड़ रुपए की सहायता जारी की। केंद्र सरकार ने मेटा को इंस्टाग्राम से बच्चों के शोषण से जुड़े विज्ञापन हटाने का आदेश देते हुए 7 दिन के भीतर जवाब मांगा। छत्तीसगढ़ की सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई का निधन। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज शाम इंग्लैंड

0: अतिरिक्त सरकार को देश में उत्पादित प्राकृतिक गैस और आयातित एलएनजी के आवंटन में प्राथमिकता देने की अनुमति थी। होर्मुज जलडमरू मध्य से एलएनजी की खेप में रुकावट आने के बाद इस साल मार्च में आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत ये आपातकालीन आदेश जारी किया गया था। इस बीच मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर उन खबरों को भ्रामक और गलत बताया है जिनमें ये दावा किया गया है कि भूटान ने भारत से E20 पेट्रोल आयात करने का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। मंत्रालय ने कहा कि भूटान को E20 पेट्रोल निर्यात करने का कोई प्रस्ताव नहीं दिया गया है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
1: केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 1 जुलाई से विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण जी राम जी अधिनियम 2025 सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। श्री सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की मुख्य सहायता राशि जारी की। श्री चौहान ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ VBG राम जी योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा भी की। उन्होंने कहा कि आज जारी की गई पहली किस्त का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि राज्यों के पास पर्याप्त धनराशि हो ताकि मजदूरी का भुगतान 15 दिनों के भीतर किया जा सके। उन्होंने कहा कि मनरेगा को लागू होने में 3 साल से ज्यादा का समय लगा था, जबकि विकसित भारत जी राम जी को पूरे देश में सिर्फ 1 दिन में लागू कर दिया गया।
2: मनरेगा को पूरे देश में लागू करने में 3 साल लगे थे, लेकिन मुझे आप सब पर गर्व है, 1 साल 2 साल नहीं, पहले दिन ही विकसित भारत जी राम जी योजना एक साथ पूरे देश में लागू हो गई। 100 दिन नहीं, अब 125 दिन रोजगार, 5 साल में 7.5 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि 2,86,000 पंचायतों में ठीक से लग गई, तो गांव संपूर्ण विकसित हो जाएंगे, समृद्ध और विकसित गाँव का निर्माण हो जाएगा।
1: श्री चौहान ने कहा कि VBG राम जी योजना के तहत मजदूरी दरों में औसतन लगभग 10% की वृद्धि की गई है। असम के गुवाहाटी में कल से 2 दिवसीय ब्रिक्स मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक शुरू होगी। गृह मंत्रालय ने कहा कि इस बैठक में ब्रिक्स के सदस्य देशों के मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुख और वरिष्ठ अधिकारी विचार विमर्श करेंगे। इससे मादक पदार्थ नियंत्रण एजेंसियों के समूहों में संस्थागत निरंतरता को सशक्त बनाने और गहन परिचालन सहयोग को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। भारत की अध्यक्षता में कल से केरलम के कोच्चि में 2 दिवसीय ब्रिक्स महिला कार्य समूह की बैठक शुरू होगी। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बताया कि ब्रिक्स देशों के अधिकारी महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास के क्षेत्रों सहित अन्य क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण से संबंधित मुख्य मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोबो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रोबोबो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। विदेश मंत्रालय के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने कहा है कि प्रधानमंत्री के इंडोनेशिया दौरे में कूटनीतिक बैठकों के साथ साथ सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा।
3: प्रधानमंत्री का मुख्य कार्यक्रम जकार्ता में होगा। इसके अलावा वे योग्याकार्ता का भी दौरा करेंगे, जहां वे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल प्रम्बानंद मंदिर परिसर जाएंगे। भारत और इंडोनेशिया इस ऐतिहासिक मंदिर परिसर के संरक्षण और संवर्धन के लिए मिलकर काम करने की योजना बना रहे हैं।
1: आकाशवाणी से विशेष बातचीत में इंडोनेशिया में भारतीय राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की इंडोनेशिया यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच संबंधों में मजबूती और आर्थिक जुड़ाव में वृद्धि स्पष्ट रूप से दिखाई देगी।
4: The significance is immense.
3: भारत और इंडोनेशिया का संबंध दो प्राचीन सभ्यताओं की मजबूत साझेदारी का प्रतीक है। दोनों देशों के रिश्ते सदियों पुराने हैं और आज भी कई क्षेत्रों में लगातार मजबूत हो रहे हैं। मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया यात्रा से दोनों देशों के बीच सहयोग के नए अवसर खुलेंगे। इससे द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे, साथ ही व्यापार, निवेश और आर्थिक साझेदारी को भी नई गति मिलेगी।
4: And greater economic engagement between these two large countries.

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने भारत को एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार बताया है। श्री अल्बनीज ने कहा कि हमारे संबंध व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर आधारित हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम पर शुल्क वाले विज्ञापनों में बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री के प्रसार को लेकर मेटा को कड़ी चेतावनी जारी की है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार सरकार ने इंस्टाग्राम को ऐसी विषय वस्तु को बढ़ावा देने और इसकी पहुंच को सुगम बनाने वाले सभी विज्ञापनों और सामग्री को बंद करने का आदेश दिया है। एक रिपोर्ट।
1: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मेटा से 7 दिनों के भीतर विस्तृत स्पष्टीकरण मांगा है। सरकार इस बात की समीक्षा कर रही है कि क्या प्लेटफॉर्म ने भारत की मध्यस्थ सुरक्षा दिशा निर्देशों का अनुपालन किया है। भारत में डिजिटल कानूनों के अंतर्गत अश्लील सामग्री और बाल यौन शोषण सामग्री का वितरण एक अपराध है। इससे पहले मंत्रालय ने उन रिपोर्टों का संज्ञान लिया था जिनमें कहा गया था कि इंस्टाग्राम पर कुछ आपत्तिजनक सामग्री प्रदर्शित की जा रही है जो बाल यौन शोषण को बढ़ावा देती है और अधिकारियों को मेटा से जवाब मांगने के निर्देश जारी किए थे। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह कल से जिनेवा में एआई गवर्नेंस पर संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक संवाद में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। 2 दिवसीय वैश्विक एआई संवाद में एआई पर स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक पैनल की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी जो एआई की क्षमताओं, उभरते अवसरों और जोखिमों का पहला स्वतंत्र वैज्ञानिक मूल्यांकन प्रदान करती है। भारत स्विट्जरलैंड के जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के 9वें सत्र की अध्यक्षता करेगा। ये सत्र संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास संगठन द्वारा 6 से 8 जुलाई तक आयोजित किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध पंडवानी गायिका और पद्म विभूषण से सम्मानित तीजन बाई का निधन हो गया है। वे लंबे समय से बीमार थीं। रायपुर के एम्स में उनका इलाज चल रहा था। आज सुबह लगभग 3:15 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। डॉक्टर तीजन बाई का अंतिम संस्कार आज शाम उनके पैतृक गांव दुर्ग जिले के गनियारी में राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा।
2: तीजन बाई का जन्म 24 अप्रैल 1956 को छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के गनियारी गांव में एक साधारण परिवार में हुआ था। बचपन से ही उन्हें महाभारत की कथाएं सुनने और गाने का शौक था। सामाजिक विरोध और आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने अपने जुनून को नहीं छोड़ा। तीजन बाई ने अपनी सशक्त आवाज, प्रभावशाली अभिनय और अनोखी प्रस्तुति शैली से पंडवानी को देश ही नहीं बल्कि विदेशों तक नई पहचान दिलाई। महाभारत की कथाओं को मंच पर जीवंत करने की उनकी कला ने उन्हें भारतीय लोक संस्कृति की सबसे प्रतिष्ठित कलाकारों में शामिल किया।
3: दोनों जने मिलकर सुनो कि मैं कुरुक्षेत्र मैदान में मैं भूल के शस्त्र नहीं चलाऊं।
4: अच्छा, जे जान पड़े तो ले गो, नहीं तो मुला छोड़ दे भैया, सेना ले ले चला सावन में।
2: विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई के निधन पर दुख व्यक्त किया है। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रामेन डेका और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने डॉ तीजन बाई के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच कल बातचीत हुई। रूस के राष्ट्रपति के सहयोगी यूरी उशाकोव ने क्रेमलिन में बताया कि श्री पुतिन ने राष्ट्रपति ट्रंप को अमेरिका

0: के स्वतंत्रता दिवस की 250वीं वर्षगांठ पर बधाई दी। बातचीत के दौरान राष्ट्रपति पुतिन ने श्री ट्रंप को यूक्रेन युद्ध की स्थिति के बारे में जानकारी दी। अमरीका ने कल राष्ट्रव्यापी समारोह के साथ अपनी स्वाधीनता की 250वीं वर्षगांठ मनाई। मौसम संबंधी बाधा के बाद वॉशिंगटन में आयोजित मुख्य कार्यक्रम नेशनल मॉल में शुरू हुआ। राष्ट्रपति ट्रंप ने राष्ट्र के इतिहास में इस वर्षगांठ को एक ऐतिहासिक क्षण बताया। मौसम विभाग ने आज गुजरात, कच्छ, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: मौसम विभाग ने अगले चार दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर, गुजरात, हरियाणा और पंजाब के बाकी हिस्सों और राजस्थान के कुछ और इलाकों में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक और उत्तराखंड में तेज से बहुत तेज वर्षा का अनुमान जताया है। विभाग ने कहा है कि अगले 2-3 दिनों में दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब और चंडीगढ़ में छिटपुट बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश, झारखंड, केरलम, माहे, मराठवाड़, देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों, उत्तरी आंतरिक कर्नाटका और तेलंगाना में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग ने दिल्ली में आज बादल छाए रहने और मध्यम वर्षा का अनुमान जताया है। नितिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: महाराष्ट्र में तेज बारिश के कारण कई जगहों पर जल भराव हो गया है। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज शाम लॉर्ड्स में इंग्लैंड का मुकाबला होगा ऑस्ट्रेलिया से। दोनों टीमें अपराजित रहते हुए फाइनल में पहुंची हैं। ऑस्ट्रेलिया ने सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज को हराया और इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। होर्मुज जलडमरू मध्य से तरल प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर शुरू होने के बाद सरकार ने एलएनजी पर लगी आपातकालीन पाबंदियां हटाई। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम के तहत राज्यों को 25,000 करोड़ रुपए की सहायता जारी की। केंद्र सरकार ने मेटा को इंस्टाग्राम से बच्चों के शोषण से जुड़े विज्ञापन हटाने का आदेश देते हुए 7 दिन के भीतर जवाब मांगा। छत्तीसगढ़ की सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई का निधन। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। और आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज शाम इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का होगा मुकाबला। और इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़ पर। 2:30:10 हुए हैं और अब आप सुनेंगे खेतीबाड़ी संबंधी हमारा दोपहर कालीन कार्यक्रम खेत खलिहान।

कार्यक्रम सुननी है सारे मन भाइयों ने दलजीत भाई की राम राम। किशन भाइयों, मौसम का जिक्र करें तो चौपाल के बारे की बात करें तो कोई खासी बारिश नहीं है, लेकिन रोहतक के आसपास की जब बात करें तो आज भी 12:30 बजे का जिक्र करें तो आसपास के क्षेत्र में कुछ अच्छी तेज बारिश हुई है। देखो, कई जगह तो और भी खबर आई हैं, बातचीत जिन भाइयों तो हो पाई हैं, कुछ क्षेत्र में बारिश हल्की फुल्की हुई है, लेकिन ये इस तरह की जो बारिश है ना, ये शुरुआती दौर की बारिश है। जैसे मानसून आती है तो उसमें कह के कुछ क्षेत्र रह जा है, उसमें नहीं हो पा रही है, कितने ज़्यादा हो जाए कितने कम हो जाए, उतार चढ़ाव सा थोड़ा सा रहा करे। और बाकी आप देखने लग रहे हो कि 2 दिन तक कुछ गर्मी भी बढ़ने लग रही है, गर्मी बढ़कर आज भी सुबह का जिक्र करें तो गर्मी बहुत तेज थी, हवा भी नहीं चलती थी, जब हवा नहीं चलती गर्मी बने है तो इस तरह का मौसम बनकर वाष्पीकरण बनकर जब फिर बारिश हुआ है। चलो अब तो दिन आ गए हैं, चौमासे के दिन आ गए, अब तो बारिश हो जाया करेगी, इसी बात नहीं है। और उम्मीद इसी रखा करें कि भाई प्रभु तो जितनी काम ने बारिश की जरूरत है उतनी बारिश मौके पर दे दे, वो हमारी फसलों खातर है, मौसम बदलाव खातर है, कितने और हमने पानी की जरूरत है, तो वो सारी पूर्ति

0: पेश है किसानों के लिए दुनिया का पहला तरल नैनो यूरिया इफको नैनो यूरिया। अब खेती की लागत कम, आधा लीटर बोतल में एक बोरी यूरिया का दम।
1: किस्सा पद्मावत। रागनी उस मौके की जब रणबीर पद्मावत के महल को देख लेता है और उस महल का वर्णन करता है किस तरीके से।

भजन रागनी सुने गायक कलाकार थे प्रधान सिंह संदलिया और उनके साथी। और जिक्र कराया था भाई रे कलर भूमि में सुधार किस तरीके से कर सके हैं। देखो किसान भाइयों, पहला काम खेत ने समतल कर लें और उसके बाद उसमें पानी भर दें। पानी बिल्कुल पूरे चारों कोने में चला जा, कितने ज़्यादा भी इकट्ठा ना होए और एक सा पानी खेत में हो जाए। एक तो यो करना हमने। दूसरा जिप्सम का प्रयोग कर सका। हाँ, पहले तो मिट्टी की जांच करवा लें, उसके हिसाब से फिर उसमें कितनी जिप्सम डालनी है वो बेरा पड़ जाएगा और के कुछ उसमें और आम डाल सका वो सारी जानकारी हो जाएगी। यो आम कर सका। उसके बाद फिर 15-20 सेंटीमीटर तक पानी भर के कुछ दिन खातर छोड़ दें ताकि जो घुलनशील जो नमक है वो नीचे की सतह की तरफ चला जाए। उसने खाली ना छोड़ दें, खाली छोड़ देंगे तो फिर वो ऊपर उसमें नमक आएगा। उसमें पानी भर दें, पानी नीचे अपने साथ नमक ने लेकर चला जाएगा और सुधार जमीन में होता आ जाएगा। हरी खाद और फिर कुछ इसी फसल हैं जिनका हम बुआरा कर सका। हाँ, हरी खाद बनाएं हर बार। हरी खाद बनाओगे तो उसमें भी फर्क रहेगा और धान जिस जो फसल है जिसमें ज़्यादा पानी देने पड़े हैं ना तो वो भी आम बोस कहाँ। धान बोए बार बार पानी देंगे तो वो पानी नीचे जाएगा तो उसके साथ नमक नीचे चला जाएगा, नमक नीचे चला जाएगा तो सुधार होता चला जाएगा। और एक और भैया के बात ध्यान में दवा दें, इस तरह की जो ज़मीन है ना न्यू मान करना चाहना कि ये कुछ ना धन देवेंगी वो उपज देंगी। गेहूँ की बात करा तो कई इसी किस्म बना रखी हैं जो इसी भूमि में बोन की हैं।

0: जरीफा फार्म पर उपलब्ध हो जाए हैं, टाइम पर हम बता भी दें हाँ, उन किस्मों के नाम भी बता दें हाँ। ये करनाल तक कछुआ रोड पर है, जो किसान भाई हैं वो कदे गए हो या फिर जा सके हैं तो वहाँ तो हैं, वो बीज भी ले सके हैं। बाकी विश्वविद्यालय तक जाकर हम संपर्क करेंगे तो सारा कुछ हमने जानकारी मिल जाएगी कि कौन सी किस्म है और किस तरीके से वो बोई जाए, कौन सा उनका टाइम है, इस तरह की ज़मीन में वो बोन की है तो पैदावार वो पूरी दे है, इसी बात नहीं है। तो पहले तो उनमें सुधार करना है। देखो पहले तो इस तरह की ज़मीन घनी होया करती, ई भी इतनी नहीं है। पहले क्या था कि साधन नहीं थे मारदूर है, ई वो हमारे बड़े बड़े बैल रखे थे, बैल में कितनी खेती कर सके थे, जितनी वो 5-4 किले की 2-4 किले की कर पाओ थे बेचारे वो कर लेते। लेकिन आज मशीनी युग है, आज तो कोई भी किसी तरह का कोई अड़ंगा धड़ंगा खेत में खड़ा है, सारा एक बार में साफ से। उन्हें तो बहुत मेहनत करनी पड़िया करती, वो तो टाइम था, चलो वो अपना टाइम बढ़िया साफ सुथरा गुजारा करके, हम भी किस तरीके से काम करे हैं वो हमने देखना है। ये मशीनी युग है, इसमें भी जब हम कितने मार खाओगे तो मारे कितने न कितने भूल रहे होगी, चूक रहे होगी, मारे कितने कमी रहेगी काम में, वो हमने नहीं करनी है। जो थोड़ी हो रही है ये न्यू भी नहीं है कि मार दे रहे बोले जमीन पड़ी है वह चल कुछ पड़ी रहेगी, किसमें नमकीन जमीन पड़ी है, लवणी अक्सारी भूमि पड़ी है, पड़ी रहेगी कोई दिक्कत नहीं है और अपना बाकी किम बुआरा कर लेंगे, ऐसी बात नहीं है। ईब तो जितनी भी जमीन बाकी है वो सारी सुधार में लेनी है हमने, और लगभग सुधार में वही लिया भी चुके उसने, ये जिक्र हम पहले भी कर रहे थे। तो इसमें खेत के चारों तरफ है अच्छे मोटे डोले मार दे, डोल अच्छी बड़ी बना कर और फिर उसमें पानी भर दें। जब खेत एक सा हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है, मान ले खेत एक सा नहीं होता तो फिर उसके कई भाग बना दें खेत के, उसमें पानी भरें। इस बात का ध्यान जरूर करें कि न्यू नहीं रखना है कि भाई किते तो खाली रह गया, किते गोड गोड जल खड़ा कर दिया, ना यो नहीं करना है। वो खेत एक सा भी करना जरूरी है, उसने एक सा कर ले फिर पानी थोड़ा सा ज़्यादा भर दे उसमें। ज़्यादा पानी भरेंगे जब वो नीचे जाएगा तो वो अपने साथ नमक की मात्रा ने लेकर जाएगा, और फिर उसमें कोई ढेंचा बो दिया, कोई उसमें मूंग बो दी, कोई आग सनी बो दी, कोई ईस डाल की कोई फसल बोंदे रहे। जब उसमें घास फूस को जामना शुरू हो जाएगा, कोई इस तरह का चारा की फसल है वो जामनी शुरू हो जाएगी, तो उन्हें समझ लो वो सुधार में जमीन आएगी। वो खाली नहीं छोड़नी है, इस बात का भी ध्यान करना है। उसमें कोई ना कोई फसल बोंदे रहे, फसल बोएंगे तो उसने बाहेंगे, बाहेंगे तो उसमें फिर पानी भी आओगा, और पानी आओगे तो नमक वो नीचे चला जाएगा। ऐसी बात नहीं है, एक बार अगर उसमें मेहनत शुरू होगी तो फिर वो काम चल जाएगा। अगर खेत ज़्यादा ऊंचा है, इस बात का भी ध्यान करें, मान लो वो खेत ज़्यादा ऊंचा है तो उसमें तो थोड़ी सी मिट्टी ठुवा दें पहले, पहले ठुवा दें बाद में नहीं। वो जब ये अपनी कोशिश करनी शुरू कर दे, कदे जमीन का सुधार भी करें ऊपरली मिट्टी में और फिर वो बाद में ठुवानी पड़े, वो नहीं। पहले जितनी मिट्टी उठानी उतनी उठा लें, फिर बाद में जिप्सम गिरें, जिप्सम गिर के पानी दें, पानी के साथ नमक नीचे चला जाएगा और ज़मीन में सुधार आंदा शुरू हो जाएगा। और बाकी जिक्र करा था कि जिन भाइयों द्वारा इसी ज़मीन ही भी बिगे हूँ, जिसी फसल बोनी है आगे जाकर, तो उनकी खातर न्यारे जो किस्म हुए हैं और इस मौके पर वो धान ला सके हैं, तो कहने का मतलब यह है कि इस तरह की भी ज़मीन है तो फिर उसमें कम से कम थोड़ा बहुत धन जरूर लिया जा सके है। चलो जिक्र और भी करेंगे, टाइम रह गया था, एक रागनी का और जिक्र है तो गायक कलाकार एक बार प्रधान सिंह सांदलिया और उनके साथी।
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
2: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ, वाह दिल बन गया।
3: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है,
4: RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: जब पद्मावत उन सखियों की नहीं मानती तो पद्मावत की सखी उस पद्मावत को समझाती है और एक बात के द्वारा क्या कहती है।

प्रधान सिंह संध लिया और उनके साथियों की गायी और बाई ने रागनी सुन ली और इस रागनी के साथ है जो कार्यक्रम है अपना खेत खलियान इसका समय तो समाप्त होया। सांझ ने फिर कृषि जगत कार्यक्रम में बैठांगे, फिर करेंगे बातचीत। जब तक दे इजाजत सारे बण भाइया ने राम राम।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेत खलिहान। आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है, मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक समय हुआ है दिन के 3:08। अब हमारी आज की दूसरी प्रसारण सभा यहीं संपन्न होती है। तीसरी सभा में शाम 5:30 पर आपकी सेवा में हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए।

मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ही रोहतक केंद्र है। शाम के 5:30:13 हुए हैं। हमारी तीसरी प्रसारण सभा अब आरंभ होती है। सभा की शुरुआत में प्रस्तुत है कार्यक्रम युवा संसार।

सभी साथियों का कार्यक्रम में स्वागत है। आप सभी को रिशिता का नमस्कार। साथियों, यह कार्यक्रम है युवा संसार। युवा किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति और रीढ़ की हड्डी होते हैं। आज का युवा कल का भारत, यह वाक्य हमने बहुत सुना है। यह वाक्य इस सत्य को दर्शाता है कि देश का भविष्य पूरी तरह से युवा पीढ़ी की क्षमता, विचारधारा और परिश्रम पर निर्भर करता है। भारत विश्व का सबसे युवा देश है, जहां जनसंख्या का बड़ा भाग 35 वर्ष से कम आयु का है। यह डेमोग्राफिक डिविडेंड भारत को विकास की नई ऊंचाइयों तक ले जाने की अपार संभावनाएं प्रदान करता है। आज का युवा शिक्षित, तकनीक प्रेमी और नवाचार की भावना से संपूर्ण है। विज्ञान, तकनीकी, खेल, कला और व्यापार जैसे क्षेत्रों में युवा पीढ़ी रोज़ नए रिकॉर्ड स्थापित कर रही है। स्टार्टअप इंडिया जैसी योजनाओं के माध्यम से युवा अपने विचारों को व्यवसाय में बदल रहे हैं और रोज़गार रचना में भी योगदान दे रहे हैं। डिजिटल परिवर्तन के इस युग में युवाओं ने सोशल मीडिया और तकनीक का उपयोग सामाजिक बदलाव लाने के लिए भी प्रभावी ढंग से किया है, परंतु इसके साथ ही बेरोज़गारी, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की कमी और नैतिक मूल्यों में कमी जैसी चुनौतियां भी युवाओं के समक्ष खड़ी हैं। यदि इन चुनौतियों का समाधान समय रहते किया जाए और युवाओं को सही दिशा, अवसर और मार्गदर्शन दिया जाए, तो निसंदेह ही आने वाला भारत गौरवशाली और सशक्त होगा। और इसी युवा के लिए हम हर रविवार को कार्यक्रम लाते हैं युवा पसंद। तो कार्यक्रम में पहले गीत की फरमाइश आई है चरखी दादरी से जगनेश सांगवान, फ्रांसी से राजकुमार डूडी, प्रमोद पुष्पेंद्र, भिवानी से जितेंद्र खेड़ा, बगबुड़बा पथरिया से नरेन और कुसुम नेताम, खोखरा वाली गांव से विनोद, विशाल बरासा, विकास रोशनी, शगुन बरासा, रायगढ़ से पुरुषोत्तम सिंह, गुशा सिंह, ऋषभ सिंह, लीलू सिंह, ऋतु सिंह, पत्रोड़ा से मंगल जनागल, रोशनी जनागल, अंकुर, इंदु, सुनील, पिप्रिया, कबीरधाम से आप है कमलकांत गुप्ता, दीपा और रिमझिम। साथियों, आप सभी ने फरमाइश की है फिल्म बरेली की बर्फी से ये गीत की, जिसको आवाज़, संगीत और बोल दिए हैं आरको ने। तो आइए साथियों, सुनते हैं हमारी युवा की पसंद का ये गीत।

अभी हमने सुना ये गीत फिल्म बरेली की बर्फी से, आवाज़ संगीत और बोल थे आरको के। साथियों अभी हम बात कर रहे थे युवाओं के भविष्य के बारे में, और उनके भविष्य में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आज के युग में जिसे हम कृत्रिम बुद्धिमत्ता भी कहते हैं। साथियों ये सबसे तेज़ी से बदलती और प्रभावशाली तकनीक है जो युवाओं के भविष्य को गहराई से प्रभावित कर रही है। शिक्षा से लेकर रोजगार तक हर क्षेत्र में एआई ने नए अवसर और नई चुनौतियां दोनों प्रस्तुत की हैं। जहां एक ओर यह तकनीक कई पारंपरिक नौकरियों को ऑटोमेटिक कर रही है, वहीं दूसरी ओर डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग और एआई एथिक्स जैसे नए क्षेत्रों में असंख्य रोजगार के अवसर भी उत्पन्न कर रही है। प्रत्येक उद्योग एक एआई उद्योग बन रहा है, हर उद्योग बदल रहा है, करियर विकसित हो रहा है। एआई कंप्यूटर को टॉय स्टोरी, वॉल ई, R2D2 के कैरेक्टर्स की तरह स्मार्ट बनाता है। यह खिलौनों को सीखने और आपके साथ खेलने में सक्षम बनाता है, मानव बुद्धि की नकल करता है। एआई बहुत सारे डेटा से सीखता है, जैसे कि हम किताबों और अनुभवों से कैसे सीखते हैं। यह इस जानकारी का उपयोग समस्याओं को हल करने और सवालों के जवाब देने के लिए करता है। जितना अधिक यह सीखता है और अभ्यास करता है, उतना ही बेहतर यह कार्यों में मिलता है, जैसे

0: की एक खेल या एक इंस्ट्रूमेंट का अभ्यास करना। एआई की यात्रा 1950 के दशक में शुरू हुई। एआई कारों को खुद ड्राइव करने में मदद करता है, जो भविष्य में सड़कों को सुरक्षित बना सकता है। साथियों, ऐसे ही हम आगे आपको युवाओं के भविष्य के बारे में बताते रहेंगे, लेकिन उससे पहले सुन लेते हैं गीत फिल्म 20 साल बाद से, जिसे संगीत और आवाज़ दी है हेमंत कुमार ने, बोल लिखे हैं शकील बदुयानी ने। इस गीत की फरमाइश करने वाले अकोला से आप हैं सुशीला मंदूरकर, सदानंद गौरव, निशा रानी नागरोकर। नांदुरा से संतोष वसाने, उषा ऋषिकेश, अनिकेत वसाने। लाहौर से कमलनाथ पटेल, राकेश समीर, राजकुमारी पटेल। वाकौड़ी से उत्तम झमखाड़े, स्वराज झमखाड़े, स्वरीत पोपलवाड़, संघर्षा और संविधान होंगड़े। हिंगोली से शाहजी बोड़के और नंदा। हदगांव वाष्टी से सुधाकर कामले, संदीप कामले। तालुका पूर्णा देगांव से आप हैं सदाशिव, और मोहला से आप हैं राजकुमार, गीता, अमन, सानिया, सुभाष, उषा, राहुल, आरती और रोहित धोचक। आइए साथियों, सुनते हैं आप सभी की फरमाइश का ये गीत।
1: बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारे पसंद लौट

अभी हमने सुना ये गीत फिल्म 20 साल बाद से। संगीत और आवाज़ें थी हेमंत कुमार की, बोल लिखे थे शकील बदुयानी ने। बढ़ते हैं अगले गीत की तरफ साथियों, जिसकी फरमाइश की है निज़ामाबाद से शेख अल्लाह, सानिया शेख, रहीम मुन्ना, दानिश और आसिफ शेख ने। सनावत से दिलीप मालाकार, योगेश, मुस्कान, बाबूलाल चौधरी और निर्मल बॉई ने। पांडू पिंडारा जींद से आप हैं, बादल सिंह गिल, कमलेश, टीनू, नीरू, हर्ष, प्रीति, सिया, आर्या, मोनू, अंकित, वानिका। संगरूर से परमिंदर रंधावा, सरबजीत, हरजोत, कुलदीप रंधावा। जसपुर से आप हैं रियासत हुसैन सिद्दीकी, नगमा बेगम, रियाज और रिफाकत। भोपालगढ़ से आप हैं धीमेंद्र छिपा, कपिल छिपा, पूजा परिहार। औरंगाबाद से सुषमा बोरगांवकर, प्रकाश बोरगांवकर, प्रांजलि, सोहम, सदानंद, विराज और अंशुमन। खंडवा से आप हैं दुर्गा प्रसाद सैनी,

अभिनेता और गौरव सैनी। ये गीत है फिल्म कबीर सिंह से, आवाज़ें हैं तुलसी कुमार और अखिल सचदेवा की, संगीत भी है अखिल सचदेवा का और बोल लिखे हैं कुमार ने। आइए साथियों सुनते हैं आप सभी की पसंद का ये गीत।

साथियों, ये था गीत फिल्म कबीर सिंह से। आवाज़ें थी तुलसी कुमार और अखिल सचदेवा की। संगीत भी था अखिल सचदेवा का और वो लिखे थे कुमार ने। साथियों, ऐसे ही आपको एक गीत फिर सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आप सभी ने एक वाक्य सुना होगा, कर भला तो हो भला। यह एक प्रसिद्ध हिंदी कहावत है जिसका अर्थ है कि यदि हम दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं तो एक दिन हमारे साथ भी अच्छा ही होता है। यह कहावत कर के सिद्धांत पर आधारित है जिसके अनुसार जैसा हम बोते हैं वैसा ही हम काटते हैं। जीवन में यदि हम ईमानदारी, दया और परोपकार का मार्ग

अपनाते हैं दोस्तों, तो देर सवेर हमें इसका सकारात्मक फल अवश्य मिलता है। यह कहावत हमें सिखाती है कि नेकी करने में कभी संकोच नहीं करना चाहिए, भले ही उसका परिणाम तुरंत दिखाई ना दे। दूसरों की सहायता करना, सच बोलना और सही मार्ग पर चलना, ये सभी गुण अंततः व्यक्ति को सम्मान और सुख प्रदान करते हैं। इतिहास और हमारे आसपास ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं जहाँ अच्छे कर्मों का फल अच्छा ही निकला है। इसलिए हमें सदैव यह याद रखना चाहिए कि नेकी का रास्ता ही सच्चे सुख और शांति की ओर ले जाता है। कर भला तो हो भला केवल एक कहावत नहीं, बल्कि जीवन जीने के एक सिद्धांत है, जिसे अपनाकर हम एक बेहतर समाज का निर्माण कर सकते हैं। कारण बने दोस्तों कि कोई अभी भी माने कि दुनिया में अच्छाई है। दयालुता आपको सुंदर बनाती है, अच्छे दिल लंबे समय तक जीतते हैं, कोमलता एक स्थायी प्रभाव छोड़ देती है। दयालुता की कीमत कुछ भी नहीं है दोस्तों, लेकिन इसका मतलब सब कुछ है, और हमारे लिए आज के इस युग में नरम होना ही सुरक्षित है। और बात करेंगे दोस्तों, सुनते हैं, लेकिन उससे पहले एक गीत, फिल्म जोधा अकबर से। संगीत दिया है AR रहमान ने, आवाज़ है जावेद अली की और बोल लिखे हैं जावेद अख्तर ने।

साथियों, भी हमने सुना ये गीत फिल्म जोधा अकबर से। संगीत दिया था एआर रहमान ने, आवाज़ थी जावेद अली की और बोल लिखे थे जावेद अख्तर ने। और इस गीत की फरमाइश आई थी मोताला से बबलू, शेख शगीर, वज़ीर, सोहेल, सैयद तैमूर, शामिर खान, सैयद अजलान, कोपरगांव से सुदेश, वर्षा, निवासा से अमोद लोखंडे, शारदा लोखंडे, कनाडा से मिंटू, पिंकी, लवली, आरती अरोड़ा, आकली दीवान से रामलाल चंद्रवंशी, कृष्णा चंद्रवंशी, मुकेश, सरिता शर्मा, नरवाना से मेघराज शर्मा, गौरव, सौरभ, विजय, अजय, जितेंद्र, जोगेंद्र शर्मा, चौधरीवास से मांगेराम, सुनील, शुभम, यश, विनोद, राजकोट से नूर मोहम्मद लखानी, जुबैदा और जिशान लखानी। साथियों, हम बात कर रहे थे कि दुनिया को अधिक से अधिक कोमलता की आवश्यकता है और यह आपके साथ ही शुरू होती है। साथियों, दयालुता एक कमज़ोरी नहीं है, यह एक महाशक्ति यानी सुपर पावर है। एक कोमल शब्द, एक मुस्कान, प्यार का एक छोटा सा कार्य आपके विचार से आगे बढ़ सकता है। किसी को एक अनएक्सपेक्टेड तारीफ दे दें, एक दोस्त को चेक इन टेक्स्ट भेज दें। जो कहावत है, कर भला तो हो भला, इस कहावत का एक और पहलू यह है कि यह ना केवल व्यक्तिगत जीवन में बल्कि सामाजिक और पारिवारिक संबंधों में भी लागू होती है। जब हम अपने परिवार, मित्रों और समाज के प्रति अपना कर्तव्य निभाते हैं तो बदले में हमें प्रेम, विश्वास और सहयोग प्राप्त होता है। यह एक चक्र की तरह कार्य करता है। जितना हम दूसरों को देते हैं उतना ही हमें वापस मिलता है। अंग्रेजी में हम सभी ने सुना है गिव एंड टेक। बस उसी तरह, उसी सिद्धांत पर ये कहावत भी लागू होती है। महात्मा गांधी, मदर टेरेसा जैसे महान व्यक्तित्वों ने अपना पूरा जीवन दूसरों की भलाई के लिए समर्पित किया और आज भी विश्व भर में उन्हें सम्मान और श्रद्धा की दृष्टि से ही देखा जाता है। यह इस बात का प्रमाण है कि निस्वार्थ भाव से किया गया अच्छा कार्य कभी व्यर्थ नहीं जाता। आधुनिक युग में जहाँ स्वार्थ और प्रतिस्पर्धा बढ़ती जा रही है, वहाँ यह कहावत और भी प्रासंगिक हो जाती है। यदि प्रत्येक व्यक्ति यह संकल्प ले कि वह अपने दैनिक जीवन में छोटे छोटे अच्छे कार्य करेगा, जैसे किसी ज़रूरतमंद की मदद करना, सच बोलना या पर्यावरण की रक्षा करना, तो इससे समाज में एक सकारात्मक परिवर्तन अवश्य ही आएगा। कार्यक्रम को समाप्त करते हुए एक बात दोबारा कहेंगे आपसे दोस्तों कि यह कहावत हमें आत्मनिरीक्षण करने और अपने कर्मों के प्रति जागरूक रहने की प्रेरणा देती है, ताकि हम एक बेहतर इंसान और जिम्मेदार नागरिक बन सकें। कर भला तो हो भला। इसी के साथ दोस्तों, कार्यक्रम को समाप्त करने का वक्त हो चला है। उम्मीद है मिलेंगे आपसे ऐसे ही फिर किसी दिन। तब तक के लिए नमस्कार।

अभी आपने सुना कार्यक्रम युवा संसार, आकाशवाणी का ही रोहतक केंद्र है। शाम के 6 बजने हुए हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी समाचार। समाचारें लेके जाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण 2025 के 1 जुलाई से सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। केंद्रीय मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की। उन्होंने कहा कि मनरेगा को लागू होने में 3 साल से अधिक का समय लगा था, जबकि विकसित भारत जी राम जी को पूरे देश में सिर्फ 1 दिन में लागू कर दिया गया। सरकार ने सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम पर शुल्क वाले विज्ञापनों में बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री के प्रसार को लेकर मेटा को कड़ी चेतावनी जारी की है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार सरकार ने इंस्टाग्राम को ऐसी विषय वस्तु को बढ़ावा देने और इसकी पहुंच को सुगम बनाने वाले सभी विज्ञापनों और सामग्री को बंद करने का आदेश दिया है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मेटा से 7 दिनों के भीतर विस्तृत स्पष्टीकरण मांगा है। सरकार ने तरल प्राकृतिक गैस एलएनजी की आपूर्ति से आपातकालीन पाबंदियां हटा ली हैं। यह निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष में युद्ध विराम के बाद होर्मुज जलडमरू मध्य से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर से शुरू होने के बाद किया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि प्राकृतिक गैस आपूर्ति नियमन आदेश 2026 में संशोधन किया गया है। इस बीच पेट्रोलियम निर्यातक देशों ने संगठन ओपेक प्लस ने वैश्विक तेल बाजार की स्थितियों की समीक्षा के लिए आयोजित वर्चुअल बैठक के बाद इस वर्ष अगस्त से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। आज हुई बैठक के बाद जारी बयान में तेल उत्पादक समूह ने कहा कि यह निर्णय बाजार स्थिरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी ने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की इंडोनेशिया यात्रा दोनों देशों के बीच मौजूदा संबंधों को मजबूती प्रदान करेगी और सहयोग के नए क्षेत्रों के द्वार खोलेगी। असम के गुवाहाटी में कल से 2 दिवसीय ब्रिक्स मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक शुरू होगी। गृह मंत्रालय ने कहा कि बैठक में होने वाले विचार विमर्श से मादक पदार्थ नियंत्रण एजेंसियों के समूहों में संस्थागत निरंतरता को सशक्त बनाने तथा गहन परिचालन सहयोग को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने विनाशकारी भूकंप के बाद सहायता के लिए भारत का आभार व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में सुश्री रोड्रिगेज ने कहा कि ब्रिटेन, कतर, फ्रांस, भारत, बारबाडोस, ब्राजील और अर्जेंटीना के बचावकर्मियों को उनके अमूल्य योगदान और संकट की इस घड़ी में एकजुटता प्रयासों के प्रति वेनेजुएला सम्मान व्यक्त करता है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर कुछ व्यक्तियों द्वारा व्यापार, प्रवासन और अन्य नीतिगत मामलों पर मंत्रालय को सलाह देने संबंधी दावों का खंडन किया है। विदेश मंत्रालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि ये सोशल मीडिया हैंडल मंत्रालय के साथ काम करने के तरीकों पर सशुल्क सलाह के साथ साथ सत्र भी आयोजित कर रहे हैं। इकाई ने स्पष्ट किया है कि इन व्यक्तियों का विदेश मंत्रालय से कोई संबंध नहीं है। मंत्रालय ने लोगों से इस तरह के फर्जी दावों से सावधान रहने को कहा है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज भारतीय मजदूर संघ और संबद्ध कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। डॉ. जितेंद्र सिंह ने प्रतिनिधिमंडल से सरकारी कर्मचारियों, पेंशनरों और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा

0: की। महाराष्ट्र में तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित है। अधिकारियों ने लोगों को मॉनसून के दौरान नदियों, जलप्रपातों और अन्य जल निकायों से दूर रहने की सलाह दी है। मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़ और रत्नागिरी सहित कोंकण जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। सतारा, पुणे और कोल्हापुर जिलों के घाट क्षेत्रों में भी तेज वर्षा का अनुमान है। और खेलों में फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में आज ब्राजील का सामना नॉर्वे से होगा। यह मैच भारतीय समयानुसार रात 1:30 बजे से न्यू जर्सी में खेला जाएगा। कल सुबह 5:30 बजे इंग्लैंड का मुकाबला मैक्सिको से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। प्रस्तुत है हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा।

पहले सुनिए आज के शेष कार्यक्रमों का विवरण। लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड स्टेडियम लंदन में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के मध्य खेले जाने वाले आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट मैच के फाइनल मुकाबले का आंखों देखा हाल आप सुनेंगे शाम 7:30 पर। यह प्रसारण रिले किया जाएगा आकाशवाणी के दिल्ली

शाम 6:20 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम कृषि जगत। शाम 7 बजे ग्रामीण संसार कार्यक्रम में आप सुनेंगे नाटक भोर। फिल्म संगीत आप सुनेंगे रात्रि 10:45 पर। ये थे आज के शेष कार्यक्रम।

अब सुनिए कल के कार्यक्रमों का विवरण। रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम पब्लिक स्पीक। ये कार्यक्रम हम रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। शाम 6:30 पर आप सुनेंगे साप्ताहिक समीक्षा, जिसे रिले किया जाएगा आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से।

सुबह सवेरे कार्यक्रम आप सुनेंगे प्रातः 7:35 पर। युवा साथी अपना कार्यक्रम युवा संसार सुनेंगे शाम 6:30 पर। किसान भाई कार्यक्रम कृषि जगत सुनेंगे शाम 6:20 पर। ग्रामीण संसार कार्यक्रम रहेगा शाम 7:00। दोपहर 2:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम खेत खलिहान। NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे दोपहर 12:30 पर। लोक संगीत कार्यक्रम सुनिएगा प्रातः 8:30 पर। शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में प्रातः 7:15 पर और रात्रि 10:00 कल की कलाकार होंगी दीपा शर्मा। सुगम संगीत कार्यक्रम आप सुनेंगे रात 8:25 पर। फिल्म संगीत आप सुन सकते हैं प्रातः 9:00, दोपहर 1:10 पर और शाम 7:30 पर। कार्यक्रम मनचाहे गीत आप सुनेंगे रात 10:30 पर। ये थी हमारे केंद्र से आज के शेष और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा।

आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है, मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़ पर। शाम के 6:10 होने वाले हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे।

0: प्रादेशिक समाचार। प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से।
1: दीदी नौकरी लग गई।
2: अरे वाह बधाई हो।
3: तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग।
1: हाँ दी नया मोबाइल।
3: अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे।
1: इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है।
3: पहले बजट बनाना सीखो फिर खर्च करो।
1: पर दीप
3: देखो कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम।
1: हाँ दी पार्टी मेरी बजट तुम्हारा।
3: अच्छा
4: आरबीआई कहता है
5: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप आशुतोष से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीबीजी रामजी योजना के तहत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में पठानकोट में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाकर डॉक्टर मुखर्जी का सपना पूरा किया। हरियाणा के लोक निर्माण मंत्री रणबीर गंगवा ने हिसार जिले के गांव बाडूपट्टी में आईटीआई के भवन के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। भाजपा की प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने पार्टी कार्यकर्ताओं से विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान में सहयोग देने का आह्वान किया। और हरियाणा ने जनगणना 2027 के जनसंख्या गणना चरण के लिए तैयारियां शुरू की। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी अधिनियम 2025 के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की। श्री चौहान ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ वीबीजी रामजी योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा भी की। उन्होंने कहा कि आज जारी की गई पहली किस्त का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि राज्यों के पास धनराशि हो ताकि मजदूरी का भुगतान 15 दिनों के भीतर किया जा सके। पहली जुलाई से इस मिशन के सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए श्री सिंह ने कहा कि मनरेगा को लागू होने में 3 साल से ज्यादा का समय लगा था, जबकि विकसित भारत जी रामजी को पूरे देश में सिर्फ 1 दिन में लागू कर दिया गया।
1: मनरेगा को पूरे देश में लागू करने में 3 साल लगे थे, लेकिन मुझे आप सब पर गर्व है, 1 साल 2 साल नहीं, पहले दिन ही विकसित भारत जी रामजी योजना एक साथ पूरे देश में लागू हो गई। 100 दिन नहीं, अब 125 दिन रोजगार, 5 साल में 7.5 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि 2,86,000 पंचायतों में ठीक से लग गई, तो गांव संपूर्ण विकसित हो जाएंगे, समृद्ध और विकसित गांव का निर्माण हो जाएगा।
0: श्री चौहान ने कहा कि वीबीजी रामजी योजना के तहत मजदूरी दरों में औसतन 10% की वृद्धि की गई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देश की एकता और अखंडता के लिए सबसे बड़ा बलिदान दिया। उन्होंने जो आवाज उठाई और जो सपना देखा, उसे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाकर पूरा किया है। आज भारतीय तिरंगा कश्मीर से कन्याकुमारी तक शान से लहरा रहा है। श्री नायब सिंह सैनी आज पंजाब के पठानकोट में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह में बोल रहे थे। इस मौके पर पठानकोट के विधायक अश्विनी शर्मा, पंजाब विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष दिनेश बब्बू, पूर्व विधायक सीमा कुमारी और दूसरे वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि पठानकोट सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि भारत माता की उत्तरी सीमा है। ये बहादुर योद्धाओं, शहीदों, देशभक्तों और देश के महान सपूतों की धरती है, जिन्होंने देश की सीमाओं की रक्षा के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। यहाँ की मिट्टी में वीरता की खुशबू और हवा में देशभक्ति की भावना है। उन्होंने कहा कि इतिहास कुछ खास शख्सियतों को सिर्फ किताबों से नहीं बल्कि उन पीढ़ियों से याद रखता है जो उनके आदर्शों को जीवन में अपनाती हैं। हरियाणा के लोक निर्माण एवं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री रणबीर गंगवा ने आज हिसार जिले के गांव बाडूपट्टी में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण

0: संस्थान आईटीआई के भवन के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। 6 एकड़ भूमि पर बनने वाले इस भवन के निर्माण पर 16 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री ने कहा कि युवाओं को शिक्षा के साथ साथ कौशल से संपन्न करना बहुत जरूरी है ताकि उन्हें रोजगार मिल सके।
1: आज बड़ी खुशी की बात है कि हमारे गांव में आईटीआई का शिलान्यास हुआ है। शिक्षा के साथ साथ रोजगार बहुत जरूरी है। आईटीआई के अंदर जो बच्चे अपने अलग अलग फील्ड के अंदर काम करना चाहते हैं उनके लिए कौशल की शिक्षा के लिए ये सुविधा आपके गांव में दी जा रही है, जिसमें न केवल गांव बाड़ोपट्टी बल्कि बैबलपुर साथ में दिंगटाणा सरसों केवरा है, इस साइड में राजली है, केरिये के जितने भी गांव पड़ते हैं उन सबको इसका लाभ मिलेगा। आज शिक्षा के साथ साथ टेक्निकल शिक्षा बहुत जरूरी है और ताकि उसको रोजगार मिल सके। कोई भी बच्चा अगर आईटीआई करता है तो सरकारी जितना पैसा मिलता है इतना पैसा प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी बल्कि कई जगह उससे ज्यादा भी पैसा मिलता है।
0: कैबिनेट मंत्री ने उपस्थित अधिकारियों को भवन के निर्माण कार्य में गुणवत्ता सुनिश्चित करने और समयबद्ध ढंग से करने के निर्देश दिए। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताजा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध है। हरियाणा भाजपा की प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने आज फरीदाबाद में भाजपा कार्यकर्ताओं से सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने, पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधारोपण करने तथा लोगों को जल संरक्षण के प्रति जन जागरण करने का आह्वान किया। वे फरीदाबाद में उनके सम्मान में आयोजित स्वागत समारोह को संबोधित कर रही थी। समारोह में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल, खाद्य मंत्री राजेश नागर व अन्य नेता भी मौजूद रहे। डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने भाजपा कार्यकर्ताओं को विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान में सहयोग करने का आह्वान किया।
2: कुछ भ्रष्ट पार्षद हो चाहे अधिकारी हो, उन्होंने बाहर से आए हुए घुसपैठियों की पहले आधार कार्ड बनवाए और कुछ बूथों पर उनकी वोट भी बन गई, तो उन लोगों को चिन्हित करना, क्योंकि भारत का संविधान कहता है कि वोट डालने का अधिकार उसी को है जो भारतीय है। तो ये हमारा विधायक कौन होगा, हमारा सांसद कौन होगा, इसका तय हम सब भारतीय करेंगे। ये बाहर से आए हुए घुसपैठिए नहीं करेंगे तय कि हमारा विधायक और हमारा सांसद कौन बनेगा।
0: उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता संगठन की रीढ़ है। कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र तथा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा में लगातार तीसरी बार भाजपा सरकार बनी है। इस दौरान भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा वजीरपुर गांव के परशुराम चौक से अमृता अस्पताल तक साइकिल रैली आयोजित की गई। प्रदेश अध्यक्ष ने स्वयं साइकिल चलाकर रैली में भाग लिया और युवाओं का उत्साहवर्धन किया। हरियाणा ने भारत की जनगणना 2027 के जनसंख्या गणना चरण के लिए अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की वित्तायुक्त और हरियाणा जनगणना 2027 की नोडल अधिकारी डॉ. सुमिता मिश्रा ने आज चंडीगढ़ में बताया कि राज्य सरकार ने हरियाणा के कुछ चुने हुए क्षेत्रों में जनसंख्या गणना के पूर्व परीक्षण को अधिसूचित कर दिया है। ये क्षेत्रीय अभ्यास कल से 18 जुलाई 2026 तक आयोजित किया जाएगा। हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद की उपाध्यक्ष श्रीमती सुमन सैनी ने कहा कि सिख इतिहास में बाबा लखी शाह बंजारा का योगदान अमर है। जब अत्याचारी औरंगजेब के आदेश पर दिल्ली के चांदनी चौक में हिंद की चादर श्री गुरु तेग बहादुर जी का शीश कलम कर दिया गया, तब भय और आतंक का वातावरण था। ऐसे समय में बाबा लखी शाह बंजारा जी ने अद्भुत साहस दिखाया। उपाध्यक्ष श्रीमती सुमन सैनी आज लाडवा में गुरुद्वारा सिंह सभा में बाबा लखी शाह बंजारा के 448वें जन्म उत्सव पर आयोजित कार्यक्रम में बोल रही थी। मौसम विभाग ने पंजाब और हरियाणा के अधिकांश हिस्सों के साथ साथ केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में कल से 8 जुलाई तक मध्यम से भारी बारिश, बिजली और गरज के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना व्यक्त की है। ये इसे देखते हुए चंडीगढ़ स्थित मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा ली गई एसेट परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से संचालित हुई। 2 दिन तक चली इस परीक्षा में लेवल 1

0: हो गया इंतजाम।
1: किसका?
0: गुड्डी की फीस का।
1: दिखा। 20,000 का लोन तुरंत? पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही ले और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए।
2: RBI कहता है,
3: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
4: आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है, प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि जगत।

कार्यक्रम सुन दिए सारे बण भाइयों ने दलजीत भाई की राम राम। किसान भाइयों, दिन की बात करा तो कुछ दिन की इसी खबर थी, एक दो जगह बातचीत हुई है कि बारिश हुई है, लेकिन ई फिर चौपाल के बार की बात करा तो गर्मी सी बन रही है, आवारू करी है, बारिश का कोई बहाल का अंदेशा तो नहीं लगता, लेकिन चिपचिपापन कुछ मौसम का हिसाब ही सा दिखने लग रहा है कि बारिश हो सक है। जब कुछ सामान्य सा इस तरह हो के रुक जा, कोई साइलेंट सा एनवायरनमेंट बन जा, तो उसके बाद बारिश के आसार कुछ बन जाया करें। चलो देखो, मानसून ही समझ लो आएगी, और मानसून की बारिश से एक बार उतार चढ़ाव सा लेकर इस तरह आया, एक थोड़ी सी तेज भी आस कर कम भी है, लेकिन लंबे समय तक जो बारिश चल रहा है उसमें शुरुआती लक्षण कुछ इस तरह के दिख जाया करें। जिसे काम ने जरूर था इसी परमात्मा हमारी सुने है, बारिश की हमने जितनी जरूर से वो दे है। कुछ क्षेत्र में ज़्यादा हो जा है, अति हो जा है, थोड़ा नुकसान भी बन जा है, और कुछ क्षेत्र में कम रह जा है तो कमी का भी नुकसान हो जा है। चलो प्रकृति है, अपने हिसाब से चलाव है, जिस हिसाब से वो हमने उस हिसाब से चलाना पड़ेगा, लेकिन हम एक अपना जो पर्ण है, अपना जो फर्ज है, हम भी उस पर हैं। जल संरक्षण का एक हमारा एक ध्येय हम मान के चल करा कि भाई हमने पानी को बचाना है। ईब जो यू पानी है इसको इकट्ठा कित कर सके हैं, आग आने वाले टाइम में यू कित काम आ सके है, कित कित इसकी ज़रूरत रहेगी, ये सारी चीज़ हमारा पहले ध्यान में आ जानी चाहिए। न्यू नहीं है कि व्यर्थ पानी बहन लग रहा है तो भाई बहन दो को बहन, नहीं, उसने जो बारिश का पानी है वो खेत में जितनी ज़रूरत है उसकी ज़रूरत के हिसाब से उसने इस्तेमाल करें, बाकी कितने उसका संचय उसका है कि तो वो इकट्ठा हो उसका है तो उसने करें। तालाब बना के, गड्ढा बना के, कोई इस तरह का वो करके, देखो ज़्यादा बड़े तो तालाब नहीं बना सकते खेत में फिर बोएंगे के, लेकिन कुछ क्षेत्र के छोटे जो गड्ढे हैं वो थोड़े से गहरे बनाकर कुछ भाई बतेरा ऐसा काम करे हैं कि वो उसने पानी नहीं इकट्ठा कर ले हैं और फिर जैसे ही ज़रूरत हुआ है तो उसने इस्तेमाल में ले आए हैं। और जो भाई सब्जी का बागवानी का काम करे हैं और सिंचाई भी दी, कुछ कारगर इसी अपना ले हैं, टपका सिंचाई भी दी है, कुछ बूंद बूंद का जो पानी है उस हिसाब से, तो वो तो उस पानी तक काम भी बहुत घने दिन चला दे हैं। देखो सीधा खेत भरना है उसमें पानी घना चाहिएगा, लेकिन जो कुछ विधि ऐसी हैं कि जिनमें पानी की बहुत कम जरूरत पड़े है, हमारी पूर्ति हो जा है, तो उनमें तो ईसा पानी घने दिन तक हमारा काम चला देगा और बढ़िया भी पानी हुआ है। किसान भाई यू बारिश का पानी तो नहीं कहा रहा, ऊंचे नीचे सारा जाओगा, जब बारिश होगी उसने तो कोई नीचा देखना नहीं, ऊंचा देखना नहीं, जित भी हमारे पौधे हैं उनमें जाओगा और वो फलेंगे फूलेंगे। और इतना बढ़िया पानी हुआ है कि इसका तो खाद सा लग गया करे, जो हम ट्यूबवेल का पानी दें ना वो बल्कि इतना बढ़िया नहीं होता, नहर का पानी बढ़िया हुआ है, लेकिन उसने भी बढ़िया यो पानी माना जाया करे कि जो हम बारिश का पानी है। चलो इस बारिश का पानी ना हम जितना इकट्ठा कर सके हैं, जितना आगे के लिए इस्तेमाल के लिए इसने संचय कर सके वो हमारा मन रहना चाहिए, लेकिन एक मन हमारा ये भी रहना चाहिए कि ज़्यादा हम पानी का दुरुपयोग ना करें। जितना कम से कम हम पानी का इस्तेमाल कर सकें वो पानी कम से कम हम इस्तेमाल करके पानी ने बचाएं, आने वाली जो पीढ़ी है उनको पानी हम बचा के कैसे दे सकें हैं, ये हमारा फर्ज बना है। और एक और अपने किसान भाइयों ने कहे हैं कि देखो फर्ज तो सबका बना है, लेकिन हम अपने ऊपर इसकी जिम्मेवारी लेकर कि भाई हम पानी बचाएंगे, यह एक पहल करां, एक शुरुआत करां, लोगों ने इस चीज़ के बारे में बतावा, और भी कोई भाई है उस आगे जिक्र करां भाई कुछ इसी फसलों का चुनाव करें जिसमें पानी कम लगता हो, या फिर पानी की कोई और कितने बचत रह सके है कि भाई खेत में ऐसी विधि अपना लीजा जिससे पानी की कम लागत हो, तो ये सारी बातचीत करके हम पानी ने बचा सके हैं और आने वाली पीढ़ी को हम कुछ ना कुछ दे

0: के हैं, ये तो बात अपनी पानी संबंधी थी। बाकी आज की बातचीत भी अपनी कुछ इसी तरीके के कि जो कृषि योग्य जो पानी है ना उसका भाई उपयोग किस तरीके से होना चाहिए, उसका थोड़ा बहुत बचाव है वो किस तरीके से होना चाहिए, पूरा प्रसारित बातचीत है यह सुन लें, इससे कुछ हमारी और ज्ञान की वृद्धि जरूर होगी।
1: भाइयों जहाँ तक बात है जल संरक्षण की, वैसे तो आजकल हर क्षेत्र में देखते हैं, चाहे वो औद्योगिक क्षेत्र है, खेती बाड़ी है, या हम पारिवारिक रूप से देखते हैं, एक एक बूंद की कीमत है वो बताई जाती है। लेकिन आज कुछ चर्चा करते हैं खेती में यानी कृषि क्षेत्र के अंदर जल संरक्षण के उपाय। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जिनको जल दोस्त के नाम से भी जाना जाता है, पानी के बचाव के लिए बहुत जद्दोजहद कर रहे हैं, और भिवानी से आप तशरीफ़ लाएँ श्री अशोक भाटी जी को हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बहुत अभिनंदन आपका अशोक जी, कैसे हैं?
2: बिल्कुल बढ़िया संपूर्ण भाई, आपको सबसे पहले तो नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: और आपके दर्शकों को जो आकाशवाणी के दर्शक हैं उनको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार सर।
1: चलिए जी स्वागत करते हुए, देखो आपका विभाग जो है वो थोड़ा बताएंगे उसके बारे में।
2: जन स्वास्थ्य अभियंत्री विभाग में मैं कार्यरत हूँ, जिला सलाहकार अधिकारी और जल संरक्षण के अधिकारी के पद पे।
1: जी जी।
2: हम लोग पानी बचाने के लिए गांव-गांव में लोगों को मोटिवेट और उनका जल संरक्षण के प्रति रुझान करने के लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं सर।
1: हाँ हाँ, तो इसमें देखिए दो बातें हैं, आप तो एक गांव में जाते हैं, पूरे जन समुदाय को इकट्ठा करते हैं, पानी की कीमत को बताते हैं उनको, लेकिन आज हम खेतीबाड़ी की बात करते हैं, कृषि की बात करते हैं। पहले तो आपके आंकड़े क्या कहते हैं कि क्या इसको स्थिति है?
2: संपूर्ण भाई, जहाँ तक कृषि क्षेत्र की बात है, देखिएगा अभी तक हरियाणा में जो है कृषि क्षेत्र में पानी की बचत जो हमने करनी चाहिए वो हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। हमारा
1: नहीं कर पा रहे।
2: हाँ, नहीं कर पा रहे हैं जी, बिल्कुल। कोशिश जारी है सरकार की कि वो जो योजनाएं चलाई हैं पानी बचत में कृषि क्षेत्र में, उसको 100% जो है किसान उसको अपनाए।
1: अच्छा,
2: पर अभी धीरे धीरे प्रयास जारी है। तो अगर हम लोग अभी रेशियो की बात करें तो 80 और 20 का ये रेशियो जो आ रहा है कि 20% लोग तो उसको अपना रहे हैं।
1: बहुत बड़ा ये तो एक अंतर है।
2: ये डिफरेंस जो है बहुत बड़ा है कृषि क्षेत्र के लिए। पर सरकार का प्रयास है कि अगले 5 सालों के अंदर हम लोग इसमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ करते हुए 70 से 80% लोगों को कृषि क्षेत्र में जल संरक्षण के प्रति हम लोग उनको जागरूक
1: कर दें
2: और उनको कोशिश करें कि हम उसको अपनाएं।
1: लेकिन देखो हम ये पूछ रहे थे कि कई हमारे इस इलाके ऐसे जहाँ पर चूहा बहुत नीचे जा लिया।
2: हाँ जी,
1: ठीक है ना, वो डार्क जोन जिसको आप कहते हैं कि वहाँ पर चला गया।
2: हाँ जी,
1: वहाँ क्या होगा?
2: वहाँ संपूर्ण भाई देखिएगा क्या कि जहाँ पे पहले 200 फुट पे पानी था, फिर वो 400 पे गया, 600 पे गया, 800 पे गया
1: जी।
2: और जितना वो नीचे पानी जा रहा है उतने ही कृषि के लिए पानी की उपलब्धता बहुत कम होते चली जाती है।
1: कम है या है तो वो गुणवत्ता वाला नहीं है।
2: नहीं, जितना नीचे पानी जाएगा उसकी गुणवत्ता उतनी खत्म होती जाएगी, और पौधा की जड़ जो है वो पानी जमीन से ही खींच के ऊपर लेके आती है।
1: बिल्कुल।
2: और जब वो पानी जब उनकी पहुंच से बाहर हो जाएगा तो उनके लिए पानी तो मिलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। डार्क जोन के अंदर हम लोग का पहला प्रयास हमारा ये, जैसे हमारा लुहारू क्षेत्र है, हमारा बालडा क्षेत्र है, हमारा बहल क्षेत्र है, कैरू क्षेत्र है, जो ये जो डार्क जोन के क्षेत्र हैं जिनमें पानी आज काफ़ी नीचे चला गया, हमने कोशिश ये कर रहे हैं लोगों को, और काफ़ी लोग इसमें हमसे जुड़े भी हैं कि भाई इस पानी को जो जितने फुट पे पानी है 400 फुट पे है तो उसको रोको। हाँ, उसको वहीं पे रोक दो कि कम से कम वो आप उसको जब नीचे जाने से बचा लेंगे वो अपने स्थिर पे हो जाएगा और थोड़ा थोड़ा ऊपर भी आएगा, तो आप लोग आपके जो पौधे हैं, जो हमारी फसलें हैं, जो जमीन से पानी खींचने की उनकी पावर है, कम से कम वो तो हो जाएगा। इसलिए हम लोगों ने ऐसे किसानों को, जो समझदार किसान है, अभी हमने एक टारगेट लिया हुआ है कि हर गांव से हम लोग 4 या 5 किसान या 10 किसानों को अपने साथ जोड़ें ताकि उनको देख के और किसान प्रभावित हो जाए।
1: प्रभावित हो तो क्या इसके कोई किसान क्लब या कोई ग्रुप इस तरह का आपने बनाया है?
2: हाँ जी, हमने हर गाँव में संपूर्ण भाई एक कमेटी बनाई है 16 लोगों की।
1: अच्छा, 16 लोगों।
2: 16 लोगों, पहले उसमें हम लोग 11 लेते थे पर हमने उसको बढ़ाया। उसमें उस कमेटी को बार बार ट्रेनिंग दे के, बार बार सेमिनार करके, बार बार हम लोगों को उनके जो नवीनतम जानकारी सरकार की और जो योजनाएं हैं उसको लागू करवाने में उस कमेटी का बड़ा योगदान है। अब वो चाहे घरेलू पानी की बचत की बात हो, चाहे कृषि क्षेत्र की, खेती बाड़ी की बात हो, घरेलू बचत में तो हम लोग काफी कामयाबी हो गए सर। अच्छा। क्योंकि हाँ जी काफी जो है ना आप मान के चले कि अब इतने ज्यादा वेस्टेज पानी की नहीं होती, क्योंकि लोग काफी जागरूक हो गए हैं इस मामले में।
1: लेकिन खेती में
2: हाँ खेती का जो है बड़ा, क्योंकि पानी की बर्बादी में आप जो है ना कृषि क्षेत्र में काफी हो रही है सर। उसका सबसे बड़ा कारण है कि हम लोग अब उस प्रणाली को, जैसे टपका सिंचाई प्रणाली है,
1: हाँ बिल्कुल,
2: अब उसमें पानी की जो ना बर्बादी होती ही नहीं है, क्योंकि वो सीधा जड़ों में पानी देती है,
1: और टोपा टोपा
2: और टोपा टोपा पानी जितना
1: जितना पानी होगा वो तो बहुत ज्यादा रकबा मतलब हम कर सकते हैं,
2: कर सकते
1: हैं। एक किले में जितना खुला पानी देंगे उसमें तो हम दसियों किले आगे जाके हम अपना
2: कर सकते हैं। और दूसरा क्या है जी, टपका सिंचाई प्रणाली में पानी की बचत के अलावा समय की भी बचत होती है
1: जी।
2: और दूसरा क्या है कि फसलें ग्रोथ बहुत जल्दी करती हैं, क्योंकि एकदम से पानी, अगर आप किसी चीज़ को एकदम से पानी देंगे लगातार, अब फुहारा सिस्टम है आपने सेट कर दिया फुहारा सिस्टम, वो धीरे धीरे धीरे एक ही जगह पे गिरता रहता है,
1: ठीक है।
2: मान लो किसी फसल के ऊपर गिरा या किसी एक एक, एक, एक एरिए में गिरा या, तो वो वहीं पे जाके उसको पानी की वो करता रहेगा। पौधा को पानी चाहिए कम मात्रा में
1: मिल रहा है ज्यादा,
2: उसको ज्यादा मित्र है, तो पानी की बर्बादी होगी ना जी।
1: अच्छा कुछ इलाके वहाँ के बड़े रेतीले हैं, बाड़ों है,
2: हाँ जी,
1: तो किसान भाई कहते हैं जी जब तक तो फुहारा नहीं देते तो पानी नीचे रिसके चला जाता है, चूस जाए धरती, ये समस्या भी बड़ी गहरी है, तो इनका भी कहीं कुछ तोड़ निकाला है।
2: हाँ रेतीले देखिएगा संपूर्ण भाई, रेतीला जो इलाका होता है, जो बालू रेत होता है, उसको एक बार आप जो भीग जाता है उसमें जो पौधे उगाए जाते हैं, जो फसलें उगाई जाती हैं, वो पानी ले लें। पर हमारा जो सिस्टम जो ऐसा बना हुआ किसानों का, जैसे आप बालडा की साइड में आप लगा के चले, लोहारू की साइड में जो रेतीले इलाके हैं हमारे,
1: बिल्कुल है,
2: उसमें सबसे ज़्यादा जो प्रणाली कामयाब है वो टपका सिंचाई प्रणाली कामयाब है।
1: अच्छा।
2: हम इसलिए कहते हैं क्योंकि काफ़ी बड़े एरिए के अंदर, अगर आप बालू रेत के अंदर जो हमारे टिब्बे हैं, जो काफ़ी हमारे खेत में जो बालू रेत है उसमें अगर हम बार बार उसको पानी देंगे तो वो बिल्कुल नीचे पानी जा नहीं जाता, वो तो आपका 10 फुट पे या 15 फुट तक पानी रह सकता है
1: बस, इससे ज़्यादा
2: जाएगा नहीं, तो वो ज़मीन जो है ज़मीन के अंदर भी नहीं जा रहा वो पानी, जब भी तो उस एरिए के अंदर 600-800 फुट पानी नीचे चला गया जहाँ का भी 200 फुट पानी था।
1: तो फिर इसके उपाय क्या बताते हैं आप, कैसे बताते हैं लोगों को भी क्या करें जिससे जो खेती वाला जो पानी है वो बचत हो।
2: ये आपने बहुत बढ़िया प्रश्न किया किसान भाइयों को, हम भी ये इसी बात को लेके सेमिनार करते हैं, लोगों के साथ रूबरू होते हैं, संगोष्ठियाँ होती हैं गाँव में। सबसे पहले तो किसानों को समझना होगा कि वो अपने खेतों के अंदर टैंक बनाना पड़ेगा, पानी
1: स्टोरेज
2: तालाब आप स्टोरेज का स्टोरेज टैंक लगा,
1: बड़ा हो गया छोटा टैंक
2: आप लगा लो। दूसरा संपूर्ण भाई, पहले जो बोरवेल थे हमारे, जो कुएं हुआ करते,
1: ट्यूबवेल जो थे
2: उसकी मात्रा कम करनी पड़ेगी। ये नहीं कि भाई किसी के पास तीन किले जमीन है वो भी लगा ले, उससे आगे कोई किसी के पास 5 किले जमीन है वो भी लगा ले, वो सिस्टम अपने आप को ख़त्म कर, क्योंकि जितने ज़्यादा ट्यूबवेल होंगे उतने ही ज़्यादा पानी की बर्बादी होगी।
1: या एक खेत में कई कई ट्यूबवेल लगा ले,
2: हाँ जी,
1: ज़्यादा रकबा हो तो 3-4 ट्यूबवेल लगा ले,
2: हाँ जी,
1: इलाका वही है,
2: हाँ
1: है ना, उतने उसमें एक में काम चल सके, दो में चल सके, लेकिन 5-5 ट्यूबवेल लगा
2: ट्यूबवेल। तो इस चीज़ को हमने जो सरकार ने माना है कि अब उसको जो डार्क जोन एरिया है उसमें जो ट्यूबवेलों की जो जो
1: है
2: वो संख्या है उसको लगातार कम कर रही है, और उनको बिजली कनेक्शन भी नहीं मिल पा रहा है।
1: तो अब पौंड जो बनाएंगे, टैंक जो बनाएंगे अशोक जी, वो कैसे मतलब कितना उसका रकबा या कि उसका पानी का कैसे बारिश का पानी करेंगे उसमें संरक्षित?
2: हाँ एक तो देखो संपूर्ण भाई, किसानों जिन्होंने बनाए हैं, आप राजस्थान के टच में इलाके हमारे जो सिवानी का एरिया है, वो सिवानी से आगे जो इसहार का इस जो हमारा भिवानी का सबसे लास्ट टेल पड़ता है सिवानी का, इस साइड से आप दादरी का महेंद्रगढ़ की तरफ से चले जाएंगे, नारनौल का एरिया राजस्थान का टच करता है, वहाँ पे कुंड बनाए हैं उन लोगों ने, और वो कुंड में बरसात का पानी बड़ा सेफ होता है, उसमें पीते भी हैं और अपनी सब्जी में भी यूज
1: काम भी करते हैं,
2: काम करते हैं उस पानी
1: में। राजस्थान का तो देखो, राजस्थान भी अपने बावड़ियाँ होती थी,
2: हाँ जी,
1: बहुत गहरी गहरी बावड़ियाँ, और उनका इतना अच्छा मतलब पानी होया करता कि वो सारा साल काम आता था,
2: हाँ जी बिल्कुल। इसलिए हम लोग जो है ना अभी अमृत सरोवर सरकार की योजना है, उसमें काफ़ी सरोवर बनाए जा रहे हैं हर गांव के अंदर, 3-3, 4-4 पौंड के बनाए जा रहे हैं, जाके स्वस्थ पानी इकट्ठा हो सके और उसको खेती में भी यूज कर सकें। दूसरा, एक सरकार की योजना भी है कि

0: सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट जो टेक्नोलॉजी आ रही है, हमारे जन स्वास्थ्य अभियंत्री विभाग ने भी जो जहाँ जहाँ भी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जा रहे हैं उसका जो वेस्ट पानी निकलता है वो खेती के लिए यूज करने के लिए हम किसानों को फ्री में दे रहे हैं।
1: चलो,
0: कोई उसके लिए कोई पैसा नहीं,
1: कोई पैसा नहीं है। क्या किसानों को आप इसके लिए प्रेरित करते हैं कि हम फसलों का चुनाव भी ऐसा करें जो कम पानी में हो?
0: हाँ, ये बहुत ही अहम, इसका उद्देश्य लेके हम लोग इस पे भी काम कर रहे हैं कि जो जो फसलें ज़्यादा पानी पीती हैं उसको अवॉइड करें, और जो कम है जैसे बाजरा है, सर
1: बाजरा
0: मूंग है, मूंग है, बाजरा है, तो ये फसलें जो
1: ग्वार
0: है, ग्वार है,
1: चना हो गया,
0: चना हो गया
1: है जी।
0: अब पहले लोग काफ़ी मात्रा में चना बोया करते, अब चना हमारे इस एरिए में तो अब खत्म ही हो गया है, बालडा के अंदर, दादरी के अंदर
1: हो गया कि ट्यूबवेल का पानी जो चना मानता नहीं।
0: तो कोशिश यही रह रही है कि भी मूंग की आप खेती करें, जो चावल बहुत है उसको, जैसे अब भिवानी की शहर में काफ़ी लोग धान की खेती
1: धान
0: करते हैं,
1: कितना
0: तो हमने उनको मनाया इस बात का, सरकार भी प्रयास करेगी जो धान की खेती नहीं करेगा उसको राशि हम लोग देंगे, तो काफ़ी किसानों ने धान की खेती करना छोड़ दिया, तो कितनी पानी की बचत होगी बताओ।
1: तो वही ना कि हम पानी की बचत करें, और साथ ही साथ देखो जमीन वहाँ की रेतीली है अशोक जी, वहाँ पर कुछ वृक्षारोपण कहीं कुछ इस तरह की कृषि वानिकी का भी जो है क्षेत्र बढ़ाए।
0: हमने काफ़ी किसानों को मोटिवेट किया है, जागरूक किया है, और उन्होंने हमारी बात भी मानी है। आप निकल जाओ दिनों बजीना इस एरिए के अंदर, तो शाम के एरिए में निकल जब लोगों ने बाग बना दी, क्योंकि बाग फसल को छोड़ के अगर उन्होंने बाग बना लिए, बाग से जो फल होते हैं उसमें पानी की बिल्कुल जुड़ती नहीं है, टपका सिंचाई प्रणाली से आप एक बार पानी दे दो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो बार बार आपको पानी लगाने की जुड़ती नहीं पड़ेगी। आप बाग लगाएं, बाग में सब्सिडी आप सरकार देती है आपको।
1: हाँ चलिए, मतलब वो है बागवानी की तरफ आप जो जाओ, या जो खाली जमीन पड़ी है, शामलात की जमीन है, पंचायती जमीन जिसको कह देते हैं, तो वहाँ पर आप वन का क्षेत्र बढ़ाओ,
0: पेड़ पौधे। हाँ बिल्कुल जी, पेड़ पौधे सरकार की तरफ से फ्री दिए जाते हैं। इस बार हमने हमारे जितने भी जलघर हैं, जितने भी वाटर पार्क्स हैं, या जन स्वास्थ्य अभियंत्री विभाग की जितनी भी जमीन है, हर गांव के अंदर हमने 100-100 पेड़ पौधे सरकार की तरफ से हमें मिले थे, हमने उसको लगवाया। और लगवाने का ये नहीं कि हमने छोड़ दिया है, उसको रेगुलर हम लोग, एक जिम्मेदारी हमने अपने कर्मचारियों की लगाई है कि इन ये पौधे सूखने नहीं चाहिए किसी भी हालत के।
1: बिल्कुल, मतलब कोई पौधा मर जाए तो उसी जगह दूसरा लगा।
0: हाँ, दूसरा लगा दे, बिल्कुल
1: ये भी है, लेकिन सबसे ज़रूरी है अशोक जी जन सहभागिता।
0: हाँ जी,
1: आम आदमी का उसमें सहयोग, उसकी चिंता कि वो भी समझे कि पानी जो इतना नीचे जा रहा है तो मेरे लिए बड़ा खतरनाक है, इस हम वाटर टेबल को, चूहे को ऊपर बढ़ाएं, और उसमें क्या सहभागिता करें।
0: हाँ, उसमें हमने जो है युवा क्लब के जो सदस्य हैं, नेहरू युवा क्लब के सदस्य हैं, उनके साथ में आंगनवाड़ी वर्कर है जो डिपार्टमेंट है महिला विकास निगम का, उनके साथ में मिल के, हेल्थ डिपार्टमेंट के आशा वर्कर के साथ में मिल के हम लोगों ने बड़े बड़े लेवल पे लोगों को साथ में जोड़ा है। और हम लोग उन सरपंचों को भी प्रोत्साहित करते हैं जो जल संरक्षण के प्रति अपने गांव में एक अलग मुहिम चलाते हैं, लोगों को जोड़ते हैं, पंचायतें हैं जो,
1: हाँ।
0: उनको हम लोग 26 जनवरी और 15 अगस्त पे इनाम भी देके उनको, जो मुख्य अतिथि आते हैं जो भी सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, हम लोगों को सम्मानित भी करवाते हैं।
1: अच्छा, इसी के साथ साथ उसके अंदर किसी भी तरह की कोई जन स्वयंसेवी संस्था है वो काम करती है?
0: हाँ जी,
1: तो उनको साथ
0: में, हाँ उसमें साथ में लेके, नेहरू युवा क्लब के सदस्य हैं और जो पानी से बचत के लिए जो संस्थाएं काम करती हैं शहर में, हमने काफ़ी और गांव में हमने जो एनजीओ के माध्यम से हमने टूटियाँ भी वितरित करवाई हैं काफ़ी।
1: हाँ, ये टूटियों का तो एक बड़ा अच्छा प्रयास रहा,
0: क्योंकि गांव-गांव में संपूर्ण भाई युवा क्लब बने हुए हैं, संस्थाएं बनी हुई हैं, और उसका सबसे बड़ा बेनिफिट यही होता है कि वो अपने गांव की मॉनिटरिंग खुद कर सकते हैं, और इसमें सिर्फ जो है आपका मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए पानी बचत में, चाहे कृषि क्षेत्र हो चाहे घरेलू का हो। काफ़ी गाँव ऐसे हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है जल संरक्षण के ऊपर, उसमें सबसे ज़्यादा उनका युवा क्लब, युवा लोग और संस्थाएं जो हैं जिन्होंने हमारे साथ मिलकर काम किया या खुद वो काम कर रही हैं, काफ़ी अच्छा उसमें अभी आया। जैसे अब एक संस्था है युवा मित्रा, हमने वहाँ पे उनके साथ में मिलकर काम किया, महाराष्ट्र की संस्था की थी, तो काफ़ी अच्छे नाटक भी उन्होंने काफ़ी अच्छे किए वहाँ पे जल संरक्षण के। अच्छा। नुक्कड़ नाटक में एक अच्छा मैसेज आता है कि 100-100 लोग इकट्ठे होते हैं उसमें,
1: सही बात है,
0: और वो जो रियल हकीकत होती है वो उसमें वो जान पाते हैं,
1: वो जान पाते हैं। तो अच्छा, इसी के साथ साथ अशोक जी कृषि क्षेत्र की बात करते हैं तो कई जगह जैसे खुला पानी देते हैं खाड़मा को,

0: जगह आजकल प्लास्टिक का प्रयोग करते हैं लोग, प्लास्टिक के पाइप से, मान लीजिए टपका सिंचाई तो एक अलग सिस्टम हो गया, लेकिन वैसे पानी एक जगह से दूसरी जगह किला दो किला ले जाना हो तो आप ट्यूबवेल के पास या जहाँ भी आपका स्रोत है पानी का, वहाँ पर वो लगा देते हैं पाइप प्लास्टिक वाला, और बिना कुछ खर्च किए वो दूसरे टेल तक पहुँच जाता है, ये कहीं ना कहीं बचा था, वरना रास्ता का काफ़ी पानी पी जाए उसका।
1: हाँ हाँ बिल्कुल जी, पाइप जो प्रणाली है हमारी जलापूर्ति की, वो एक अच्छी प्रणाली है, क्योंकि जो खाली जो होते हैं वो अब धीरे धीरे सरकार उसको पक्का भी करने लगी, और या फिर उसको जो पाइप आपने जैसे कहा पाइपलाइन के माध्यम से पानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, वो एक अच्छा माध्यम है, क्योंकि आप लगा के चले 30-35% पानी तो जो
0: बर्बाद हो जाता है,
1: हाँ बर्बाद ही हो जाता है।
0: पहले जब खाड़ पक्के नहीं थे तो पानी टेल तक पहुंचना ही बड़ा मुश्किल हो जाता था जी, कि क्या करें किसान बांटते क्या करते हैं। अच्छा, सबसे बड़ा हमारा जो स्रोत है वो बरसात है जी, तो बरसात के पानी के लिए कुछ जागरूकता बढ़ाएं लोगों में कि उसका संरक्षण करो, उसका बचाव करो, उसकी बचत करो, आपके 100 काम पूरे हो जाते हैं उसके अंदर।
1: हाँ, बरसात का जो हमारे जो सेमिनार हुए, हमने BWSC जो मेंबर को अभी ट्रेनिंग हमने प्रशिक्षण की दिया, देखिएगा जो पथरी की प्रॉब्लम है, आप बरसात का पानी महीने साल में अगर आप दो महीने यानी 60 दिन 365 दिन में से 60 दिन बरसात का पानी पी ले, आपकी पथरी की प्रॉब्लम नहीं आएगी।
0: अच्छा,
1: आपकी जो नसें ब्लॉक हो जाती हैं वो ब्लॉकेज ही नहीं होंगी,
0: ये तो
1: आपके शरीर की जो पावर बढ़ेगी वो आपकी जबरदस्त तरीके से बढ़ेगी। लोगों ने बरसात का पानी पीना छोड़ दिया संपूर्ण भाई, इसलिए तो ये ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई। नहीं, पहले तो किसी ना किसी रूप में बरसात का पानी लोग पीते थे, काफ़ी कुएं बरसात का पानी कुएं में गया, कुएं का पानी वो लोग पीते थे।
0: हाँ,
1: हमारे तालाब का पानी पीते थे, इतने स्वस्थ तालाब हुआ करते। मैं बचपन में मुझे खुद याद है मेरे गांव में तालाब हुआ करता, उसमें से पानी पिया करते।
0: बावड़ियां जितना मर्जी,
1: हाँ बावड़ियां सारी खुली थी हमारी,
0: कुइयां जो बनाया करते
1: सारी, उसमें बरसात का पानी मिक्स हुआ करता। तो बरसात का पानी इतना स्वस्थ पानी होता है कि अगर उसको पीना स्टार्ट कर दें लोग, जैसे राजस्थान में संपूर्ण भाई, राजस्थान के लोगों के पथरी इतनी ज्यादा नहीं हो पाती जो बरसात का पानी पी रहे हैं वो, नहीं तो पानी का सोर्स और कोई है ही नहीं,
0: कोई और है ही नहीं। कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर पानी में फ्लोराइड की संख्या वो कहीं ना कहीं कुछ ज्यादा,
1: हाँ वो तो उस बरसात में तो ये चीज भी नहीं होती है,
0: वो खत्म हो जाती है।
1: बिल्कुल जी बिल्कुल, वो बरसात का पानी का मैं हैदराबाद गया ट्रेनिंग में, बड़े वैज्ञानिक आए हुए थे उस प्रोग्राम में, और हमारी वो 5 दिन की ट्रेनिंग थी, तो उसमें जो विदेश से भी आए हुए थे और हमारे देश से भी काफ़ी अच्छे साइंटिस्ट हैं जो पानी के ऊपर काम कर रहे हैं, 20-30 साल हो गए, तो उन्होंने यही कहा कि जो बरसात का पानी पी लेता है ना, बरसात का पानी बहुत ही शुद्ध, इससे शुद्ध तो पानी कोई हो ही नहीं सकता,
0: क्योंकि
1: पानी कोई फैक्ट्री में तो बन नहीं सकता जी,
0: नहीं जी
1: पानी
0: नहीं।
1: तो भगवान की देन है, और जब भगवान उसको सीधा बिल्कुल स्वच्छ करके आप उसको स्टोरेज करके ही उसका इस्तेमाल कर लो, तो आज फसलों में क्या है, जहाँ जहाँ बरसातें अच्छी पहले जितनी अच्छी होती थी, अब भी जहाँ जिस एरिया में होती है, आप एक बताओ, एक सीजन अच्छा निकल जाए बरसात का, आपकी फसलें भी अच्छी हो जाती
0: है,
1: सारी बीमारी खत्म हो जाती है बरसात के पानी।
0: कृषि जो है हमारा आर्थिक व्यवस्था है वो मानसून पर निर्भर है।
1: हाँ जी,
0: जिस साल मानसून अच्छा हो गया उस दिन फसलें उबारा।
1: अब देखो बरसात का पानी की कितनी महत्ता है जी।
0: हाँ, बिल्कुल,
1: मैं तो खुद अपने अड़ोस पड़ोस में जितने भी जानकार हैं गांव में, सरपंचों को और भी जो लोग हैं, सबको यही बात कहते हैं कि बरसात का पानी जब भी हो, जितना भी आप उसको जमा कर सकते हो, बरसात का पानी आप पियो, आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी,
0: जाने की जरूरत नहीं है, और वो सबसे शुद्ध सबसे अच्छा पानी है और आसानी से मिल रहे हैं।
1: बिल्कुल,
0: दरअसल अशोक जी होता ही है कि जो चीज हमें आसानी में मिल जाती है उसमें मिल जाती है ना,
1: उसकी कदर कम होती है,
0: उसकी कदर फिर उसके परिणाम भुगतने पड़ते हैं।
1: हाँ बिल्कुल,
0: तो यही आज खेती में हो रहा है कि खेती में चौहा इतना नीचे चला गया, अगर हम माड़ा मोटा कोई पानी का संरक्षण और तो जमीन सुधार के तौर पे बहुत अच्छा काम करता है।
1: कुछ नहीं सर, बरसात का पानी को तो बरसात का पानी इतना आसान है, आप 3x3 के आपके खेत में एक किले के अंदर अगर आप 5 खड्डे भी बना लेंगे 3x3 के एक किले के अंदर, तो आपको पानी को प्रॉब्लम ही नहीं आने देगा। वो पानी स्टोरेज करना ही सबसे अच्छी नीति है, और वो जो अपने जो लोग हैं, जो ग्रामीण हैं, जो कृषक हैं, वो इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं।
0: और देखो जैसे रे कलर की बात करते हैं,
1: हाँ
0: तो ये कहा जाता है कि आप अच्छी मेड़बंदी कर दो,
1: हाँ,
0: बरसात का पानी रोक को,
1: हाँ,
0: वो बरसात का पानी सारे नमक को लेके नीचे चले जाता,
1: हाँ,
0: है, आपके ऊपरी परत जमीन की वो ठीक हो जाती है, बहुत बढ़िया, मतलब ये सुधारक के तौर पे काम करता है। तो समझना पड़ेगा इस बात को, वरना धीरे धीरे बखत तो समझा रहे हैं जी, ठीक है ना, हम समस्या की तरफ घिरते जा रहे हैं, लेकिन इसका उपाय भी है, वो हमारे पास है कि हम बरसात के पानी को रोकें, पानी का इस्तेमाल करें, एक एक बूंद की कीमत को समझें, तब जाकर के हो सकता है कि हाँ।
1: और आज मैं जो है ना ये मैसेज आपके माध्यम से मैं देना चाहूँगा संपूर्ण भाई,
0: हाँ।
1: कि जिसके पास एक किला जमीन है वो कम से कम भी 20 पेड़ जरूर लगाए एक किले के अंदर।
0: अच्छा,
1: क्योंकि आज देखो टेम्परेचर 47 का पहुंच गया, कई स्थानों में 48 का है, किसी में 49 का है, ये पेड़ ही इस टेम्परेचर को कम कर सकते हैं, अदरवाइज और किसी के पास कोई पावर नहीं इस टेम्परेचर को कम कर दे।
0: कुदरत है, कुदरत के साथ मिलके चलिए।
1: हम लोग जो हमने कमेटी बनाई है, हमने लोगों को ये बिल्कुल ये मैसेज दिया है कि पेड़ हमसे कितना ही फ्री ले लो या वन विभाग से फ्री ले लो, सरकार से फ्री ले लो, पर एक किले में कम से कम 20 पौधे आपके पेड़ होने चाहिए, और 20 से ज़्यादा भी लग सकते हैं, पर कम से कम हम एक टारगेट लेके चल रहे हैं कि 20 एक पेड़ एक किले के हो। जिसके पास मान लो 10 किले हैं तो आप लगा के चलो 200 पेड़ अगर वो लगा लेता है, और ऐसी मुहिम हमारी कामयाब होगी तो आने वाले समय के अंदर देखिएगा जी, जो पेड़ होते हैं वो सिर्फ आपको छाया के फल के अलावा वो आपकी पानी की पूर्ति भी पूरी करते हैं,
0: पानी की करते हैं, जमीन के कटाव को रोकते
1: हैं,
0: ठीक है ना, रेतीला जो टिब्बे पड़ रहे हैं उसको रोकते हैं, उसका कोई उपाय नहीं है, कोई और दूसरा सिर्फ यही है। चलिए, बहुत अच्छा लगा, और हमारे भी शुभकामनाएं आकाशवाणी परिवार की ओर से, आपकी मुहिम जो चल रही है उसके अंदर आपके प्रयास सफल रहें, और आज आप आए अशोक भाटी जी,
1: धन्यवाद,
0: कुछ बताया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका,
1: धन्यवाद,
0: नमस्कार
2: भाई। ने यह तो सुन ली बातचीत, और आखिर में डॉक्टर साहब ने एक बात पर जोर दिया है कि भाई पेड़ लगाएं, पानी तो बचाना है लेकिन पेड़ भी लगाएं। किसान भाइयों, ईब मौका है, देखो जिक्र पहले भी चला था कि यो काम तो सबका है, लेकिन एक किसान का अपना एक फर्ज जो है वो आगे आवे तो उसने देख के दूसरे भाई आवे तो अच्छा लगेगा। अपने खेत में पेड़ लगा सके हैं, कोई सामला जगह है उस पर लगा सके हैं, कितने भी कोई मौका मिले तो इस टाइम पर फलदार लगा सके हैं, छाया के पेड़ लगा सके हैं, जैसे भी लगाएं। लेकिन एक विशेष बात और इसमें जोड़ देंगे, अगर हम उन लगाए हैं तो फिर उसकी संभाल भी करनी जरूरी है। मारा तो कहना ये है कि उतने लगाएं जितने की संभाल कर लें, मान ले 200 पेड़ लाके छोड़ दिए और उनकी संभाल करी नहीं, वो सारे सूख गए, वो कति गलत हो जाएगा। 5 लगा दो, 5 की संभाल कर दो, वो बड़े हो जाएं, कुछ दिन के बाद वो जड़ पकड़ जाए हैं, तसल्ली तो निश्चित है, अपना पोषक तत्व लेने शुरू करते हैं, पानी की जरूरत नहीं पड़ती। चाहे अपना आंगन में लगावें, कोई विशेष मौका देख कर लगावें, कोई बालक का जन्मदिन पर लगावें के बल्कि उस बालक का हाथ लगवावें, उसने भी पता चल रहा है कि भाई पेड़ का कीमत तो है, कैसे लगाया जाए, मिट्टी में हाथ कैसे दिया जाए, पानी कैसे डाला जाए, फिर उस पर पानी भी बल्कि उस बच्चे का हाथ डलवाएं, उसको बता कर के बेटा ये पेड़ है, जैसे हम जिंदा हैं पानी पी के, तो ये भी जिंदा जब रहेगा जब इसने पानी मिलेगा, तो वो मौके पर अपना उसने 4 बात सिखाने की भी हैं। और कोई सामला जगह है, कोई इसी जगह है जी हम लगा उसका, हाँ देखो कितने इसी जगह तो नहीं लगाना हमने कि किसी ने दिक्कत आवे, उस जगह नहीं लगावें, या फिर कितने कोई एतराज़ है उस जगह भी नहीं लगाना है, जगह बहुत है लगाने के लिए, तो अपना पेड़ लगावें, उनकी संभाल करें, पर्यावरण दूषित होने से बचावें, अपना जो फर्ज है उस पर हों, और ईब देखेंगे तो देखो ये बात कहने की तो नहीं है लेकिन आवे है कई बार ध्यान में, ईब अखबार में बहुत सारे फोटो आएंगे कि पेड़ लगाए जाएंगे, फोटो फाटो खिंचवाए जाएंगे, उनको दौरा खड़े हो गए, लेकिन बाद में फिर वो पेड़ भी नहीं मिलते, वो फोटो वाले भी नहीं मिलते, वो कित गए, वो संभाल भी नहीं करते उसकी, इस तरह का ना करें। देखो पेड़ वही लेकर जावे आदमी जो उसकी संभाल कर सके है, सरकारी नर्सरियां में तो भी मिले हैं, प्राइवेट जो भाई ये काम करे नर्सरी का उसमें तो भी मिल जाएंगे, वैसे भी कुछ पौधे से उगे उड़ मिल जाए जो इसी जगह है, वहाँ वो पनप नहीं सकते ना, वहाँ तो उखाड़ के उसने समेत मिट्टी और दूसरी जगह में लगा सके हैं, ताकि पर्यावरण दूषित ना हो और आने वाले टाइम पर पानी की भी पूर्ति हो जाए, और मारा एक जो मन न्यू जिस तक खुशी मिले आने वाले टाइम पर, वह भी एक अनुभूति हम आने वाले टाइम पर जरूर करेंगे, साल में 1.5 साल में वो पौधा जब बड़ा हो जाएगा उसने बढ़ता हुआ देखेंगे तो एक खुशी सी अलग तो महसूस होगी। चलो बात मनोरंजन की भी आवे है कि भाई पहले बातचीत सुन ली, फिर कुछ आप बतला लिए, फिर कुछ मनोरंजन हो जा, फिर अगला कार्यक्रम शुरू हो जा, उसमें कितने गीत भजन बाज जा, कुछ गाना बजाना हो जाए, तो ये चलता रहे है। ईब टाइम हो गया एक रागनी का, रागनी के गायक कलाकार हैंगे जगबीर सिंह बड़म्बिया और उनके साथी।

भगवान तने योर मेरी समझ मना।

0: या तो भाई ने रागनी सुनी, गायक कलाकार थे जगबीर सिंह बलंबिया और उनके साथी, और किस्सा था भाई कृष्ण सुदामा का। और मौसम का जिक्र करा तो थोड़ा सा बदलाव में तो मौसम है, अपना जो भी काम दाम है वो मौसम का हिसाब देख के। और तो देखो खेत कर के जो काम है, ये बारिश की तो ज़रूरत है, वो तो बारिश हो जाएगी कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी कितने बार भी तराना जाना है, कोई और काम दाम है, तो मौसम का हिसाब देख के जब भी बाहर निकलें तो ये ठीक रहेगा। और अपने जो पशुओं की संभाल है वो भी अपना मौसम के हिसाब से, भाई बांधन खोलने की जगह में कितने गीला हो रहा है तो अपना भीतर बांधने की कोशिश करें, ताज़ा पानी पिलाएं, उन्हें सूखा चारा मिल जाए, हरा चारा साथ में मिल जाए, बाट बिनोड़ा जो भी ज़रूरत है, खनिज लवण मिश्रण है, गुड़ है, चून है, सारी चीज़ें की मतलब जितनी जो भी पूर्ति उसकी होनी है वो मिल जाए, नमक की मात्रा पशु ने पूरी मिल जाए, छोटे जो काटड़ू बाछड़ू उनने भी, और जो दुधारू पशु उनने भी, सारे की जितनी जो पूर्ति है वो हो जाए, ताकि फिर पशु दिन अच्छा दिन हमने दे पाए। तो इसके साथ है जो अपना कार्यक्रम चल रहा है कृषि जगत, वो तो इस जगह पर समाप्त हुआ है। अगला कार्यक्रम है ग्रामीण संसार, और ग्रामीण संसार में भाइयों ने भाई नाटक भी सुनवाओगे आज, और रागनी भी सुनवाओगे, लेकिन उससे पहले कुछ एक जो ज़रूरी बात होया करें, उनका बार बार जिक्र करें तो वो ध्यान में चढ़ जाया करें। एक जो कौशल शिक्षा है ना, वो कितनी ज़रूरी है, थोड़ा सा विशेष से ध्यान करके सुनने वाली बात है। जो युवा हैं उनके बारे में, युवाओं का जो कार्यक्रम है उनमें तो इस तरह की बात चलती रहे हैं, लेकिन फिर भी अपने जो कार्यक्रम है उनमें भी इस तरह की कई बार हम बात करा। हाँ, आज का जिक्र करा तो जो पात्रता परीक्षा थी वो बढ़िया अच्छा बढ़िया ढंग से संपन्न हुई है। बहुत सारे जो भावी अध्यापक आने वाले टाइम के हैं उन्होंने परीक्षा दी है, बढ़िया है, उनके अच्छे नतीजे आएँ, वो सारे मास्टर लग गए और भाई बढ़िया आगे उनकी पढ़ाई का जो काम है वो करें और बच्चों को शिक्षित करें, देश का भविष्य उज्ज्वल करें, उनको शुभकामना। आज जगह जगह पे देखें थे भाई, बहुत दूर दूर तारे थे परीक्षार्थी, और मौसम का जो जिक्र कराते हमने न्यू भी देखे हैं कि भाई बारिश में भीजते उड़ सेंटरा में दिखने लग रहे थे, दोपहर की बात है। चलो जैसे भी उन्हें थोड़ा सा कष्ट में टाइम निकाला है, उनका उतना उनका इजाफा होगा, पेपर में बढ़िया नंबर आओगे, ऐसी शुभकामना उनको। और फिर बात कौशल शिक्षा की करा तो यह एक बदलती तकनीक के हिसाब से, उद्योगों की मांग के हिसाब से, जो स्किल बेस्ड एजुकेशन आम जिसने कहा ना कौशल शिक्षा, उसकी एक ज़रूरत बन गया आज वाला टाइम पर। एक सिर्फ किताबी ज्ञान, उस पर पारंपरिक जो शिक्षा है ना उस पर जोर दिया जा रहा है, भाई पढ़ ले, यो कर ले, इसके बाद यो पढ़ ले, इसके बाद यो पढ़ ले, लेकिन जो हाथ का जो दस्तकार है जिसने कहा करें ना, वो बनना बहुत ज़रूरी है। हाथ का दस्तकार भाई बड़े सैने कहा करें ना, बोला भाई हाथ का करणिया मार नहीं खाओगा, उनका तजर्बा आगे है इस बात में। जिसने हाथ की कलाकारी आ गई ना, वो कितने मार नहीं खाओगा, वो सदा कर होगा, उसने काम की कितने कमी को न रहे। तकनीक का प्रयोग आज के दिन की बात देखें ना, तो एक नाम आ रहा है AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हैं, कृत्रिम बुद्धिमता भी उसने कह इसके हैं, मतलब जो भाई भगवान ने तो बुद्धि मार दे रखी है, लेकिन हमने इसी इसी मशीन बना दी कि अपना हाथ ही उनकी बुद्धि इतनी दे दी कि वो बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं। चलो आने वाले टाइम में क्या होगा वो तो आने वाले टाइम में देख लेंगे, जिंदे जागते रहे तो नहीं, हमारे बालक देख लेंगे, उनके देख लेंगे, वो तो टाइम बताओगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि ईसा दौर आने लग रहा है कि मशीनी युग है। मशीनी युग में हमने उस हिसाब की बालका की शिक्षा दिलवानी है, उस हिसाब की बालका ने शिक्षा लेनी है, ताकि वो आगे जाकर आत्मनिर्भर हो सकें और इस शिक्षा प्रणाली के अनुकूल वो काम कर सकें। वो सिर्फ नौकरी खोजने वाले नहीं बल्कि नौकरी देने वाले बने, या फिर ऐसे उद्यमी बने जो अपने आप में एक सक्षम नुकारे देश ने मजबूत करने वाले, इस तरह के बने। एक सिर्फ इसे ना बने कि भाई किताब पढ़ ली, क्लास पास कर ली, फिर उसके बाद कुछ नहीं, ना वो नहीं है। देखो कोई भी तकनीक है वो सीखी जाएगी, वो सीखी जाएगी तो चार जगह वो सिखाई भी जाओगी, और जब आगे युग ही ऐसा आने वाला है तो इसमें बच्चा ने अपना हौसला दिखाना चाहिए, अपना रुझान दिखाना चाहिए, जो तकनीकी शिक्षा है उसकी तरफ जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि बालक नहीं जानते, जाओ ही बीबी, लेकिन आने वाले समय की जो मांग है वो तकनीकी शिक्षा की है, एक सामान्य जो किताबी जो ज्ञान है उसकी नहीं है। तकनीकी शिक्षा में ज़रूरी नहीं कि भाई हाथ का ही काम करना है, भाई तकनीक सिखाने वाला भी बन सके है, इसका मास्टर भी बन सके है, ये चीज़ सीख ले और ने सिखा दे तो वो भी काम कर सके है। इसमें बहुत सारी लाइन आगे जाके इसी हो जाएंगे, जो AI का जिक्र करा था ना, रोबोट बनाए हैं, भाई रोबोट बनाने वाला भी और न्यू बताने वाला भी, कि रोबोट बनेगा क्यों करे, न्यू सिखाने वाला क्यों चल लेगा क्यों करे, इसके अंदर के की चीज है, तो इसमें अलग अलग जाकर आगे अक्षेत्र खुल जाएंगे। इस तरह के जो बड़ी बड़ी जो तकनीक है उनकी तरफ है हम अपने बच्चों का रुझान करवाएं, उनको बताएं, इसकी जानकारी दें। जानकारी खुद नहीं हो तो किसी दूसरे भाई पे दिलवा लें। रेडियो में, टेलीविजन में, फोन में बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम आए हैं जिसमें इस तरह की जानकारी दी जा है, वो जानकारी हासिल करवाऊँ बड़का ने, और इस तरह के कोई संस्थान है वहाँ जाकर पता करवा ले। और मारा तो कहना ये है कि जो स्कूल में जो बच्चे पढ़े हैं ना, बल्कि उनके अध्यापक भी थोड़ा थोड़ा सा इसकी तरफ ध्यान दिलवाना शुरू कर दे, ताकि उन बच्चों का रुझान इसकी तरफ हो जाए, या फिर कोई उसका जानकार है इस काम का तो उसने बुला कर दो बात उस पर कह दें, वो सारी चीज़ बता देगा, बड़का के ध्यान में चढ़ जाएगी। और आजकल तो इंटरनेट का ज़माना है, बड़का ने भी बात कहनी चाहेंगे घना अनाप शनाप ये जो उसे है ना, फोटो काट के देख लिया, कोई गाना काट के देख लिया, कोई ना, इनकी बजाय मोबाइल पर भी इसी चीज़ निकाल के देखें कि आने वाले समय में जो फायदा कर सकें। वो इब्बत अपना मन ऐसा बना लें कि हमने तो इस तरह का कोई काम करना है, और आत्मनिर्भर खुद भी बनना है और अपने देश को भी आगे बढ़ाना है, ताकि हमारा नाम होए और हमारे साथ साथ परिवार का, देश का, जिले का और पूरे जो समाज है उसका पूरा नाम होए। तो इस तरह का एक हौसला लेकर कौशल शिक्षा की तरफ बढ़े। चलो बात आई थी नाटक की, तो हिंदी का नाटक है, नाम है नाटक का भोर, और जो प्रशिक्षित जो बच्चे हैं ना उन नहीं तैयार कराया गया है। भाई कोई छोटी मोटी बड़का बच्चू कर रही हो तो उस नाम देखा कर दें, क्योंकि शुरुआती दौर में देखो जो बड़ा काम कर है ना छोटी मोटी उसके कोई इसमें चूक रहे जल, लेकिन बड़का ने मेहनत बहुत करा की है, जो मेहनत करा की है उसकी सराहना भी हम जरूर करा। तो पहले ये नाटक सुन लिया।
1: ठीक है, मैं जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल करता हूँ।
2: आइए शुरुआत से जानते हैं कि आखिरकार उस रात हुआ क्या था।

0: बेटा दिव्या, 10 बज गए हैं, सो जाओ जल्दी से, कल सुबह स्कूल भी जाना है ना।
1: हाँ मम्मी, सो रही हूँ, गुड नाइट।
0: गुड नाइट बेटा। सभी सो गए, अब फोन चेक कर लेती हूँ थोड़ी देर। सारा दिन गया, टाइम ही नहीं लगा फोन चेक करने का।
2: रचना तुम सोई नहीं अभी तक? रात के 1:30 बज गए हैं, सुबह लेट हो जाओगी फिर से।
0: बस सो ही रही थी, सारा दिन बिजी रहती हूँ तो फोन देखने का टाइम ही नहीं लगा। सो रही हूँ, सो जाओ आप भी, गुड नाइट। बजे
2: गुड नाइट।

0: मेरे टिफिन कहाँ है? मेरी बस निकल जाएगी।
1: दिव्या बेटा, आज मुझे फिर देर हो गई और मैं रोटी सब्जी नहीं बना पाई। ये लो तुम्हारा टिफिन, नूडल्स पैक कर दिए हैं मैंने और तुम्हारे बैग में 100 रुपए रखे हैं, बाहर से खा लेना।
0: ठीक है मम्मी, हमारे स्कूल के बाहर बर्गर मिलता है, मैं वहीं से खा लूंगी।
2: लेकिन बेटा, ये रोज रोज इतना मैदा और तला हुआ खाना सेहत के लिए हानिकारक होता है, इससे अच्छा तो कुछ घर का ही खा लो।
3: बात तो ठीक कही माँ आपने।
1: आप तो चुप ही रहिए, आप अच्छे से जानते हैं ऑफिस के कामों में रोजाना कितनी भागदौड़ हो जाती है, इस बीच घर के कामों के लिए टाइम निकाल पाना मेरे लिए कितना मुश्किल है।
3: हाँ हाँ, मुझे अच्छे से पता ऑफिस में कितनी भागदौड़ करनी पड़ती है, थक जाती होगी बेचारी।
0: ओफो, आप लोगों की तो कभी बातें ही खत्म नहीं होगी, ऐसे तो सच में मेरी बस निकल जाएगी। दादी, अब आप ही मुझे नीचे तक छोड़ आइए ना प्लीज, आज मुझे फिर से लेट नहीं होना।
2: ठीक है लाडो, चल मैं तुझे नीचे तक छोड़ आती हूँ।
0: चलिए दादी, बाय मम्मी, बाय पापा,
4: बाय बेटा।
3: चलो अब मुझे भी मेरा खाना दे दो।
1: सॉरी विजय, आज इतना टाइम ही नहीं बचा कि आपके लिए कुछ बना सकूं। जितना टाइम था उसमें दिव्या के लिए नूडल्स बना दिए, आज आप एक काम करना, बाहर से ही खा लेना।
3: ठीक है, बाहर ही खा लूंगा, वैसे भी रोज का हो गया है। मैं निकल रहा हूँ, मेरा बैग ला दो जल्दी।
1: विजय मैं भी काफी लेट हो गई आज, मुझे भी रास्ते में बैंक ड्रॉप कर देना।
3: ठीक है, जल्दी आ जाओ, 9 बजे की इम्पोर्टेंट मीटिंग है मेरी, और आते आते ना टेबल से मेरी फाइल भी ले आना।
1: हाँ हाँ अभी लाई, तब तक आप गाड़ी स्टार्ट कीजिए।
5: रचना को सुबह उठने में देरी हुई जिस कारण वो नाश्ता नहीं बना पाई। आइए अब देखते हैं दिव्या के स्कूल का दृश्य।

0: दिव्या, आज तो टिफिन में क्या लाई है?
1: नूडल्स।
0: इससे तेरा पेट भर जाएगा।
1: हाँ, और अगर पेट नहीं भी भरा तो मम्मी ने कुछ पैसे दिए हैं, मैं बाहर से बर्गर खा लूंगी।
0: मेरा भी बहुत मन करता है बाहर से कुछ खाने का, पर मेरी मम्मी कहती है बाहर का खाना अच्छा नहीं होता, इससे हम कमजोर हो जाते हैं। इसलिए मेरी मम्मी तो मुझे बाहर का खाना ही नहीं देती।
1: मेरी दादी भी यही कहती है, पर मुझे तो बाहर का खाने में कोई परेशानी नहीं है। स्कूल के बाहर वाले अंकल का बर्गर भी बहुत टेस्टी होता है।
2: दिव्या बेटा, ये आप क्या खा रहे हो?
1: मैम, नूडल्स।
2: बेटा, तुम रोज इतना अनहेल्दी खाना क्यों खाते हो? ये तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है और ना ही इससे तुम्हारा पेट भरेगा।
1: मैम, मम्मी के पास इतना टाइम ही नहीं होता कि वो कुछ अच्छा बना सके, और अगर इससे मेरा पेट नहीं भी भरा तो मैं बाहर से बर्गर खा लूंगी, मम्मी ने पैसे दिए हैं।
2: लेकिन बेटा, ऐसे रोज रोज इतना अनहेल्दी खाना खाने से आप बीमार हो सकते हो।
0: मैम देखो, आज मैं खीर लेकर आई हूँ।
2: वेरी गुड बेटा, घर का खाना सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। और दिव्या बेटा, तुम भी टिफिन में रोटी सब्जी लाया करो, इससे आपकी सेहत भी अच्छी होगी। ये तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है और ना ही इससे तुम्हारा पेट भरेगा।
1: ओके मैम।
3: आपने देखा दिव्या के स्कूल का दृश्य। चलिए अब चलते हैं रचना और विजय के ऑफिस की तरफ।
4: चलो भाई, लंच का टाइम हो गया, कैंटीन चलते हैं।
5: आज भी कैंटीन? यार तो फिर टिफिन नहीं लाया। देख, मेरी वाइफ ने तो मेरे लिए आलू के पराठे भेजे हैं।
4: भाई एक बात बता, तेरी शादी को अभी कुछ महीने ही हुए हैं ना?
5: हाँ भाई।
4: थोड़े दिन रुक जा।
5: देख भाई, ये बात हंसी मजाक में टालने की नहीं है।
4: अरे यार, तेरी भाभी को इतना समय नहीं मिलता, घर, ऑफिस और साथ ही दिव्या का स्कूल भी।
5: भाई तू चिड़चिड़ा भी होता जा रहा है, और ऐसा ही चलता रहा तो जल्द ही बीमार भी हो जाएगा।
4: अरे भाई, तुझे कैंटीन चलना है तो चल, वरना अपना यहाँ बैठ के खाना खा ले, मेरा दिमाग मत खा।

0: अर्चना, क्या बात है? तू इतनी परेशान क्यों लग रही है?
1: तुम्हें क्या ही बताऊं, एक तरफ घर का काम और एक तरफ ऑफिस। सुबह ऑफिस के लिए लेट हो जाती हूँ, फिर भी रोज रोटी सब्जी नहीं बना पाती, और बेटी भी बाहर से खाना खा रही है रोज। इन सब के चलते मेरी मम्मी जी भी बड़ी परेशान रहती हैं।
0: आपने देखा कि लोगों के जीवन में इतनी व्यस्तताएं हैं कि न तो वे खुद के लिए समय निकाल पा रहे हैं और न ही अपने परिवार के लिए।
2: हेलो।
3: हेलो, क्या आप दिव्या की मम्मी बोल रही हैं?
2: जी, मैं दिव्या की दादी बोल रही हूँ। आप कौन?
3: नमस्कार आंटी जी।
2: नमस्कार बेटा।
3: मैं दिव्या की क्लास टीचर बोल रही हूँ।
2: जी
3: जी, बात यह है कि मैं काफी दिनों से देख रही हूँ आप बच्ची को रोज रोज लंच में फास्ट फूड देते हैं, जो इसकी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इससे बच्ची बीमार हो जाएगी। तो मेरी आपसे यही सलाह है कि आप बच्ची को हमेशा घर का बना खाना ही दिए, और इससे बच्ची की सेहत भी अच्छी रहेगी और उसकी ग्रोथ भी अच्छी तरीके से होगी।
2: जी ठीक है, मैं दिव्या की मम्मी से आज ही इस बारे में बात करती हूँ।
4: मम्मी मम्मी, मेरा मोमोज खाने का बड़ा मन कर रहा है।
1: विजय विजय, सुनिए ना, आज मैं बहुत थक गई, आप बाहर से कुछ खाने के लिए मंगवा लो, दिव्या का भी मोमोज खाने का बड़ा मन है।
5: चलो अभी ऑर्डर करता हूँ।
6: ये रोज रोज बाहर का खाना खाकर तुम अपनी तबीयत तो खराब कर ही रहे हो, साथ में बच्ची को भी बीमार करोगे।
5: माँ, आप इतना नाराज क्यों हो? क्या बात हो गई?
6: माँ बाप अपने बच्चे के लिए दिन रात मेहनत करते हैं ताकि बच्चे को अच्छी जिंदगी मिल सके, लेकिन तुमने कभी सोचा है कि कमाने के चक्कर में ना तुम खुद को टाइम दे पाते हो ना बच्ची को? जिस पैसे को कमाने के लिए तुम सारा दिन बाहर रहते हो, अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ करते हो, कल को ये सेहत ही नहीं रही तो फिर ये पैसा किस काम का?
5: लेकिन माँ ये तो बता दो, बात हुई क्या है?
6: आज दिव्या के स्कूल से उसके क्लास टीचर का कॉल आया था, वो शिकायत कर रहे थे जैसा खाना तुम बच्ची को रोज रोज दे रहे हो ना, उसे खाकर वो बीमार पड़ जाएगी।
1: हाँ जी मम्मी, मैं भी आपकी बात से सहमत हूँ, आज मैं भी ऑफिस में इसी बारे में सोच रही थी।
5: हाँ, मेरे दोस्त भी मुझे आज ऑफिस में यही कह रहे थे कि मैं बाहर का खा खा कर बीमार पड़ सकता हूँ, और आजकल तो बीमारियां भी बहुत फैल चुकी हैं।
4: पापा मुझे उल्टी आ रही है।
6: लो, ये तो होना ही था, और खाओ बाहर का तला बला।
4: मेरा पेट भी बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है।
1: विजय सुनिए ना, फटाफट दिव्या को हम हॉस्पिटल ले चलते हैं, इसकी तबीयत ज्यादा खराब हो रही है।
5: हाँ हाँ, मैं गाड़ी निकालता हूँ, तुम दिव्या को लेकर जल्दी आओ।
1: डॉक्टर मेरी बच्ची को देखिए, इसे क्या हो गया है?
7: आप इतना घबराइए मत, ये बताइए बच्ची को दिक्कत क्या है?
5: डॉक्टर, मेरी बच्ची की तबीयत बहुत ज्यादा ही खराब है, इसके पेट में दर्द है और उल्टियाँ भी आ रही हैं।
7: बेटा, मॉर्निंग में आपने क्या खाया था?
4: मैंने मॉर्निंग में नूडल्स और बर्गर खाए थे।
7: आप बच्चे को ऐसा खाना दोगे तो वो बीमार तो होगा ही।
5: डॉक्टर, आपको तो पता ही आजकल के जीवन का, हर वक्त घर का बना खाना कैसे खा सकते हैं?
1: जी, हम दोनों ही काम की वजह से काफी व्यस्त रहते हैं।
7: जी, समय तो निकालना ही पड़ेगा, और बच्चे के लक्षण तो फूड पॉइजनिंग के लग रहे हैं।
1: क्या, फूड पॉइजनिंग?
7: जी, घबराने की कोई बात नहीं है, मैंने दवाइयाँ लिख दी हैं और ये कुछ टेस्ट हैं, आप ये करवा लीजिए। बच्ची को कुछ दिन आराम करने दें और हेल्दी खाना ही दें।
5: ठीक है डॉक्टर साहब।
1: डॉक्टर, हम बच्ची को हेल्दी खाने में क्या क्या दें और क्या परहेज रखें?
7: जी, बच्ची को सिर्फ घर का ताज़ा खाने दें, जैसे खिचड़ी, दलिया, फ्रूट्स वगैरह, बाहर का कुछ भी खाने ना दें। कुछ दिनों के लिए उसको घर पर ही आराम करने दीजिए।
1: ठीक है डॉक्टर साहब, हम पूरा ध्यान रखेंगे।
6: हॉस्पिटल से आ गई मेरी लाडू, कैसी है अब तबीयत?
8: हाँ दादी, आ गई, अब मैं पहले से ठीक हूँ, और डॉक्टर अंकल ने कहा है कि मुझे आराम करना है।
6: अच्छा बेटा, मैं तो घबरा गई थी, तुझे देखकर मेरे मन को अब शांति मिली है। रचना, डॉक्टर ने क्या कहा, दिव्या को इतनी उल्टियाँ क्यों आई थी?
1: मम्मी जी, ये सब फूड पॉइजनिंग की वजह से हुआ था, डॉक्टर ने बोला है कि हमें दिव्या का खास तौर पर ध्यान रखना होगा, अब से घर का ही खाना देना है।
6: देखा, यही वजह थी कि जो मैं तुम सबको कहती थी, घर का बना खाना खाया करो, मुझे यही चिंता थी कि कहीं बच्ची बीमार ना हो जाए, और यही हुआ।
1: मम्मी जी, मुझे भी यही लगता है कि हमें खाने पीने पर और ज्यादा ध्यान देना चाहिए, आखिरकार ये लापरवाही तो हमारी ही है, वरना बच्ची को इतनी समझ थोड़ी ना है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है।
6: हाँ, दिव्या तो अभी छोटी है, उसे सही और गलत की समझ नहीं है, हम बड़ों को उसे सिखानी पड़ेगी।
1: हाँ जी मम्मी।
6: एक हमारा समय था और एक आज का समय है,
2: सब कुछ ही बदल गया।
8: दादी आपके समय में क्या होता था? क्या तब भी लोगों को फूड पॉइजनिंग होती थी और क्या तब भी लोग खाने की वजह से बीमार पड़ते थे?
2: अरे इतने सारे सवाल, इधर बैठ मैं तुझे सब समझाती हूँ।
8: जी दादी बताइए ना।
2: बेटा हमारे समय में बच्चे नूडल्स नहीं खाते थे, हम सब तो सेवैयां खाते थे जिसको हम चूल्हे भी बनाते थे।
8: सेवैयां? ये क्या होता है? दादी मुझे भी खाना है, आप मेरे लिए भी बना दोगे क्या?
2: ठीक है बेटा तुझे भी खिलाऊंगी।
8: ठीक है दादी।
0: दिव्या ठीक होकर स्कूल जाने लगी। मम्मी अब रोज टिफिन भी देती थी और दिव्या के पास जेब खर्ची के लिए कुछ रुपए भी होते थे।
9: दिव्या चल ना यार, बर्गर खा के आते हैं।
8: पर यार पापा ने मना किया है और डॉक्टर अंकल ने भी।
9: अरे एक दिन से कुछ नहीं होता, हम कौन सा रोज रोज खा रहे हैं, चल अब।
8: अच्छा फिर ठीक है चल।
0: बच्चे का मन और दिव्या ने बर्गर खा लिया। फिर अगले दिन और उससे अगले दिन भी। घर वालों को लगा बच्ची अब ठीक है, तो उन्होंने ध्यान देना बंद कर दिया। दिव्या को जल्दी से हॉस्पिटल लेके जाया जाता है, जहां डॉक्टर ने बताया कि दिव्या की तबीयत बहुत गंभीर है।
10: बच्ची की हालत बहुत खराब है, नर्स बच्ची को जल्दी इमरजेंसी वार्ड में लेकर चलो। आप घबराइए मत, सब ठीक हो जाएगा।
5: डॉक्टर हमारी बच्ची ठीक तो हो जाएगी ना?
10: अभी कुछ कह नहीं सकते, अभी के लिए आप शांत रहिए, आप बाहर वेट कीजिए।
11: डॉक्टर हमारी बच्ची को प्लीज ठीक कर दीजिए।
10: हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं,

0: डॉक्टर डॉक्टर, मेरी बच्ची ठीक तो है ना? उसे कुछ हुआ तो नहीं?
1: दिव्या, आप खतरे से बाहर हैं। मैंने आप लोगों को कहा था कि बच्ची को घर का खाना ही दो।
2: डॉक्टर, मैंने आपके कहने पे घर का ही खाना दिया था। लंच में भी उसको हेल्दी खाना ही पैक करके देती थी।
1: शायद स्कूल में कुछ खा लिया वो बच्ची ने। इस बार तो खतरा टल गया है। अगर ये दोबारा हुआ तो मैं कुछ कह नहीं सकता। बच्ची के पेट में पूरी तरह इन्फेक्शन फैल गया है।
2: हाँ जी डॉक्टर, हम अब से पूरा ध्यान रखेंगे हमारी बच्ची का, और आज से बाहर का कुछ भी नहीं खिलाएंगे। और विजय, हम दिव्या की टीचर से भी बात करेंगे, दिव्या को स्कूल के बाहर का कुछ नहीं खाने देंगे।
1: हाँ, आपको ये सावधानियां तो रखनी है, और साथ ही ये भी ध्यान रखें कि अगर फूड पॉइजनिंग हो तो उसके ठीक होने के बाद भी कम से कम 15 दिन तक तला हुआ खाना ना खाएं, केवल हल्का भोजन ही रखें, और कभी भी ज्यादा मात्रा में बाहर का खाना ना खाएं।
3: श्रोताओं, आज का यह नाटक केवल एक बच्चे या माता पिता की कहानी नहीं, बल्कि हमारे समय का सच्चा आईना है। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में हमने सुविधा तो पा ली है, लेकिन उसकी कीमत अपनी सेहत से चुका रहे हैं। जल्दी और भागदौड़ के कारण हम घर के खाने से दूर होकर जंक फूड, पैकेट बंद और बाहर के खाने पर निर्भर होते जा रहे हैं। आज यह भी एक कड़वा सच है कि बाहर मिलने वाले खाने में कई बार मिलावट व अत्यधिक कृत्रिम स्वाद बढ़ाने

0: हो जाती है जो कि बीमारियों का कारण बनती है। इसलिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, खाने के सामान को ढक कर रखें। अगर आज हमने अपनी आदतें नहीं बदली तो कल हमें दवाइयों और अस्पतालों पर निर्भर होना पड़ेगा। अब समय है जागने का, बदलने का और लौटने का अपनी जड़ों की ओर, जहाँ घर का सादा भोजन, मोटा अनाज, ताजी सब्जियाँ और शुद्ध खाना ही असली शक्ति है। तो जागिए, सेहतमंद आदतों को चुनिए और अपने परिवार को सुरक्षित कीजिए।
1: इस नाटक के कलाकार हैं निक्की, मनीषा, खुशबू, कुमकुम, पवन, महक, निशांत, साहिल, अंकुश और अक्षिका। इसके निर्देशक हैं श्री संजय कुमार बाली जी।

यह तो भाई ने रागनी सुनी, जिसके गायक कलाकार थे वेद प्रकाश कौशिक अलीपुरिया और उनके साथी। और मौसम का जिक्र पहले भी करा था, देखो मौसम बदलाव में है, जो भी काम दाम है अपने मौसम को देख के करें, बाहर भीतर की तो कोई आना जाना है, कोई और काम दाम है वो अपना मौसम के हिसाब से करें। और खान पान की जितनी बात है, नाटक भी सुना है भैया ती, भाई कोई भी बासी खाना बच्चा ती तो देना ही देना नहीं है, जो स्कूल में बालक पढ़े हैं, छोटे बालक हैं, देखो उनका इज्जत जब कोई दिक्कत आएगी तो समस्या हो जाएगी। और हमने खुद भी नहीं खाना है, हमने सोचा हाँ भाई फ्रिज में धर दिया तो ये ठीक करेगा, ना फ्रिज में धरिया और भी ठीक नहीं होता, बासी कोई भी भोजन नहीं करना है, साफ सुथरा ताज़ा भोजन। और इस मौसम में तो विशेष इस बात का ध्यान करना है कि कोई भी इस तरह का भोजन नहीं करे कि भाई जिस तरह पेट में जाकर कोई संक्रमण मर जाए, कोई दिक्कत आ जाए, फिर समस्या बड़ी हो जाएगी। उस बड़ी समस्या से बचने खातर ताज़ा भोजन, सात्विक शुद्ध भोजन जो हम खास का हाँ थोड़ा खा लें वो चल जाएगा, इस चीज़ का ध्यान करें। और ये हम ध्यान करें घड़ी का नहीं, घड़ी का इशारा भी कुछ ऐसा हो रहा है कि कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है। दलजीत भाई ने इजाजत दें, सारे बण भाइयों ने राम राम।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्रामीण संसार, मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ही रोहतक केंद्र है। शाम के 7:20 होने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम, जिसे हम रिले कर रहे हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: आईसीसी विमेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेले जाने वाले फाइनल टी20 क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल सुनने से पहले आइए सुनते हैं विशेष कार्यक्रम फर्स्ट बॉल 20।
1: दिस इज आकाशवाणी। वी नाउ ब्रिंग यू बॉल बाय बॉल कमेंट्री ऑफ द फाइनल टी20 क्रिकेट मैच टू बी प्लेड बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड ऑफ द आईसीसी विमेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2026। Before that, listen to a special program, First Ball 20.
2: First Ball 20.
3: नमस्कार, First Ball 20 में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मुनीश जॉली और आज बहुत बड़ा दिन है क्योंकि हम एक बार फिर से पहुंच रहे हैं इंग्लैंड के लंदन में और वहां लॉर्ड्स का मैदान इंतजार कर रहा है। एशेज की पुरानी राइवलरी कह लीजिए जो टी20 क्रिकेट में आ गई है, या फिर दिग्गज टीमें जिनको बहुत लोगों ने प्रिडिक्ट किया था, एक होम टीम है इंग्लैंड और दूसरी ऑस्ट्रेलिया और आज विमेन्स वर्ल्ड टी20 का फाइनल है लॉर्ड्स में। मेरे साथ गीतांजलि सोनी मौजूद है।
4: ओ मनीष, आई मस्ट टेल यू द पैल्पिटेशन इज रियली हाई बिकॉज ऑब्वियसली देयर इज लिटिल हिट एंड मिस। We are missing India at the moment, but right now we will only talk about Australia and England. Australia, pure dominance, super aura, and today, because it's Lords, a lot more to happen, but we have much more to talk about in the studio because we have our super, super experts. First of all, we have Chetan Sharma, former Indian fast bowler, and needless to say, 1987's World Cup hat-trick hero, the most loved. Chetan, welcome to the studio.
5: Thank you.
4: Also, we have Vaishali Mathur, India's first-class cricketer. Vaishali, you also have a lot to talk, right?
6: Yeah.
4: जी, बहुत सारी बातें आपसे स्टूडियो में करने वाले हैं। स्वागत है आपका। Last and not the least, by any means, Mona Partha Sarthi, senior sports journalist. Welcome again. We have a lot more to talk about game and what exactly are the nitty-gritties, and you're the best person to talk about it.
6: Thank you.
3: बहुत बहुत स्वागत है चेतन भाई। आप ही से शुरू करते हैं, वर्ल्ड कप का एक और फाइनल लॉर्ड्स की बात करते हैं। 1983 वर्ल्ड कप भूलता नहीं इसलिए जिक्र कर रहा हूं, लेकिन आज का मैच कैसे देखते हैं आप?
5: देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट मैच है और ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की जब हम बात करते हैं तो आप रिवलरी की आप मतलब जितनी बड़ी बात कर लें उससे कम होगा। इंडिया पाकिस्तान की आप बात करते हैं, उधर ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की बात करते हैं, लेकिन हमें भूलना नहीं चाहिए कि इंग्लैंड अपने घर में कोई वर्ल्ड कप का मैच अभी तक हारा नहीं है और ये एक ऐसा ग्राउंड है कि जहां पर मैच अगर तीन मैचेस खेले गए हैं लॉर्ड्स में, दो टीमों ने चेस करते हुए मैच जीता और एक टीम ने डिफेंड किया है और वो टीम कौन सी है? इंग्लैंड। तो बहुत चीजें हैं जो इंग्लैंड के पक्ष में जाती हैं, आप उसको राइट ऑफ नहीं कर सकते, लेकिन दोनों अनबीटन साइड्स हैं यहां हमारे सामने। जो अच्छी क्रिकेट आज खेलेगा ये ट्रॉफी उठाकर लेकर जाएगा।
4: वैशाली, बहुत सारे फैक्टर्स हैं ना जो जब भी हम क्रिकेट की बात करते हैं तो उनके बारे में बात करना वाकई ज़रूरी हो जाता है। सबसे पहली बात है, जैसे चेतन ने कहा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम है, एक भी मैच अभी तक नहीं हारी है। हमेशा हम बात करते हैं कि कौन सी टीम भारी रहने वाली है दूसरी टीम के ऊपर। ऑब्वियसली मुनीश उसके बारे में और भी बातें करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको लगता है हमारी दोनों टीम्स जो हैं उनके कैप्टन पहुँच चुके हैं ग्राउंड में, देखते हैं टॉस में क्या हो रहा है।
7: Defoes, I have match referee G.S. Lakshmi alongside our captains in Nat Sivabrunt and Sophie Molyneux from England and Australia respectively. Nat, you have the coin.
8: Heads.
9: Heads is the coin. It's heads.
8: We'll have a bowl.
7: Heads it is. Australia has won the coin toss. Sophie, what are Australia going to do?
8: We're going to have a bowl. Beautiful day out here and yeah, we want to get out here, have a run around and hopefully put some pressure on them early.
7: It's a very Australian way sometimes to set and put runs on the board. Did you have a big conversation about what to do first?
8: Yeah, there's been a lot of discussion around it, but at the end of the day, you sort of have to go with your gut. I don't think the pitch will change too much.
7: At the start of the tournament, it was a Phoebe Litchfield watch. It turned into an Elise Perry watch with the accord awareness. Is Perry playing any other changes to the side?
8: We've got no changes. So, yeah, Pez pulled up really well from her training yesterday. And, very excited to come out here.
7: I read the other day that your childhood dream was to come to this ground with your dad and watch a test match. You're now here. I know he's in the stand as well. And you're captaining Australia. That's good to beat that, doesn't it?
8: Oh, it sounds pretty wild, to be fair. But, special day.
7: And five-day gap. Did you sort of just allow the players a little bit of time off just to freshen up the mind a bit?
8: Yeah, the girls got a couple of days off. Went across town from south of London to north and, started training over the last couple of days. So we're in a really good place.
7: We'll enjoy everything that is a final.
8: Thanks, Go Josie.
7: Matt, if it had fallen your way, would have things been different?
10: I was going to bowl as well, actually. But, it's a fresh wicket.
6: runs on the board in a final is no bad thing. So, happy to be stood here batting first.
7: You've kept a pretty consistent team right throughout this tournament. Any changes from the semi-final win against South Africa?
6: No, we're unchanged.
7: You can stick with that as well. Talk to me about your squad. And I'm not talking so much players, but just experience. Charlotte Edwards, captain a team on this ground in 09. Heather Knight did it in 2017. If you sort of lent on them for experience, are you sort of thinking to yourself, I'm doing it my way?
6: I mean, it would be silly of me not to lean on that experience and then try and add my own little spin on it. But yeah, I think the whole group throughout this tournament has obviously experienced different grounds, different conditions, different pressures, and we've

0: produced some really good cricket along the way. So, yeah, hopefully we can do the same again today.
1: What wins it for England today?
0: One more run than the opposition, I suppose.
1: As simple as that. All the best. Go well, Nat. Australia have won the coin toss today and they're going to bowl first in the final.
2: आकाशवाणी में अब एक बार फिर से आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता पहले बोलिंग करने का फैसला किया है। गर्मी बढ़ रही है लंदन में, विंबलडन हो चाहे लॉर्ड्स हो, पंखे निकल कर आ गए हैं, उसी गर्मी को हम यहां पे कायम रखते हैं। वैशाली, आपसे जानना चाहेंगे, टॉस जीता आपने, सुना दोनों कप्तानों ने कहा कि हम टॉस जीते तो चेज ही करते, आपके विचार?
3: इस पिच पे अगर देखें ना तो ये 75% ऑफ बैटिंग पिच है एंड 25% बॉलिंग पिच है। अगर बॉल के बारे में बात करें तो स्टार्टिंग में मीडियम पेसर को काफ़ी स्विंग में फ़ायदा देगी, लेकिन जैसे जैसे बॉल पुरानी होती जाएगी वो स्पिनर्स पे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो मुझे ये लगता है कि इस पिच पे 180 प्लस का स्कोर जरूर देखेगी इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के सामने। एंड उसके साथ ऑस्ट्रेलिया ने, मुझे ये लगता है कि ऑस्ट्रेलिया ने ये जो बॉलिंग लेने का निर्णय लिया है वो बहुत कॉन्फिडेंट है अपनी बॉलिंग के ऊपर। एंड दे नो कि जिस तरह से बॉल, हम कहते हैं कि बॉल रिएक्ट करती है धीरे धीरे, वो कम उसकी स्विंग एंड वो सब कम होता जाता है तो वो स्पिनर पे ज़्यादा फोकस करती है। तो आई थिंक इस यही एक बेनिफिट की वजह से उन्होंने, ऑस्ट्रेलिया ने बॉलिंग लेने का निर्णय लिया है।
2: ढेर सारी बातें करेंगे लेकिन अपने कॉलर्स को बता दें कि अगर आप इस शो में जुड़ना चाहते हैं, वर्ल्ड कप में हैट्रिक लेने वाले हमारे दिग्गज खिलाड़ी चेतन शर्मा मौजूद हैं, मोना पार्थसारथी मौजूद हैं, वैशाली माथुर हमारे साथ मौजूद हैं और मेरे साथ गीतांजलि सोनी मौजूद हैं जो टेलीफोन रिसीव करेंगे। तो टेलीफोन नंबर्स मैं जल्दी से बता देता हूँ, हमारे नंबर्स हैं 2342-1084, 2342-1085, दिल्ली का कोड है 011, उसे लगाना बिल्कुल ना भूलें, 2342-1084, 2342-1085। गीतांजलि
4: जी, मनीष बहुत सारी बातें इनफैक्ट हमारे कॉलर्स हमसे करना चाहते हैं, जैसा नंबर आपको बताया उन नंबर्स पे आप जरूर कॉल करें। मोना, बहुत सारे फैक्टर्स इनिशियली मैं कह रही थी चर्चा जरूर करेंगे उस बारे में, लेकिन सबसे पहले पिच की बात करें, लाइक वैशाली कह रही थी क्योंकि बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होने वाली है उन लोगों को जो स्टार्ट पहले कर रहे हैं बैट करने से, राइट। लेकिन मुझे ये लगता है कि बहुत सारे लोग जब हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट व्हाट पिच इज़ गोइंग टू डू, इट वाज ऑलवेज लाइक बिकॉज इंग्लैंड का होम ग्राउंड है और इंग्लैंड ने अभी तक यहाँ पर एक भी मैच नहीं हारा है, उनको ये एज मिलेगा।
5: इंग्लैंड को न सिर्फ मैदान का एज मिलेगा बल्कि आप कहीं भी देखिए जो इंग्लैंड के लॉर्ड्स का मैदान इतना बड़ा है और उसमें पूरा होम सपोर्ट इंग्लैंड को मिलेगा, तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। और उसके अलावा पिच की जो आप बात कर रहे थे, तो 158 एवरेज स्कोर रहा है इस पिच पर और हमेशा चेस करने वाली टीम जैसे चेतन सर बोल रहे थे यहाँ जीतती है और उनको फ़ायदा मिला, इसीलिए दोनों कैप्टन्स ने भी ये कहा कि अगर वो टॉस जीतते तो वो भी शायद चेस करना पसंद करते। और काफ़ी ही रोचक मुकाबला रहने वाला है क्योंकि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया दोनों की अगर हम अभी तक का जो उनका सफ़र रहा है उसकी बात करें तो एकदम बराबर नज़र आती हैं। इंग्लैंड पिछले 2 साल में 18 महीने में बिल्कुल ट्रांसफॉर्म टीम नज़र आ रही है, तो काफ़ी एक मुझे लगता है रोचक मुकाबला रहने वाला।
4: जी, और अभी रोचक बात यह है, कॉलर हमारे साथ जुड़ना शुरू हो गए हैं और उम्मीद करते हैं पहले कॉलर एकदम डायरेक्ट सवाल पूछेंगे हमारे एक्सपर्ट से। नमस्कार
6: जी। नमस्कार
4: जी, नाम बताइए अपना।
6: जी, मैं गुजरात राज्य से अशोक नाई बात कर रहा हूँ।
4: जी पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं?
6: देखिए, मैम मेरे ख्याल से सोफिया डंकली को मौका नहीं देना चाहिए मेरे समझ से परे, और क्या कितना टोटल होना चाहिए अगर जीतना है तो इस मैदान पर?
4: जी, टोटल की चर्चा जरूर करेंगे, सोफिया के सिलेक्शन से खुश नहीं है। सो चेतन, वी विल हैव लॉट मेनी क्वेश्चंस। फर्स्ट ऑफ ऑल, देयर इज नो चेंज मेड बाय एनी टीम, सो व्हाट एग्जैक्टली यू फील अबाउट द टीम?
7: देखिए, दोनों अनबीटन साइड्स हैं और जब आप जीतते आते हैं तो हर समय ये कहा जाता है कि ज़्यादा बदलाव ना करेंगे तो अच्छी बात है आपकी टीम के लिए। और टॉस के समय अगर आप दोनों कैप्टन्स का रिएक्शन देखें, ऑस्ट्रेलिया तो टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करना चाहती थी, उनके सोच में ये है कि आप फील्डिंग करें। बट मैं हर समय ये कहता हूँ कि इतने बड़े मंच पर आकर जब आप रहते हैं ना, रन्स ऑन बोर्ड हर समय आपकी मदद करता है इस प्लेटफॉर्म पर आकर। और इंग्लैंड की कैप्टन की भी यही सोच थी कि ठीक है हम टॉस हार गए लेकिन रन्स ऑन बोर्ड हो सकता है कि ये प्रेशर में डाल दे, क्योंकि ये प्रेशर गेम रहेगा आपके सपोर्ट, जो कहते हैं ना सपोर्ट इंग्लैंड को रहेगी, क्राउड आपके अगेंस्ट रहेगा, आप चेस कर रहे हैं, मैं ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहा हूँ इस समय, तो चीज़ें अच्छी नहीं होगी ऑस्ट्रेलिया के लिए इफ इंग्लैंड गेट अराउंड 170-180। देखिए 150 पे कुछ नहीं होगा, 150 ये ग्राउंड ऐसा है कि इट्स ए ब्यूटीफुल विकेट, इसके ऊपर हम देख चुके हैं ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का मैच भी इसी ग्राउंड पर हुआ था, 170 एक ओवर पहले चेज कर दिया था ऑस्ट्रेलिया ने और लास्ट 10 ओवर में उस समय गीतांजलि 107 रन थे, स्टिल वन ओवर टू स्पेयर, दे फिनिश द गेम, तो वहां से अनुमान लगाया जा सकता है ये विकेट कितनी अच्छी है। तो इसलिए 180 ऑन अ फाइनल गेम विल बी अ प्रेशर ऑन ऑस्ट्रेलिया डेफिनेटली।
4: चेतन अभी तक 186 हाईएस्ट स्कोर रहा है इस ग्राउंड पर,
7: 180 बना दीजिए।
2: राइट देन वैशाली, तो आपने जो अनुमान लगाया 180-85, उसके पास मेरे ख्याल से इंग्लैंड की भी टीम जो है वही यही सोच रही होगी। बट मैं आपसे जानना चाहता हूं कि यहां पे एक प्लेयर है एशली गार्डनर, उनके बारे में जिक्र करना चाहता हूं। शी इज बीन एन ऑलराउंड प्लेयर ऑफ द मैच पिछले गेम में। हाउ गुड इज ऑस्ट्रेलिया? ठीक है एशली गार्डनर के बारे में हम शक नहीं कर रहे, लेकिन वॉट डेप्थ है उनके बैटिंग में भी बॉलिंग में भी, अगर हम देखें क्या खास आपको दिखता है ऑस्ट्रेलिया में, ऐसा कैसे कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हैं?
3: देखिए उनके पास ऑलराउंडर बहुत अच्छे हैं, एलिसी पेरी, वो एक ऐसी ऑलराउंडर है जो आपके मीडियम पेसर में ही सिर्फ बॉलिंग में ही फ़ायदा नहीं देती, आपको बैटिंग भी करके देखती है। और उनका ये खासियत, तो उन्होंने 170 स्कोर जब हुआ था इंडिया के अगेंस्ट और वहीं वहाँ पे खड़े होकर उन्होंने बैटिंग भी की थी उस टाइम पे, तो ये एक बेनिफिट होता है एक्सपीरियंस प्लेयर का। और एलिसी पेरी वो प्लेयर है जो WPL में भी बहुत अच्छा करके गई है, एंड उसकी वजह से वो काफ़ी बेटर इम्प्रूवमेंट इम्पैक्ट पड़ता है एक टीम पे, तो ये एक फ़ायदा है। और दूसरा मैं ये कहूँगी कि इंग्लैंड के पास एक बेनिफिट ये है कि वो अपने होम ग्राउंड पे खेल रहे हैं, एंड उसके साथ उन्होंने इसी ग्राउंड पे इंडिया के साथ मैचेस खेले हैं, सीरीज़ खेली हैं, और वो उन्होंने एक एक्सपीरियंस गेन किया उनके बैटर और बॉलर्स ने।
2: मोना आपसे एक बहुत छोटी सी बात जानना चाहूंगा, ये अलीसे पेरी के बारे में बात हो रही है, आपने कभी देखा कि सेमीफाइनल में रिटायर्ड हर्ट होके विमेंस क्रिकेट में एक प्लेयर को बाहर बुला लिया क्योंकि फाइनल गेम तैयारी कर रहे हैं?
5: जिस तरीके से सेमीफाइनल में वो रिटायर्ड हर्ट होके बाहर गई थी तो लग रहा था कि पता नहीं फाइनल खेल पाएंगी या नहीं, लेकिन पिछले दो प्रैक्टिस सेशन में वो नजर आई और उससे लग गया था कि इतना बड़ा मैच है वो इस मैच से अलग नहीं हो सकती। और कैप्टन्स प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने कहा था कि वो पूरी तैयारी कर रही हैं, सारा कुछ जतन उन्होंने कर लिया है कि किसी तरह से उनको ये फाइनल खेलना है। सेवेंथ अभी तक वो 6 बार जितना ऑस्ट्रेलिया जीती है, उन्होंने काफ़ी अच्छा सफ़र देखा है। और 2023 से जैसा कि आप जानते हैं ऑस्ट्रेलिया कोई ICC ट्रॉफी नहीं जीत पाई है, तो ये एक बहुत बड़ी खिलाड़ी है और उनको बाहर रखने का मुझे नहीं लगता जोखिम ऑस्ट्रेलिया ले।
4: और एक जोखिम हम कभी नहीं ले सकते, हमारे कॉलर्स को बाहर रखने का, एक कॉलर जुड़ गए हमारे साथ। नमस्कार।
8: हेलो
4: जी, नाम बताइए।
8: चेतन शर्मा जी नमस्कार।
7: नमस्कार जी।
8: नमस्कार, आप आ गए तो मेरा बहुत खुशी हो जाता साहब, मैं 1970 से कमेंट्री सुन रहा साहब।
7: नहीं आप, मैं आपका इंतजार कर रहा था, आप कब आएंगे, आपका टेलीफोन कब बजेगा?
8: साहब आप शारजा में एक बार मैच हो रहा था जब क्या हुआ, आप हैट्रिक नहीं है मेरे को याद है अभी तक।
4: जी सभी को याद है हैट्रिक।
8: और एक मैच में जावेद ने आपका बॉलिंग में लास्ट में छक्का मार के मैच विन हो गया था साहब।
7: जी जी जी जी,
4: बहुत इंटरेस्टिंग मेमोरीज।
7: आज वुमेन्स क्रिकेट की बात करते हैं और छोड़ देते हैं सभी को
4: जी।
2: पाजी, वो मेरे ख्याल से वो कुछ और बोलना चाह रहे थे, लेकिन
4: एक्साइटमेंट
2: जस्ट आउट ऑफ दिस एक्साइटमेंट मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, शारजा की बात की, गर्मी याद आ गई। अब आपने 86 में टूर किया था, घातक स्पेल डाला था इंग्लैंड में, तब का मौसम इतना चेंज हो गया पाजी, प्लेयर्स कैसे अडैप्ट कर लेते हैं इन गर्मियों में और इन टेम्परेचर चेंजेस?
7: देखिए कभी आप सोच नहीं सकते कि अगस्त सितंबर में इंग्लैंड में डे नाइट क्रिकेट होगी। आज के समय में देखिए डे नाइट क्रिकेट आप खेलते हैं, वहाँ से अनुमान लगाया जा सकता है कि कैसा टेम्परेचर में बदलाव हुआ, पूरे वर्ल्ड में अगर आप देखें टेम्परेचर में बदलाव है। इस विकेट के ऊपर मैं बात करूँगा, इन दोनों टीम्स की बात करूँगा, 9.2 पूरे टूर्नामेंट में 9.2 पर ओवर के हिसाब से इंग्लैंड ने रन बनाए हैं, 9.4 के हिसाब से ऑस्ट्रेलिया ने रन बनाए हैं। यहाँ पर एडवांटेज अगर हम, मैं मनीष और गीतांजलि बात करूँ, एडवांटेज किस पक्ष में जाता है, वो जाता है थोड़ा ऑस्ट्रेलिया के पक्ष में, क्योंकि उनके गेंदबाजों ने 6.2 पर ओवर इकोनॉमी से गेंदबाजी की है। देखिए आपको मैचेस कौन जिताएगा, मैचेस आपको T20 क्रिकेट हो या टेस्ट मैचेस हो, आपको गेंदबाज, आप 200 रन बना देंगे, आपके गेंदबाजों में दम नहीं है तो 200 रन ऑपोजिशन चेस कर लेगी। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की अगर आप इकोनॉमी देखें गेंदबाजों की 6.2, तो ये थोड़ा एडवांटेज आता है। लेकिन वो एडवांटेज तब आता आपके पास ज्यादा, अगर मैं कैप्टन होता कि जब मैं पहले बल्लेबाजी करके 180-190 ऑन बोर्ड लगाता और दूसरे को चेस करने देता, क्योंकि मेरे गेंदबाजों की जो इकोनॉमी रेट है वो 6.2 है। या तो आप ऑस्ट्रेलिया जाए और 6.2 से रोकने की कोशिश करें, इसका मतलब 140 के आसपास आप इंग्लैंड को रोकने की सोच रहे हैं, अगर मैं आपके आंकड़े देख रहा हूँ। तो लेट्स सी व्हाट ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स डू नाउ।
4: और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है मोना, अगर आप दोनों टीम को एनालाइज करें तो जो इंग्लैंड ऑफकोर्स एक होम ग्राउंड का तो उनके पास एडवांटेज है, लेकिन वो बहुत रिलाई करते हैं अपने इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पे, मतलब अभी जो हम देख रहे हैं उनका प्लेइंग स्टाइल। जहाँ ऑस्ट्रेलिया को देखो तो बहुत ही अच्छी कलेक्टिव, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम नज़र आ रही है, तो ये एक एडवांटेज तो ऑस्ट्रेलिया के पास बाय डिफॉल्ट है। प्लस ऑब्वियसली वॉल ने भी 101 रन बनाकर नंबर वन क्रिकेटर बन गई हैं, सो वो भी बहुत बड़ा एडेड एडवांटेज है ये।
5: देखिए अभी बहुत बातें हो रही थी कि जब इंग्लैंड की टीम बहुत ज़्यादा डैनी वेयर्ट पर डिपेंड करती है, लेकिन आपने सेमीफाइनल में देखा 3 विकेट गिर गए थे उनके 23 रन पर, और उसके बाद जिस तरीके से नेट सीवर ब्रंट ने या हीथर नाइट ने जिस तरह की पार्टनरशिप की और जो टीम को जीत तक ले गए। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जो 2017 की टीम थी जिसने वनडे वर्ल्ड कप जीता था, उसमें से कैप्टन और हीथर नाइट और डैनी तीनों प्लेयर के पास काफ़ी एक्सपीरियंस है वर्ल्ड कप का, वो कहते हैं ना बीन देयर डन दैट, तो वो वर्ल्ड कप जीतने का अनुभव उनके पास है। और यहाँ एक और बात रोचक है कि जो इनकी कोच है चार्लोट एडवर्ड्स, 2009 में जब पहली बार इनॉग्रल जीता था वर्ल्ड कप इंग्लैंड ने, एकमात्र जो जीता है अभी तक, उस समय वो उस टीम की प्लेयर थी, तो उनको अनुभव है कि कैसे जीते जाते हैं वर्ल्ड कप। और वहीं जिस टीम को उन्होंने हराया था ऑस्ट्रेलिया की, उसकी जो प्लेयर थी शैली निशके, वो भी ऑस्ट्रेलिया की कोच है, तो कोचों का भी एक अलग ही मुकाबला यहाँ चल रहा है कि कौन किस पर भारी पड़ता है।
2: वी आर हैविंग अ लवली डिस्कशन हियर बिकॉज़ यू नो बहुत अच्छा पैनल हमारे पास है, एंड वी आर जस्ट गोइंग इनटू द डेप्थ ऑफ द फाइनल। आकाशवाणी में आप ये प्रोग्राम सुन रहे हैं फर्स्ट बॉल 20, हमारे साथ चेतन शर्मा मौजूद है, मोना पार्थ सारथी मौजूद है, वैशाली माथुर हमारे साथ मौजूद है, गीतांजलि भी रनअप ले रही है, वो थोड़ा सा रनअप ले रही है। तो मैं एक सवाल पूछ लेता हूँ वैशाली, हमने स्टैट्स की बात कर ली, ऑन ग्राउंड आज की डेट में अगर मैं आपसे कहूँ कि इंग्लैंड को ठीक है रन तो बनाने, लेकिन ऐसी क्या स्ट्रेंथ आपको इन दोनों टीमों में किसकी ज्यादा दिख रही है, पहला सवाल ये, और दूसरा ये कि इंग्लैंड की तरफ से ऐसा क्या उनको पावर प्ले में या स्लो गोवर्स में अलग करना पड़ेगा जिससे वो आगे हो जाएं।
3: इंग्लैंड में नेट सीवर अभी इस टूर्नामेंट की हाईएस्ट रनर है जो उनके ज़्यादा रन्स है, तो उनके पास ये एक बेनिफिट है इंग्लैंड टीम के पास, एंड उनके पास एक डैनी वॉट है जो ओपनर आती हैं, एंड जो पावर प्ले में वो एग्रेसिव प्ले करती हैं वो शानदार है, काबिले तारीफ है। और अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करूँ तो ऑस्ट्रेलिया में भी बैटर बहुत ज़बरदस्त है, बेथ मूनी है उनके पास, जो उनकी कंसिस्टेंसी काफ़ी बेटर है, इंडिया के अगेंस्ट भी उन्होंने काफ़ी अच्छा खेला है और बाकी मैचेस में भी उन्होंने काफ़ी बेटर करते हुए दिखाई दी हैं। तो दोनों टीमों में आज जो बॉलिंग एंड बैटिंग दोनों टीमें अच्छी करती हैं, लेकिन जो फील्डिंग जो मेन पार्ट है वो है फील्डिंग, आप फील्डिंग कितना अच्छा करते हैं वो ज़्यादा मैटर करती है।
2: और राइट, इससे पहले कि गीतांजलि अपनी रनअप के साथ आएँ और एक अगला सवाल पूछे, भारतीय रिप्रेजेंटेशन भी है इन दोनों टीम्स में, पाजी आईपीएल में लगभग सारी प्लेयर्स जो हैं इंग्लैंड की और ऑस्ट्रेलिया की आईपीएल में कहीं ना कहीं किसी टीम से वो लोग खेल चुकी हैं, सो वो एक तरह का इंडियन रिप्रेजेंटेशन हो रहा है।
4: जी, और रिप्रेजेंटेशन की आप बात कर रहे हैं तो दोनों कैप्टन्स की ना चेतन, मैं चाहती हूँ आप थोड़ा सा एनालाइज करें दैट बोथ द कैप्टन्स, इंग्लैंड की जो हीथर नाइट हैं और ऑस्ट्रेलियन की नए कैप्टन है सोफी, इनमें से किसकी कैप्टनसी आपको बहुत इफेक्टिव लग रही है?
7: देखिए दोनों टीमें अनबीटन आई हैं अभी तक, और अनबीटन जब आती हैं तो ऑब्वियसली बोथ कैप्टन्स हैव डन वेल। अभी मनीष ने जो क्वेश्चन पूछा था ना किसके ऊपर इंग्लैंड रिलाई करता, मैं कहूँगा ओपनर्स के ऊपर, बिकॉज दे आर वेरी एक्सप्लोसिव। और अगर एक चांस इंग्लैंड के पास बनता है वो बनता है कि आप पहले 6 ओवर्स को कैसे भुनाते हैं, फर्स्ट 6 ओवर्स, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल एक्चुअली मेरे साथ डिबेट हुआ है कि लॉट ऑफ पीपल थिंक कि 7 से 15 बहुत इंपॉर्टेंट ओवर्स होते हैं। मैं हर समय एज ए बॉलर मानता हूँ कि पहले 6 ओवर्स हर समय इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, बिकॉज दैट विल टेक अवे द गेम फ्रॉम यू। देखिए कैप्टन्स का रोल कैसा होता है गीतांजलि, जो आपने बोला कैप्टन तो सभी बनते हैं, लीडर कौन बनता है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, अपनी टीम को कौन लीड करता है, जो परफॉर्म करेगा। और अभी तक मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया हैज डन ए ग्रेट जॉब, बिकॉज अगर आप ऑस्ट्रेलिया के सेमीफाइनल्स और नॉकआउट गेम्स देखें ना, वेस्ट इंडीज को कैसे धाराशाही किया, वो कॉन्टेस्ट नहीं रहना देते हर समय, दे जस्ट फिनिश द ऑपोजिशन, जैसे नॉकआउट स्टेज पे ऑस्ट्रेलिया आती है दे नेवर वॉन्ट की कॉन्टेस्ट रहेगा, तो दैट इज द बेस्ट पार्ट। तो ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलियंस आर टफर व्हाट इंग्लैंड आर, बट इंग्लैंड के जो रिकॉर्ड्स, अभी मैम भी बोल रही थी कि दे आर अनबीटन वर्ल्ड कप में, आज तक इंग्लैंड में हारे नहीं, होम सपोर्ट होगा, अपनी विकेट्स को जानते हैं, थोड़ा सा होम एडवांटेज रहता ही है आपको, तो इट्स गोइंग टू बी अ कंटेस्ट, बट मैं सिर्फ चाहता हूं बैटिंग करते हुए इंग्लैंड 180 रन बना दे एंड आई वांट टू सी ऑस्ट्रेलिया चेजिंग दैट।
2: और चेतन भाई आप कह रहे हैं कि 180 विनिंग स्कोर होने वाला है,
7: देखिए हो सकता है, देखिए आप यू कैन नॉट अंडर एस्टिमेट ऑस्ट्रेलियंस, नंबर 10 तक बैटिंग करते हैं वो, और जैसे उन्होंने इंडिया के खिलाफ ताबड़तोड़ की, मुझे तो मैं भी था यही स्टूडियो में था उस दिन, में मुझे लग रहा था एक तरफा इंडिया मैच जीतेगी और मैच ऐसे गया हाथ से कि मतलब आप पूछ नहीं सकते, तो ऑस्ट्रेलिया गॉट अ डेप्थ एंड ऑस्ट्रेलियंस आर वेरी टफ स्पेशली इन नॉकआउट गेम्स।
2: हमारे हाथ से कॉलर ना चले जाए।
4: हां बिल्कुल, वो टफ कॉलर हमारे साथ हैं अभी तक, उनसे बात करते हैं। हेलो
9: हेलो, नमस्कार मैम।
4: नमस्कार जी, नाम बताइए और सवाल पूछिए अपना।
9: मैम मेरा नाम उमाशंकर सिंह है, मैं यूएस सपोर्ट किसी से बोल रहा हूं।
4: हां जी
9: मैम, जितने भी अभी तक सब लोग ने मैच में जैसे चाहे वो
4: जी, अगर आपने अभी तक हमारा शो सुना है लगातार और आप फोन करने में बिजी नहीं थे तो इसकी चर्चा हो चुकी है। बिल्कुल, दोनों टीम्स हमारे एक्सपर्ट्स बता रहे हैं लगातार कि हर एक के पास कुछ प्लस पॉइंट्स हैं और कुछ उस पे चीज़ें वर्कआउट होंगी, बाकी तो आप जानते हैं जो क्रिकेट है अनिश्चितताओं का खेल है, हमेशा हम यही कहते हैं। एक बार फिर आपको बता दें, आप सुन रहे हैं फर्स्ट बॉल 2020 और हमारे एक्सपर्ट्स मौजूद हैं चेतन शर्मा हमारे साथ, मोना पार्थसारथी हैं और हमारे साथ हैं वैशाली माथुर, मैं हूं गीतांजलि सोनी और मेरे साथ हैं मुनीश जौली।
2: मोना, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि जर्नलिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप दो दिग्गज टीमों को देखते हैं, कितना आसान या कितना मुश्किल होता है एनालिसिस करना, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि टॉप प्लेयर्स खेल रहे हैं यहाँ पे, सो हाउ इजी और डिफिकल्ट इट इज फॉर स्क्रिप्टिंग यू नो अ मैच लाइक दिस बिफोर द फर्स्ट बॉल इज बोल्ड।
5: मुनीश जी, कई बार तो ऐसा होता है कि लास्ट बॉल में पूरा इंट्रो बदलना पड़ता है, पूरी कॉपी चेंज हो जाती है, ऐसे भी कई बार हुआ है, और तब अगर इंडिया का मैच नहीं है तो कभी चाहे कोई कितना भी बोले कि आप जर्नलिस्ट हैं, आप अच्छे गेम को एनकरेज करें, लेकिन जहां इंडिया एंगल आता है थोड़े से हमारे भी इमोशंस आ जाते हैं उसमें, लेकिन अब यहां तो आपको तटस्थ होके देखना है कि कौन टीम कैसा खेल रही है, और मुझे लगता है कि इतना ज़्यादा क्रिकेट अब होने लगा है ना कि सब एक दूसरे के खिलाफ काफ़ी क्रिकेट खेलते हैं, तो अब वो ज़माना नहीं रहा कि आपको वर्ल्ड कप में ही दो दिग्गजों की टक्कर देखने को मिल रही है, और अभी जैसे चेतन सर कह रहे थे कि ज़्यादातर सारे प्लेयर्स जो है वो हम WPL में इनको देखते हैं, तो अभी ऐसा कुछ नहीं रह गया है कि आप कुछ एक दिमाग में प्रिजिडिस लेके बैठेंगे कि हाँ ये ऑस्ट्रेलिया है, नो डाउट ऑस्ट्रेलिया नॉकआउट में आने के बाद सामने कोई कंटेस्ट रहने नहीं देती दूसरी टीम पर, एक साइकोलॉजिकल गेम भी उनका चलता रहता है लगातार, लेकिन फिर मैं वही बात कहूंगी कि आपस में इतना आजकल इंटरनेशनल क्रिकेट खेला जा रहा है कि सब एक दूसरे के वीकनेसेस और स्ट्रेंथ जानते हैं और जर्नलिस्ट भी जानते हैं कि क्या एक्सपेक्ट करना है, और कभी कभी स्क्रिप्ट चेंज हो जाती है।
4: जी वैशाली, एज अ क्रिकेटर बहुत सारे मोमेंट्स आपने भी एक्सपीरियंस किए होंगे, अभी जो कंडीशन चल रही है आप देख रहे हैं, थोड़ी देर में हम भारतीय टीम की भी बात करेंगे, बहुत सारे हमारे श्रोता जानना चाहेंगे इस बारे में, लेकिन अभी जो टीम है, आप इंग्लैंड की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, एक अलग जज्बा आपको ऑस्ट्रेलियन टीम में नज़र आता है, क्या कारण है? आप देखा जाए तो हमारी भी भारतीय टीम वो बहुत ही ज़्यादा सशक्त टीम है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम है, कौन से ऐसे पॉइंटर्स हैं जो आपको लगता है कि मिस कर गए और इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलियन टीम के पास वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से मौजूद हैं?
3: इंडिया के बाद मेरी तो सबसे फेवरेट है, उसके बाद इंडिया के बाद ऑस्ट्रेलिया टीम, एंड ऑस्ट्रेलिया टीम में हम कह सकते हैं कि उनका जो फिटनेस लेवल है वो आउटस्टैंडिंग है, वो कहीं और हम अगर किसी कंपेयर करें किसी भी टीम से तो वो उतना हाई लेवल पे नहीं है, एंड उसके बाद अगर बॉलिंग की बात करो तो उनके पास टॉलर बॉलर्स हैं, आप देखिए कि हमारे पास एक झूलन गोस्वामी थी, और टॉल का जो निप मिलता है ना बॉल को वो डिफरेंट होता है, वो बॉलर को थोड़ा सा कहीं ना कहीं बेनिफिट नहीं मिलता है, तो वो आउट होने के कहीं ना कहीं चांसेस बनते हैं उनके, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए कि ऑस्ट्रेलिया टीम एंड उनके पास एक कंसिस्टेंसी है, वो जितने मैचेस वो खेलते हैं उतना मुझे लगता है कि एज़ कम्पेयर टू ऑस्ट्रेलिया उतने मैचेस वो नहीं खेल पाते हैं, क्योंकि 25% कहीं ना कहीं वो रह जाते हैं मैचेस के लिए, तो एक ऑस्ट्रेलिया टीम के पास एक बेनिफिट है, एंड उनकी जो हम ट्रेनिंग की बात करें तो वो ट्रेनिंग अगर हम देखें तो एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़ वो बेटर है, चाहे वो आप इंग्लैंड ले लीजिए या साउथ अफ्रीका ले लीजिए, ऑस्ट्रेलिया के पास एक बेनिफिट है।
2: पाजी, बहुत जल्दी हम लोग जाएंगे हमारी कमेंट्री टीम के पास और दो दिग्गज कमेंटेटर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा, आई नो बहुत अर्ली पूछ रहा हूँ, लेकिन प्रिडिक्ट करना चाहेंगे कि विनर कौन होने वाला है?
7: देखिए मैं तो आंकड़ों के साथ जाऊंगा, मैं आंकड़ों के ऊपर देखता हूं तो ऑस्ट्रेलिया ने इस स्टेज पर आकर तीन बार मतलब मात दी है, 2012, 2014, 2018 इंग्लैंड को मात दी है फाइनल्स में आकर, तो मतलब इतनी पिटाई के बाद तो मनोबल नीचे रहता है, तो लेट्स सी, दैट्स व्हाई आई वांटेड इंग्लैंड टू गेट टू 180 एंड आई वांट सी ऑस्ट्रेलिया चेजिंग इट। तो मैं इस मैच को एक कांटे वाला मैच देखना चाहता हूँ, ऐसा ना हो कि 6.2 इकोनॉमी रेट की वजह से 140-145 में रह जाए इंग्लैंड, तो इट वोंट बी अ कंटेस्ट, आई वांट इंग्लैंड टू स्कोर 180।
2: मोना क्योंकि इशारा हो गया प्रोड्यूसर साहब का हमको जाना है, लेकिन मेरा मन कह रहा है कि एक शब्द आपको बोलना है इंडिया और सॉरी इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया, मेरा पेट्रियोटिज्म आ गया इंडिया के नाम।
5: हाँ बिल्कुल, हम सबके मन में आज मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया
2: ऑस्ट्रेलिया राइट। वैशाली बता चुकी हैं, तो मैं मुनीश जौली गीतांजलि सोनी के साथ आप सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं जो हमारे साथ ट्यून्ड इन थे और आपने सुना ये प्रोग्राम फर्स्ट बॉल 20, और सीधा चलेंगे लॉर्ड्स लाइव कमेंट्री के लिए हमारी टीम के साथ। फर्स्ट बॉल 20, तो आइए चलते हैं हमारी कमेंट्री टीम के पास। दिग्गज कमेंटेटर्स हिंदी में विनीत गर्ग, अंग्रेजी में प्रकाश वाकणकर, स्कोरर है भूपेंद्र सिंह भाटी और स्टैटिस्टिशियन ओम प्रकाश शर्मा। ओवर टू आवर कमेंट्री टीम।
10: नमस्कार, स्वागत है क्रिकेट के इस महाकुंभ में। आप जानते हैं कि T20 वर्ल्ड कप महिलाओं का अपनी मंजिल तक पहुंच चुका है और ये फाइनल मुकाबला है, और किसके बीच में? पुराने जाने माने प्रतिद्वंदी, कांटे का मुकाबला हमेशा होता है जिनके बीच में, ऑस्ट्रेलिया और मेजबान इंग्लैंड। लॉर्ड्स का यह मैदान जो क्रिकेट का मुख्यालय है, और पहली सूचना जो आपके पास अब तक पहुंच चुकी होगी, दोनों ही टीमों में सेमीफाइनल में जो टीमें खेली थी कोई परिवर्तन नहीं है और दोनों विजय रथ पर सवार हैं। क्यों होगी टीम में कोई बदलाव या परिवर्तन क्यों होगा, क्योंकि दोनों ही अब तक अविजित हैं इस टूर्नामेंट में। और ऐसे में इंग्लैंड, जो कि कभी भी इंग्लैंड में किसी भी फॉर्मेट में वर्ल्ड कप हो तो हारा नहीं है, और ऑस्ट्रेलिया को उसने कभी किसी भी फॉर्मेट में ICC टूर्नामेंट के फाइनल में हराया नहीं है, तो ये एक अजीब सा समा बंधा है यहाँ पर, और सब उत्सुक हैं, सब चाहते हैं कि एक अच्छा मुकाबला देखने को मिले। और यहाँ जो चार ऑफिशियल्स हैं उसमें से आज दो भारतीय हैं, चर्चा जारी रहेगी। पिच नंबर 10 जिस पे थोड़ी सी घास है, नीचे से वो काफ़ी सूखी हुई नज़र आ रही है। स्ट्रेट बाउंड्रीज 70-71 मीटर की हैं, स्क्वायर बाउंड्रीज लगभग 60-65 के आसपास की हैं, और क्योंकि पिच नंबर 10 है और मैदान पर 20 पिचेज हैं तो लगभग सेंटर पिच हैं, तो ऐसा नहीं है कि एक और स्क्वायर थोड़ा छोटा हो जाए। सबसे छोटी बाउंड्री 58 फुट के आसपास की है। जब विकेट के पीछे की ओर खेलते हैं तब स्वाभाविक है कि वो उस ओर की बाउंड्री कम हो जाती है, तो टीमें मैदान में आ रही हैं, राष्ट्रीय गान हो चुके हैं दोनों ही देशों के, और ये महत्वपूर्ण मुकाबला होगा। प्रकाश मेरे साथ हैं और आप उत्सुक होंगे कि उनके क्या विचार हैं, और ये लॉर्ड्स है और लॉर्ड्स के स्लोप की हम बात करते रहेंगे। स्वागत करता हूँ प्रकाश वाकणकर।
11: थैंक यू विनीत एंड गुड इवनिंग वेयर एवर यू आर लिसनिंग। इट्स अ बिग डे एट लॉर्ड्स वेयर द T20 World Cup final between the old rivals, as Vineet has described, is going to be played, and one of the two prevailing equations has to change. That is that England have never lost a final in an ICC tournament at home, and they have also never beaten Australia. Australia looking for their 7th title, England for their 2nd, and those of our listeners who remember will know that that came right here on this ground when Anya Shrupsole really was the key difference. Harmanpreet's great innings proving to be not enough, and that was the final they won against India. Well, bright sunshine here on our TV monitors. It seems to be good conditions, as Vineeta described. It's a fresh pitch, and England will have to get a above par score, Vineet, because this Australian juggernaut is not going to be stopped by anything short of that.
10: सबके दिमागों में यही बात है प्रकाश, कि किस तरह से ये वेल ऑयल्ड मशीन जिसको कहते हैं, क्या ये खिलाड़ी हैं। और आप देखें कि ऑलराउंडर से भरी हुई है ये ऑस्ट्रेलियाई टीम। एक मैच में तो 8 बॉलर्स का इस्तेमाल किया, शायद एक दो ऐसे हैं क्रिकेटर, विकेट कीपर को हटाई दीजिए, बैटर हैं सारे के सारे जो बॉलिंग भी कर लेते हैं, तो इनके पास इतने विकल्प हैं मैदान पर कि अगर कोई दिन आपका नहीं है, किसी दिन आप नहीं चल पा रहे हैं, तो आपके पास दूसरे ऐसे खिलाड़ी मौजूद हैं। दो, जैसा कि मैंने कहा कि दो भारतीय ऑफिशियल्स हैं, उनमें से एक इस समय बॉलिंग वाले छोर पर नजर आ रही हैं वृंदा राठी, और इसके साथ वो मशहूर वेस्ट इंडीज की अंपायर जो जिनका कि ये पांचवा T20 विश्व कप है, जैकलिन विलियम्स, वो शायद स्क्वायर लेग पे अभी नजर आएंगी। तो ये स्थिति है कि जो बहुत ही बढ़िया शानदार जोड़ी है, और वो खिलाड़ी, वो बैटर डैनी वाइट होज, जिन्होंने कि सबसे अधिक रन बनाए हैं अब तक टूर्नामेंट में, वो पारी की शुरुआत करने के लिए इंग्लैंड की ओर से आ चुके हैं। एमी जोन्स विकेट कीपर हैं, बैटर हैं, पारी की शुरुआत करेंगे, साथ में 7 पारियों में 89 रन, 125 का स्ट्राइक रेट। तो डैनी वाइट होज दोनों ही दाएं हाथ के बैटर्स हैं, और दिलचस्प होगा कि एक तो शुरुआत किस ओर से होती है, पेविलियन एंड से या नर्सरी एंड से, दूसरा ये कि क्या होता है। लूसी हैमिल्टन और किम गार्थ की जोड़ी रही है एक मैच को छोड़कर, हर बार इन्होंने ही नई गेंद का इस्तेमाल किया है, 7 मैचों में 5 विकेट लेने वाली लूसी हैमिल्टन देखिए, और किसको, मैगन शुल्ट्स को बाहर बैठा रखा है इन्होंने, बाएँ हाथ से बॉलिंग करती हैं, एक बाएँ हाथ के बॉलिंग का विकल्प उनको मिलता है, लेकिन किम गार्थ की शुरुआत होने वाली है अपने उनके ओवर की, 1 से 6 के बीच का ये पावर प्ले जिसमें केवल 2 खिलाड़ी बाहर रखे जा सकते हैं। ये रही मैच की फाइनल की पहली गेंद, एक स्लिप तैयार है, और जैसी कि आमतौर पर गार्ड करती हैं, उनकी पहली गेंद आउट स्विंगर थी, एक लेंथ पे टप्पा खाकर दाएं हाथ के बैटर को छोड़ती हुई, स्टंप्स के पास नहीं होकर बल्कि थोड़ी सी जगह थी, लेकिन आजकल बॉलर्स जो हैं पहली ही गेंद पे विकेट खूब ले रहे हैं, पहले इक्का दुक्का कोई होते थे, आजकल ये बड़ी चर्चा का विषय हो गया, सावधानी रखी कुछ नहीं छोड़ दिया उसको विकेट कीपर के लिए। जैकलिन विलियम्स, जैसा कि मैंने आपको कहा, उनका 96वां वर्ल्ड T20 इंटरनेशनल मैच है, गेंद बल्ले पे ठीक से नहीं आई, घूम कर पुल करना चाहती थी, अंदरूनी सिरा लगा, फील्डर ने कोशिश बहुत की, सफलता नहीं मिलेगी, और ये शुरुआत हुई खाते की 4 रन।
12: ये लगा आभा का चौका,
10: जोन्स के बल्ले से निकलता हुआ ये चौका था, लगभग टो ऑफ द बैट के पास से, स्टंप्स और बैटर के बीच में से भाग्य ने साथ दिया, और उस पर 4 रन अवश्य मिले। वेरहम ने भरपूर प्रयास किया उस गेंद को रोकने का, फील्डिंग का देखिएगा बड़ा मजा आएगा, फील्डिंग के स्तर एक आसमान छू रहे हैं प्रकाश, और जिस तरह से बाउंड्री लाइन पे किया, वाह क्या दृश्य था। संतुष्ट नहीं है, दोनों बातचीत कर रहे हैं, अब तक थोड़ा सा स्विंग मूवमेंट जरूर नजर आया है, और ये जो स्विंग मूवमेंट है, नर्सरी एंड और पेविलियन एंड दो हैं, और दोनों ही एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ हैं। तीसरा अंपायर सुनिश्चित करना चाहते हैं कि वो 4 रन वहाँ पे जो छोटे छोटे विज्ञापन है रोप के ऊपर, उससे छू गई या नहीं छू गई, और अब वो 4 रन का इशारा आ रहा है जिससे खाता खुला है और जोन्स के खाते में जोड़ा है, और इंग्लैंड फाइनल्स में 4 रन बगैर नुकसान के तीसरी गेंद के लिए तैयार, किम गार्थ।